तलत महमूद की आवाज में गीत आप सुन रहे थे। बारादरी फिल्म के इस गीत को लिखा खुमार बाराबंकवी ने और इसे संगीत से सजाया शौकत दहलवी नाशाद ने। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती पर सुन रहे हैं आप।

0: की खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
3: उजाले उनकी यादों

0: नूर जहाँ की आवाज़ में दुपट्टा फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, मुशीर काजमी के बोल, फिरोज़ निज़ामी का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर भूले बिसरे गीत।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
0: विविध भारती पर कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

0: तलत महमूद की आवाज़ में कमर जलाल आबादी के बोल आप सुन रहे थे। पंडित हुसन लाल भगत राम का संगीत आदिल जहांगीर फिल्म के इस गीत में आपने सुना।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में उड़न खटोला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा दें, मुकेश और साथियों की आवाज़ें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म श्री 420। सुनिए ये गीत।

0: श्री 420 फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में आपने सुना और इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजों में आप सुन रहे थे लाल पत्थर फिल्म का ये गीत, नीरज ने से लिखा, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं हम हेरा ही प्यार के विविध भारती पर।
1: क्या
2: हम जब होंगे 60 साल

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में आप सुन रहे थे कल आज और कल फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा शैली शैलेंद्र ने, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। लीजिए सुनिए मन मंदिर फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

मन मंदिर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, और इसके साथ ही कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

मेला फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के साथ साथियों की आवाज़ें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

परवाना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में कैफ़ी आज़मी के बोल मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम हम है राही प्यार के आप सुन रहे हैं विविध भारती पर और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, राहुल देव बर्मन का संगीत, आवाज़ें किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की, फिल्म पराया धन।

पराया धन फिल्म का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज, और इसके साथ ही हम हेराही प्यार के कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के 2-तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य

0: भर्ती क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज

0: राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4,00,000 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस ATF में राहत, पेट्रोल, डीजल और LPG पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमेरिका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की PM, रणनीतिक संबंधों पर जोर, PM मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर GST संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी NCR में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल NCR, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से

0: केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ानें डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ। छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया। 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

नमस्कार दोस्तों, मान सम्मान आदर किसी भी व्यक्ति संस्था या वस्तु के प्रति सकारात्मक भावना या सम्मानपूर्ण व्यवहार होता है। ये किसी के अच्छे गुणों, योग्यताओं या उपलब्धियों के लिए प्रशंसा की भावना को व्यक्त करता है। हर एक मानव स्वभाव के लिए ये एक सार्वभौमिक या सर्वमान्य सच्चाई है कि हर व्यक्ति अपने लिए सम्मान और आदर की अपेक्षा रखता है। सम्मान पाने की ये लालसा किसी भी उम्र, लिंग या पद से परे होती है। सम्मान किसी स्वार्थ या मजबूरी से प्राप्त किया गया है तो ज़्यादा नहीं टिक पाता, कभी ना कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है। इसीलिए ये जान लें कि सच्चा सम्मान आपसी विश्वास और प्रेम से ही उपजता है। इस बुनियादी मानवीय मूल्य को समझने की बहुत आवश्यकता है। यदि सम्मान किसी भी व्यक्ति की उम्र, जाति, धर्म, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक या आर्थिक स्थिति की वजह से किया जा रहा है तो बस ये एक झूठ है या फिर छलावाई से समझ सकते हैं, क्योंकि सम्मान तो ऐसी हर स्थिति से परे मानवीय गरिमा की निशानी है।

सम्मान कोई खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों, विचारों और व्यवहार से कमाई गई सबसे बड़ी पूंजी है। ये ऐसा अनमोल उपहार है जो हम दूसरों को दे सकते हैं और बदले में हमें वही वापस भी मिलता है। विनम्रता और आदर के बिना सच्चा सम्मान कभी पाया नहीं जा सकता। हर व्यक्ति अपनी गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहता है और ये एक शाश्वत सत्य है। सम्मान एक दो तरफा प्रक्रिया है। वो इस तरह कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों से आदर की अपेक्षा करता है तो उसे खुद भी अन्य लोगों के विचारों, भावनाओं और सीमाओं को सम्मान देना होता है। बाहरी सम्मान की प्राप्ति के लिए हमें खुद की नज़र में सम्मानित और आत्मविश्वासी होना ज़रूरी है। जो व्यक्ति खुद का मूल्य समझता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। अपने व्यक्तिगत जीवन या कार्यक्षेत्र में सम्मान पाने के लिए दूसरों को सम्मान देने की हमारी भावना बेहद ज़रूरी है।

सम्मान की चाह मानव स्वभाव का एक अंतर्निहित हिस्सा है। हम दूसरों से सम्मान पाना तो चाहते हैं, तो सबसे पहले दूसरों के विचारों, सीमाओं और भावना को सम्मान करना सीखना होगा। किसी भी व्यक्ति से सम्मान की अपेक्षा रखने से पहले आत्मसम्मान करना और अपने मूल्यों पर अडिग रहना बहुत ही जरूरी है। जो व्यक्ति खुद की कद्र करता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। अपनों से बड़ों का सम्मान करना हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्यों की मजबूत नींव है। अपने अनुभव हमें सही मार्गदर्शन देते हैं और बड़ों का आशीर्वाद हमारे जीवन में सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। बड़ों के प्रति आदर भाव रखने से सकारात्मकता बढ़ती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। भला

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। बस कुछ ही पलों के बाद।
3: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
4: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
3: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
4: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
5: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।
6: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं असरदार।
7: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं असरदार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में आप सुन रहे थे भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म का गीत। मनोज मुंतशिर ने इसे लिखा, आरकू प्रावो मुखर्जी का संगीत। भाई हम तो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपका हाल कैसा है, क्या आज आपकी नींद पूरी हुई?

दलेर मेहंदी, डीएमसी और शास्त्र सचदेव की आवाज में आप सुन रहे थे उरी फिल्म से ये गीत, और इसे लिखा डीएमसी ने और संगीत से सजाया शाश्वत सचदेव ने। तो हमने आपसे पूछा था कि क्या आपकी नींद आज हुई है पूरी, और कुछ इसी तरह से सूरमा बनकर हम करते हैं ये काम कि अपनी नींद को कर देते हैं बिल्कुल नज़रअंदाज और कभी भी पूरी नहीं होती हमारी नींद। और ऐसी शिकायत भी अक्सर बनी रहती है कि भाई

जिंदगी में सब चीजें पूरी होती हैं, लेकिन नींद पूरी नहीं होती। जबकि नींद शरीर की सबसे जरूरी आवश्यकता है, और जब हम 7-8 घंटे की नींद लेते हैं तो हमारा शरीर स्वयं को मरम्मत करता है खुद की, या कहें कि जो थकान होती है अंगों में, कहीं तकलीफ होती है, वो सब दूर करने के लिए शरीर को भी इतना वक्त चाहिए आराम का। लेकिन हम तो बने रहते हैं सूरमा, और हमें ऐसा लगता है कि हमें तो कुछ ना कुछ काम करते रहना है। ख़ासतौर से इन दिनों जो हम काम करते हैं वो ये है कि देर तक जागते हैं, फिर देर तक सोते हैं। लेकिन एक समय निश्चित है जिसमें शरीर मरम्मत का काम करता है। उस ज़्यादा देर अगर आप सोते रहते हैं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। ऐसा तो वैज्ञानिक तत्व भी कहते हैं कि जो एक वक्त निर्धारित है नींद का, कह सकते हैं रात का जो समय है, उस समय अगर आप सो जाते हैं, देर रात तक अगर आप जागते हैं, तो आपके शरीर को उससे नुकसान ही है। और उसके बाद भले ही आप घड़ी देखकर 7-8 घंटे की नींद ले लें, लेकिन उसका उतना फ़ायदा तो नहीं होता। तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है?

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और हम आपको याद दिला दें कि सुबह 10 बजे आप सुन सकते हैं आज के मेहमान कार्यक्रम का पुनः प्रसारण, जिसके अंतर्गत आज सुनिए वरिष्ठ साहित्यकार, कथाकार, कवि, व्यंगकार, निबंधकार, आलोचक, अनुवादक, संपादक और समीक्षक के साथ ही लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। और आपको ये भी याद दिला दें कि दोपहर 1 बजे से रोजाना आप सुनते हैं सुरीला सफर कार्यक्रम, जिसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको मिलेगा विविध भारती का पेज। और वक्त है कार्यक्रम में एक अंतराल का।
3: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
4: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
3: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
4: सच?
3: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
4: समझ गया।

सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे सुई धागा फिल्म का ये गीत, वरुण ग्रोवर ने इसे लिखा, अनु मलिक का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज हम बात करें नींद की, क्योंकि बाकी सब तो जिंदगी में बढ़िया है लेकिन नींद का क्या करें जो पूरी नहीं हो रही, जिसके लिए हम देर तक जागते हैं और देर तक सोते भी हैं। कुछ लोग, सबको तो सोने का नहीं मिलता देर तक, तो फिर नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो अगर कोई भी काम हमने किया हो और उसका श्रेय किसी को मिले तो हमें बुरा लगता है। वैसे किसी और ने कुछ गलती की हो और उसकी वजह से अगर हमें सज़ा मिले तो भी बुरा लगता है। तो अक्सर जो नींद हमारी पूरी नहीं हो पाती उसका दोष मिलता है मोबाइल को, और साथ ही जब हम जाग रहे हैं लेकिन सारा दोष मिल रहा है मोबाइल को, कोई सीरीज़ को कि भाई इतनी अच्छी थी कि हम देखते रह गए, या फिर दोस्तों को कि भाई उनका फ़ोन आ गया था या हमारे दोस्त आ गए थे हमें बुलाकर ले गए। तो ये क्या तरीका है, क्योंकि ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या करने वाले हैं, निर्णय तो हमारे ऊपर ही है ना। चलिए ठीक है, दोस्तों पर आपका काबू ना चल पाए लेकिन मोबाइल पर और किसी सीरीज़ को देखने पर तो आपका बिल्कुल काबू रहता है। मोबाइल का भी आपके हाथ में ही पूरा कंट्रोल है, और साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं जहाँ टीवी पर कुछ भी चीज़ें देख रहे हैं उसके लिए भी रिमोट भी आपके हाथ में ही है। तो ज़रा याद कीजिए वो दिन जब आप समय से सोते थे, समय से जागते थे, और उन दिनों को अगर आप याद करेंगे तो आप खुद कह उठेंगे कि भाई वो दिन क्या दिन थे।

तुषार जोशी की आवाज में छिछोरे फिल्म का गीत आपने सुना, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल प्रीतम का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

राष्ट्रीय सेवा विविध भारती से आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रलोक। हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। इन्हें हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आरंभ करेंगे। जयपुर में चल रहे 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में आज केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान करेंगे। राज्य में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आज से विशेष हेलमेट जागरूकता अभियान की शुरुआत और प्रदेश में मॉनसून के आज प्रवेश के आसार। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ब्यावर जिले के मसूदा विधानसभा क्षेत्र के देवमाली गांव के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री यहां से वीबीजी रामजी योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही वे जल जीवन मिशन के तहत लगभग 418 करोड़ रुपए की विभिन्न पेयजल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान 78 नई पेयजल टंकियों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया जाएगा। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने जयपुर में लोक मंथन 2026 के कर्टेन रेजर कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेशवासियों से राजस्थान की संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक मजबूत पहचान दिलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान शक्ति भक्ति विचार वीरता संस्कृति और लोक परंपराओं की भूमि है और हमें इस पर गर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भारत के लोग विषय पर आयोजित हो रहा लोक मंथन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के वैश्विक संवाद का माध्यम बनेगा।
1: ये हमारे राजस्थान की एक बहुत प्यारी संस्कृति है। आप जहां जाओगे वहीं आपको लगेगा कि उस संस्कृति में मनोहर हो, स्वागत हो, वो अपने आप में निराला मिलेगा और ये हमें आगे भी बढ़ाना चाहिए। ये आयोजन राजस्थान को राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अधिक प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। आइए हम सब मिलकर इस आयोजन को केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, बौद्धिक शक्ति और राष्ट्र प्रथम के संकल्प को का महोत्सव बनाएं।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि लोक मंथन भारतीय सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इस अवसर पर लोक मंथन की वेबसाइट का लोकार्पण और एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। जयपुर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आज समापन होगा। समापन अवसर पर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये पुरस्कार ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थानों को प्रदान किए जाते हैं। समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह होंगे। सम्मेलन में आज डिजिटल गवर्नेंस तथा उभरती प्रौद्योगिकी से जुड़े विषयों पर 3 प्लेनरी सत्र आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के विशेषज्ञ, स्टार्टअप्स तथा शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग

0: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस शाखा ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए फंडिंग नेटवर्क संचालित करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस इंटेलिजेंस के अतिरिक्त महानिदेशक प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि आरोपित रफीक खान चांद शेख महाराष्ट्र के औरंगाबाद का निवासी है। इस पर आईएसआई के लिए काम करने और जासूसी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों तक धनराशि पहुंचाने का आरोप है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जनवरी में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान ये जानकारी सामने आई। इस मामले में जैसलमेर निवासी एक व्यक्ति और असम के डिब्रूगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर कार्यरत एक कर्मचारी को गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी हैंडलर तक पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही आईएएस अधिकारी भास्कर ए सावंत को एसोसिएशन का प्रशासक नियुक्त किया है। कार्यवाहक सीजे न्यायमूर्ति एसपी शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने श्री सावंत को व्यक्तिगत रूप से एसोसिएशन की प्रबंध समिति के चुनाव 3 महीने में पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। उन्हें 29 जुलाई तक अदालत को चुनाव कार्यक्रम से अवगत कराने को भी कहा गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आज से विशेष हेलमेट जागरूकता और प्रवर्तन अभियान शुरू किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस की ओर से 16 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान बिना हेलमेट और तेज गति से वाहन चलाने, अवैध पार्किंग करने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पर लेन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले सहयात्री दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे पहले कल मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सड़क सुरक्षा पर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ और जवाबदेह तरीके से काम करने के निर्देश दिए। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर बल दिया है। नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, बार बार होने वाले चुनावों से होने वाली रुकावटें कम होंगी और अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने का विचार नया नहीं है और चुनाव आयोग, विधि आयोग तथा अन्य विशेषज्ञ निकायों ने समय समय पर इसकी सिफारिश की है।
1: राष्ट्र प्रथम की नीति सोच करके आज देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है कि लोकसभा और विधानसभा के सारे चुनाव साथ हों। ये सोच जो है बहुत लंबे समय से चल रही, लेकिन उसको बिल के रूप में लाने का काम पहली बार हुआ।
0: और अब मौसम। प्रदेश में आषाढ़ महीने की शुरुआत कुछ स्थानों पर बरसात के साथ हुई। राजधानी जयपुर में कई इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। भरतपुर में कल सुबह बरसात के बाद दिन भर ठंडी हवाएं चलती रहीं। कोटपूतली बहरोड जिले के कोटपूतली, विराटनगर और पावटा में कल देर रात हल्की बरसात से मौसम सुहावना हो गया। भीलवाड़ा में भी देर रात तेज हवा के साथ कुछ देर झमाझम बादल बरसे। इस बीच आज भी राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं तथा नम हवाएं चल रही हैं। हमारी हनुमानगढ़ संवाददाता ने बताया है कि वहां बादलों की आवाजाही से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पूर्वी इलाकों से मॉनसून दस्तक देगा। उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। विभाग ने 4 और 5 जुलाई को कोटा तथा उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश और एक दो स्थानों पर बहुत तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कल से आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू होने के आसार हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2025 का आयोजन 12 से 18 जुलाई तक किया जाएगा। आयोग के अनुसार परीक्षा के प्रवेश पत्र परीक्षा तारीख से तीन दिन पहले आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ब्यावर जिले के देवमाली गांव से वीबीजी रामजी योजना का शुभारंभ करेंगे। जयपुर में चल रहे 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में आज केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। राज्य में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आज से विशेष हेलमेट जागरूकता अभियान की शुरुआत और प्रदेश में मॉनसून के आज प्रवेश के आसार। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में तेज बारिश के साथ बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 100.3 MHz पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे प्रोग्राम FM रेडियो पिंक सिटी।

0: गुरुवार होता है सबसे निराला, जब खुलता है इंफोटेनमेंट का पिटारा और होती है एक खास मुलाकात खुद जयपुर की अपने जयपुर के साथ। जयपुर के साथ सारे तेवर और सारे फ्लेवर। इट्स नाउ देन एंड फॉरएवर। ट्यून करिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
1: लवली मॉर्निंग चिट चैट ओनली ऑन 100.3 एफएम रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
2: 9:12 और पूरे 1-2-3 सेकेंड्स। 2 जुलाई यानी जुलाई का और आषाढ़ के महीने का पहला गुरुवार जो कहता है कि उम्मीद के बादल ये बरसेंगे जरूर। सो ट्यून आपने किया है 100.3 एफएम रेडियो पिंक सिटी, जहां साथ में हूँ मैं बोली तो आज प्रीति। गुड मॉर्निंग्स मेरे जयपुर, की हाल चाल, सब चंगा जी? वेल, पूरे 12 बजे तक आपकी और हमारी होगी गल्ला शल्ला मेलोडीज के संग। जो रंगेगा आपको वो होगा आपने ही बोली रो रंग। तो साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम, क्योंकि बहुत कुछ खास है। और भाई जी, क्योंकि गुरुवार, आज है गुरुवार, तो बहुत सारी मेलोडीज और साथ ही बहुत सारी बातें भी है तैयार। तो साथ रहिए, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग।

0: lovely morning chit chat only on 100.3 FM Radio Pink City. Kuch to khaas hai, kuch to baat hai.
1: 9:18 और पूरे पूरे 11:12 रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम और गुरुवार की सुबह में भाई देखिए सुबह जो होती है ना वो होती है उम्मीदों से भरी, उजास से भरी, तो मुस्कुराहटों के साथ करना चाहिए इस सुबह का स्वागत। और देखिए बशीर बद्र साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि फूल से आशिकी का हुनर सीख लें, फूल से आशिकी का हुनर सीख लें, तितलियाँ खुद रुकेंगी सदाए ना दें। सो देखिए एक जो अच्छी खबर हम आपको देने वाले हैं, वेल इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल जो सिटीजन्स हैं स्पेशली राजस्थान में। राजस्थान का जो गवर्नमेंट है एक्चुअली ये है कि कल हुआ एक ई गवर्नेंस के लिए कॉन्फ्रेंस एंड देन राजस्थान को ई मित्र व्हाट्सएप सेवा जो है उसकी सौगात मिली है। यानी कि अब व्हाट्सएप से घर बैठे 27 सरकारी सुविधाएं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से घर बैठे मिलेंगी। वो जो व्हाट्सएप नंबर जिसके ज़रिए ये सेवाएं आपको मिलेंगी इट इज़ 9461062705। आप इस पर जब हाय लिखकर भेजेंगे तो आप वो सरकारी सुविधाएं जिनका पार्ट ले सकते हैं उसमें खास ही होंगी, जैसे आपके जो बिल हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, ये बिल जो होंगे, EWS सर्टिफिकेट्स, इन सब के लिए इस तरह के जो तमाम सर्टिफिकेट्स होते हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इस साथ ही साथ आपका जो मूल निवास है या फिर जाति, जन्म और बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इस तरह के राशन कार्ड, इस तरह की जो सारे सर्टिफिकेट्स वाली सेवाएं हैं, इनफैक्ट पुलिस विभाग की सेवाएं और जो सरकारी सेवाएं हैं इन सब की भी तमाम जानकारियां आपको इस एक नंबर पर हाई के जरिए मिलेंगी। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। और आगे 2 जुलाई आज के दिन से जुड़ी खास हस्तियों की बात करेंगे आपके साथ। साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से? अरे
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए। अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जयपुर की है जान,
7: ओ मेरी जान।
6: जयपुर की है मुस्कान,
7: मुस्कुराने की वजह तुम हो।
6: आप सभी के दिलों में बसने वाला चैनल 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है, ये रिश्ता है हमारी शान।

0: लवली मॉर्निंग चिट चैट ओनली ऑन 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है.
1: आप हैं आरजे प्रीति के साथ, प्रीति के साथ ओनली ऑन 100.3 FM. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है.
2: 9:33 और पूरे 26:27 2 जुलाई गुरुवार की सुबह और रिपिंग सिटी 100.3 FM. और बात करें अगर 2 जुलाई की, तो 2 जुलाई यानी आज का दिन, आज बर्थ एनिवर्सरी है बॉलीवुड के एक बेहद फेमस सिंगर, जी हाँ, मोहम्मद अजीज साहब. आज ही के दिन साल 1954 वेस्ट बंगाल में जन्मे मोहम्मद अजीज साहब, जिन्होंने बॉलीवुड की हिंदी जो फिल्में हैं उसके अलावा बंगाली, उड़िया और भी जो रीजनल सिनेमा की मूवीज़ हैं उनमें भी काफ़ी प्लेबैक सिंगिंग करी. मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन रहे. रफ़ी साहब के फ़ैन मोहम्मद अजीज साहब ने 20,000 से ज़्यादा गानों को अपनी आवाज़ दी. हिंदी, बांग्ला, उड़िया, जिस तरह की फिल्मों में तो आपने गाने गाए, लेकिन फिल्मों में जो आपका प्रवेश यानी कि एंट्री हुई, दैट इज़ फ्रॉम द बंगाली फिल्म ज्योति. और इसके अलावा, फिल्मों के अलावा बात करें तो बहुत सारे जो भजन हैं, सूफी गाने हैं, उन्हें भी आपने अपनी आवाज़ दी. बॉलीवुड में आपको ब्रेक मिला संगीतकार अनु मलिक के जरिए और आप बने अमिताभ बच्चन की आवाज़ इन द मूवी मर्द. और इसका जो टाइटल ट्रैक है, मैं हूं मर्द तांगे वाला, इसे अजीज रातों रात हिंदी प्लेबैक सिंगिंग के सुपरस्टार बन गए थे. आपने फिल्मों में बहुत सारे हिट गाने दिए, जैसे कि लाल दुपट्टा, मलमल का, मैं से, मीना सेना, साकी से, ऐसे बहुत सारे, मर्द, बंजारन, आदमी खिलौना है, लव 86, पापी देवता, जुर्म को जला दूंगा, पत्थर के इंसान, बीवी हो तो ऐसी, बरसात की रात, राम लखन, खुदा गवाह, नगीना, स्वर्ग, आमरे, न जाने कितनी ही फिल्में हैं जिनमें आपने एक से बढ़कर एक हिट सॉन्ग्स दिए हैं. इनफैक्ट मैं अगर कहूं कि अनिल कपूर साहब का माई नेम इज लखन, या फिर गोविंदा का मैं से, मीना सेना, साकी से, या फिर कर्मा का हर कदम हर कर्म अपना करेंगे, ये ऐसे गाने हैं जो आज भी उतने ही, मुझे लगता है, ताजा है, उतने ही फ्रेश है. और मोहम्मद अजीज साहब जो हैं उनकी याद दिलाते रहते हैं. और ये जो बेहतरीन संगीतकार हैं, 27 नवंबर 2018 को आप इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन आपके जो बेहतरीन गाने हैं वो हमेशा उनके चाहने वालों की यादों में मौजूद रहेंगे.

0: Lovely morning chit chat. Only on 100.3 FM Radio Pink City. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है.
1: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM और बात करें अगर 2 जुलाई वेल तो 2 जुलाई यानी कि आज एक बेहतरीन से जो एक्टर हैं उनका हैप्पी वाला बर्थडे है. 2 जुलाई 1958 को जन्मे पवन मल्होत्रा. अब आप कहेंगे पवन मल्होत्रा, देखिए अगर आपको ऐसे याद नहीं आ रहा है तो आप याद करिए कुछ फिल्म्स, जैसे कि रुस्तम फिल्म में वो पुलिस इंस्पेक्टर जो रुस्तम के पीछे लगा होता है, या फिर भाग मिल्खा भाग जहाँ पर उनके जो कोच होते हैं गुरुदेव सिंह जी. इसके अलावा जो आप याद कर सकते हैं डैट इज मतलब वो अर्ली डेज अगर आपको याद हो, नुक्कड़ जो एक सीरियल था. जी हाँ, साल 1986 में इशू आया था नुक्कड़ और इसी शो से बेहद पॉपुलर हुए थे दिल्ली का ये जो मुंडा था पवन मल्होत्रा. नुक्कड़ से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई और इसके बाद जमीन, आहट, CID, खामोशियां, करिश्मा, लागे तुझसे लगन, खिड़की जैसे शोज में आप देखे. फिल्मों की जो शुरुआत हुई डैट इज फ्रॉम द मूवी अब आएगा मजा. और इस फिल्म के बाद आपने जिन फिल्मों में खास किया वो थी साल 1985 में आई खामोश, 1989 में आई बाग बहादुर. ये जो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स थी इनके आप हिस्से रहे. इसके अलावा आपकी खास फिल्में रही बदमाश कंपनी, परदेश, सिटी ऑफ जॉय, भाग बहादुर, खामोश, ब्लैक फ्राइडे, डॉन, जब वी मैट, 50 लाख, दे ताली, दिल्ली 6, ये फासले, शैतान और रुस्तम, जोरावर, 72 हूरे, ओ माय गॉड 2, मिशन रानीगंज, ऐसी बहुत सारी फिल्में. और बहुत सारी जो फिल्में हुई हैं उनमें आपने जो अलग अलग तरह के किरदार निभाए हैं और जिस संजीदगी से निभाए हैं उससे पवन मल्होत्रा अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं. सो वी विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे.

म्यूजिकल सफर में रहिए हमारे साथ, आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।

0: Smile. Smile is good news. Good news is good to hear. Good to hear is soothing. Soothing bole to dil ka rishta. Rishta jo atoot hai. The bond which has no bend. Relationship which never ends. Radio Pink City 100.3 FM. Kuch to baat hai.
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।
3: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बांट।
4: पर भैया, ये जीवन नागजी के कांटे बांट नहीं है।
3: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
4: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
5: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बांट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
6: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे, ट्रेडमार्क, जस्टिस देख कर ही खरीदें।
7: दुकान में बैठे हो या वॉक कर रहे हो, ऑफिस में हो या गाड़ी में या फिर सड़क पर, हर घर तक जिसने अपना प्यार बिखेरा, हर किचन से जिसकी आवाज है आती, वो कोई और नहीं, वो है आपका रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
8: जिंदगी की दो नायाब धड़कने हैं, गम,
9: गीतों की लड़ियां, लड़ियां,
10: सवालों की झड़ियां, झड़ियां,
9: चटपटी सी बातें,
10: शख्सियतों से मुलाकातें।
11: नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन हूँ।
10: थोड़ी सी हंसी,
9: बहुत सी खुशी,
10: कहाँ पर
9: और कहाँ, सिर्फ 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी पर। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
12: आप हैं आरजे प्रीटी के साथ, प्रीटी के साथ, ओनली ऑन 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
0: मेलोडी क्वेस्ट 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
13: 10:02 और पूरे 3:54 सेकेंड से रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। गुरुवार की प्यारी से सुबह, वेलकम टू द शो मेलोडी क्वेस्ट। और मेलोडी क्वेस्ट में बिना हुए लेट सबसे पहले जान लेते हैं आज की थीम। चलिए, थीम की बात करने से पहले देखिए क्या होता है। स्टेज पर अगर कभी परफॉर्म करना होता है ना, कभी भी मतलब किसी को परफॉर्म करना होता है, तो एक नर्वसनेस होती है। स्टेज परफॉर्मेंस को लेकर एक डर होता है। वैसे आजकल जो दौर है वो सोशल मीडिया का है, यानी आप में अगर कोई टैलेंट है या फिर आप अपनी बात भी पहुंचाना चाहते हैं, आपका हुनर भी है, तो उसे लोगों के सामने लाने के लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन फिर भी एक बहुत वाइड ऑडियंस है, बहुत सारी पब्लिक है, और स्टेज पर परफॉर्म करना। सो स्टेज की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज मेलोडी क्वेस्ट की थीम है वो सॉन्ग्स जहाँ पर जो एक्टर या एक्ट्रेस होंगे वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होंगे। परफॉर्म करने से मतलब कि वो डांस भी कर रहे हैं एंड देन गाना भी गा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइक लेके और सिर्फ एक गाना गाया जा रहा है, यानी कि डांस भी है, यानी म्यूजिक भी है, मस्ती भी है और स्टेज परफॉर्मेंस है। अब जो क्लूज है वो बहुत ध्यान से सुनने हैं क्योंकि जैसे राइट एग्जांपल मैं आपको देती हूं कि अगर मैं आपको कहूं कि स्टेज वाला गाना है और इसमें नजर आई है माधुरी दीक्षित, तो माधुरी दीक्षित के स्टेज परफॉर्मेंस के बहुत सारे पॉपुलर नंबर्स हैं। सो जो क्लूज होंगे वो बहुत ध्यान से सुनने होंगे क्योंकि हम आपको ये बता देंगे कि जो मेन एक्टर या एक्ट्रेस जो स्टेज पर नज़र आ रहे हैं एंड जो साइड में नज़र आ रहे हैं, ताकि आप जो ऑड वन आउट खेलते हैं वो बिल्कुल ना खेलें। सो आज मेलोडी क्वेस्ट की थीम है वो वाले सॉन्ग्स जहाँ पर जो एक्टर या

एक्ट्रेस हैं वो स्टेज पर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। सो क्लूज को कैसे सुनना है, लगाना है ध्यान और लगाना है कान। सो चलिए एक गाना मैं बिल्कुल आप सभी के लिए प्ले करूंगी, और जो प्ले करूंगी वो माधुरी दीक्षित, जी हाँ, द क्वीन ऑफ डांस। तो माधुरी का ही एक नंबर प्ले करूंगी, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और अब देते हैं आज का पहला क्लू। क्लू क्या करना है, ध्यान और कान लगाकर सुनना है। स्टेज पर इस गाने में परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं रानी मुखर्जी, शाहरुख खान और काजोल। रानी मुखर्जी, शाहरुख खान और काजोल जिस गाने पर परफॉर्म करते आए हैं स्टेज पर, तो आपको है वो गाना मुझे बताना। और बताने के लिए जाने जाना आपके पास हमारी फ़ोन लाइंस 2200800। इसके अलावा हमारा एफबी पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, इस पेज पर जाइए, जो लेटेस्ट पोस्ट है वहां जाकर कमेंट सेक्शन में गाने के बोल और फिल्म का नाम दोनों आप हमें लिखकर भेज दीजिए। तो स्टेज पर परफॉर्म करता हुआ वो गाना जहां आए हैं रानी मुखर्जी, शाहरुख खान एंड काजोल, आपको है हमें बताना।

तो शायर है, मैं तेरी शायरी। वेल, माधुरी जी को मुझे लगता है स्टेज पर डांस करते हुए देखना है ना, मतलब अपने आप में वाओ, इट्स लाइक वंडरफुल। एक सुबह की क्या बेहतरीन सी शुरुआत हुई है। सो वेल, मेलोडी क्वेस्ट में एक बार फिर से वेलकम वेलकम वेलकम। और आज मेलोडी क्वेस्ट में वो वाले सॉन्ग्स जहाँ पर एक्टर या एक्ट्रेस जो नज़र आ रहे हैं वो स्टेज पर परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो हमने आपसे पूछा था वो गाना जिसमें नज़र आए हैं स्टेज पर परफॉर्म करते हुए रानी मुखर्जी, शाहरुख खान एंड काजोल। सो देखिए, आपको जैसा कहा जाता है कि थीम को समझना बहुत ज़रूरी है, एक्टर एक्ट्रेस साथ में होना ज़रूरी नहीं है। आपको थीम ये भी बताई है कि वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हों, यानी कि डांस या फिर म्यूजिक जो है वो हो रहा हो। सो जो गाना जिनमें है वो है फ्रॉम द मूवी कोई मिल गया, एंड इट इज़ फ्रॉम द मूवी कुछ कुछ होता है। और ये वाला गाना जिन्होंने है सही सही पहचाना, उसमें नाम शामिल है शशांक, ख्याति एंड लवीशा, हनी भाटिया फ्रॉम खजाने वालों का रास्ता, संगीता अग्रवाल फ्रॉम गुजर की थड़ी, कुसुम चित्तौड़िया जी फ्रॉम आमिर, एंड देन आई हैव रजत पाटीदार विद द राइट आंसर, दक्ष अरोड़ा जी ने दिया है हमें सही जवाब, महेश चांगिड़ फ्रॉम झोटवाड़ा, एंड मोहम्मद रिया, सोनू शफीक, अल्फेज जवाहर नगर जयपुर से विद द राइट आंसर, अशोक कनौजिया जी फ्रॉम त्रिवेणी नगर, अमित कुमार नामा नरसिंह कॉलोनी पुरानी बस्ती से, विनोद मोरवाल, राजू मोरवाल, सीताराम मोरवाल, खेमचंद, गुलाबचंद, सुनील दीपू कोठी कोलियान से विथ द राइट आंसर, एंड देन वी हैव मीनू सिंह पंजाबी, प्रवीण चौहान एंड प्रीति नितिन अग्रवाल विथ राइट आंसर, सुनीता झालानी जी फ्रॉम बरकत नगर, नरेश राज लालकुठी से, पंकज अरोड़ा जनता स्टोर से, एंड प्रीति अग्रवाल जी कहती हैं कि आप कहाँ गायब हो जाते हो। वेल जी, गायब नहीं हो जाते हैं, बस थोड़ा सा कभी कभी ब्रेक हो जाता है। एंड विथ राइट आंसर वी हैव गौरव अरोड़ा, महक जैन उन्होंने दिया सही जवाब, कृष्णाक्षी गहलोत, जानवी भांबू एंड एकता जादौन हमसे जुड़े विथ राइट, रेखा कोहली फ्रॉम बैनार्ड रोड, ज्योति जी फ्रॉम चित्रकूट, गुलशन केशव गुलाटी, मीनाक्षी चौहान गेव अस द राइट आंसर, ममता लखोटिया रामनगर सोडाला से, मीना शर्मा जी मानसरोवर से, शंकर जैन जौहरी बाजार से, शशि बेनीवाल जी नाड़ी का फाटक से, शशांक फर्नवस ने दिया हमें सही जवाब, बाबू लक्ष्मीकांत शर्मा फ्रॉम भिंडो का रास्ता, नवीन बंसल जगतपुरा से, अक्षय फ्रॉम महेश नगर, इलियास और रजिया फूटों का खुर्रा से, हरीश जी बाईस गोदाम से, एंड सोनी राजावत आप सभी का जवाब बिल्कुल बिल्कुल सही। सो ये वाला गाना कोई मिल गया फ्रॉम द मूवी कुछ कुछ होता है आप सबके लिए प्ले किया जाएगा। लेकिन अगला क्लू दे दिया जाए। अब देखिए, क्लू जो है उसे आपको बहुत ध्यान और कान लगाकर सुनना है। ध्यान और कान इसलिए क्योंकि जैसे मैंने आपको क्लू दिया कि रानी मुखर्जी, शाहरुख खान एंड काजोल, तो ये तीनों जिस गाने में नज़र आए हैं सिर्फ वही नहीं, मतलब कि ये लोग आपको स्टेज पर परफॉर्म करते हुए भी नज़र आने चाहिए। तो अब जो क्लू है, इस गाने में नज़र आई हैं स्टेज पर परफॉर्म करती हुई करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर स्टेज पर परफॉर्म करती हुई नज़र आई हैं, एंड इन द लास्ट करिश्मा को स्टेज परफॉर्मेंस में ज्वाइन करते हैं शाहरुख खान। सो इन ऑल हम कह सकते हैं 90% इस गाने में करिश्मा कपूर नज़र आई हैं स्टेज पर परफॉर्म करती हुई, एंड देन उनको लास्ट में ज्वाइन करते हैं शाहरुख खान। इट्स अ वेरी अमेजिंग, बड़ा ही फेमस सा नंबर है। सो आपको बताना है कौन सा है ये गाना, और बताने के लिए जाने जाना आपके पास है हमारी फोन लाइन्स, डेट इज 2200800 और हमारा एफबी पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। इस पेज पर जाइए, जो लेटेस्ट पोस्ट है वहां जाकर कमेंट सेक्शन में गाने के बोल और फिल्म का नाम दोनों हमें बता दीजिए। तो वो गाना जिसमें स्टेज पर परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं करिश्मा कपूर एंड शाहरुख खान। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, और आपको बताना है वो गाना जिसमें नजर आए हैं कौन, रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, करिश्मा कपूर एंड शाहरुख खान।

रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, वेलकम टू द शो मेलेडी क्वेस्ट. और आज मेलेडी क्वेस्ट में थीम है वो वाले सॉन्ग्स जहां पर एक्टर या एक्ट्रेसेस जो हैं वो स्टेज पर परफॉर्म करते हुए नज़र आए हैं. और हमने आपसे पूछा था कि वो गाना जिसमें स्टेज पर परफॉर्म करते नज़र आए हैं करिश्मा कपूर एंड शाहरुख खान. और आशा जी की आवाज़ में ये एक बेहतरीन सा नंबर है, ले गई दिल ले गई फ्रॉम द मूवी दिल तो पागल है. और ये गाना जिन्होंने है सही सही पहचाना, उसमें नाम शामिल है सोडाला से पुष्पा दिल्लीवाल जी, कौशल कुमार जी बुधवाड़ा अजमेर से, एंड वी हैव सीटू सैनी चौमू से विद द राइट आंसर, देन वी हैव पवन कुमार रामचंदानी बिंदायका से, मधु शर्मा भिंडो का रास्ता से, एंड शशि बेनीवाल जी नाड़ी का फाटक से. और कुछ कुछ होता है फिल्म का जो गाना है जिन्होंने सही पहचाना, उनमें जिनके नाम शामिल होते हैं उसमें मधु सिन्हा, स्मृति सिन्हा सुशांत सिटी से, एंड सिराजुद्दीन कमरी, मोहसिन कमरी, अजीम कमरी, आप सबके नाम अब हमें नज़र आए हैं. सो अब हम उन्हें शामिल कर रहे हैं. और दिल तो पागल है इस फिल्म का गाना जिन्होंने है सही पहचाना, उसमें नाम शामिल है मुश्ताक खान, जायदा बानो, साजिद खान फ्रॉम झोटवाड़ा, मोहम्मद आरिफ पुरानी बस्ती से, एंड देन वी हैव मौलश्री फ्रॉम जगतपुरा, हेमंत महावर गंगापोल से, हनी भाटिया विद द राइट आंसर, विनोद दायमा जोबनेर से, एंड मोहसिन कमरी, सिराजुद्दीन कमरी, जैनुल आकिब रामदेव जी के मंदिर के पास से, आप सभी का जवाब बिल्कुल ठीक, एंड मधु सिन्हा, स्मृति सिन्हा सुशांत सिटी से, आपने दिया है हमें बिल्कुल सही जवाब. एंड मधु जी कहते हैं कि आप पिछले

बार नहीं आए तो हमने रेडियो ही नहीं सुना. वेल ऐसा नहीं है. एंड लीलाधर सोनी आपने दिया है हमें बिल्कुल सही जवाब. कुसुम चित्तौड़िया जी एंड मिथिलेश चित्तौड़िया आमेर से हमसे जुड़े विथ राइट आंसर. देन साक्षी पुगलिया, नयन पुगलिया जी आप दोनों का जवाब बिल्कुल ठीक. खुशबू जांगिड़ विद द राइट आंसर. अगस्त्य ने दिया हमें सही जवाब. विजय सिंह एंड रोशन तंवर बोथ हैज गिवन द राइट आंसर. ममता लखुटिया रामनगर सोडाला से विद द राइट आंसर. विनोद कुमार आनंदा सिटी सांगानेर जयपुर से. एंड देन विथ राइट आंसर वी हैव मोहम्मद रियाज, सोनू शफीक, अल्फेज फ्रॉम जवाहर नगर. एंड हरीश कुमार जी बाईस गोदाम से. अशोक कुमार कनौजिया फ्रॉम त्रिवेणी नगर. एंड देन वी हैव सीटू सैनी जी, यस फ्रॉम चौमू. और सीटू जी ने फोन लाइंस के जरिए भी हमें सही जवाब दिया था. नरेश कुमार राज फ्रॉम लालकोठी. प्रवीण चौहान विद द राइट आंसर. मीनू सिंह पंजाबी. महबूब चौहान एंड विनोद मोरवाल, राजू मोरवाल, सीताराम खेमचंद, गुलाबचंद मोरवाल, सुनील दीपू कोठी कोलियान से. पंकज अरोड़ा जी जनता स्टोर से. अमित कुमार नामा नर्सिंग कॉलोनी पुरानी बस्ती से. महेश जांगिड़ जी फ्रॉम झोटवाड़ा. मधु टहलियानी जी विद द राइट आंसर. प्रीति नितिन अग्रवाल मालवी नगर से विथ द राइट आंसर. एंड देन वी हैव सुनीता झालानी जी फ्रॉम बरकत नगर विथ राइट आंसर. एंड देन यस आई थिंक एफबी पर यही हैं सही जवाब जो हमें मिले हैं. एंड ऑन फोन लाइंस जो लोग हमसे जुड़े हैं, किरण राजावत जी ने दिया हमें बिल्कुल सही जवाब. कुछ नाम मैं पहले भी ले चुकी हूँ फोन लाइंस वाले. अक्षय महेश नगर से जुड़े सही जवाब के साथ. छुट्टन फ्रॉम बगराना. विमला गुगलानी जी, अवतार किशन जी, सीमा ढिल्लो एंड पूनम बाहेती एंड यस किरण भाटी हाथोद से. आपका जवाब बिल्कुल ठीक. एंड आई थिंक मैंने सबके नाम शामिल किए हैं, लेकिन फिर भी किसी का नाम रह जाएगा और जैसे ही हमें नज़र आएगा तो बिल्कुल हम उस नाम को ज़रूर शामिल करेंगे. और अभी ये वाला गाना फ्रॉम द मूवी दिल तो पागल है, लेकिन उससे पहले अगला क्लू तो करना गया है जयपुर. लगाना है ध्यान और लगाने हैं कान. ये वाला जो गाना इसमें स्टेज पर परफॉर्म करते हुए नज़र आए हैं ऋतिक रोशन. ऋतिक रोशन स्टेज पर परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं, यानी वो किसी क्लब में या फिर किसी गेट टुगेदर में डांस नहीं कर रहे हैं. तो प्लीज़ कोई भी गलत क्लू नहीं देना है. स्टेज पर परफॉर्म करते नज़र आए हैं ऋतिक रोशन और साइड में जो खड़ी हैं, मतलब उन्हें चीयर अप करने के लिए साथ में नज़र आई हैं अमीषा पटेल. सो ऋतिक रोशन ऑन स्टेज एंड साथ में जो नज़र आई हैं परफॉर्म करते हुए नहीं, अलग से चीयर करते हुए अमीषा पटेल. तो कौन सा है ये गाना आपको है मुझे बताना. और बताने के लिए जाने जाना आपके पास हमारी फ़ोन लाइंस 2200 800 एंड हमारा एफ बी पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM.

0: एक नई खुशी।
1: जेडीएल आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141-256-9696 पर।
3: कुछ खूबसूरत सुरीले पल ओनली फॉर जयपुराइट्स विद रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। मेलोडी क्वेस्ट ओनली ऑन 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
4: वेलकम टू द शो मेलेडी क्वेस्ट। और आज मेलेडी क्वेस्ट की थीम वो वाले गाने जहां पर एक्टर या एक्ट्रेसेस आपको नजर आ रहे हैं स्टेज पर परफॉर्म करते हुए। सो हमने आपसे पूछा था वो गाना जहां स्टेज पर परफॉर्म करते नजर आए हैं ऋतिक रोशन, और साथ में मतलब स्टेज के साइड में नजर आई हैं अमीषा पटेल। और गाना है उनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है, सितारों की महफिल। यस, दिल ने दिल को पुकारा। सो ये गाना जिन्होंने है सही सही पहचाना, उनमें जिनके नाम शामिल होते हैं बिल्कुल हम उनका नाम आप सबको बताएंगे। तो सही जवाब देने वालों में है रेणु गोविल प्रियांशी वैशाली नगर से, आपने दिया हमें सही जवाब। अक्षय फ्रॉम महेश नगर, रोशन नागपाल विद द राइट आंसर, एंड सरदारनी दिलराज कौर, यस यू हैव गिवन द राइट आंसर। देन महेश चांगेड़ जी फ्रॉम झोटवाड़ा, एंड प्रीति मुराडिया शंकर नगर से, यू हैव गिवन द राइट आंसर। एंड देन वी हैव बिंदायका से पवन कुमार रामचंदानी, एंड पवन जी फोन लाइन्स के जरिए भी सही जवाब हमको दे चुके हैं। एंड अगस्त्य ने दिया बिल्कुल सही जवाब। अंकित अरोड़ा एंड अखिल अरोड़ा, बोथ ऑफ देम गिवन द राइट आंसर। एंड रामकिशोर कुमावत कालवाड़ रोड से, आपका जवाब है बिल्कुल ठीक। और यस द राइट आंसर उसमें है दिलराज कौर, यस बाबू लक्ष्मीकांत शर्मा फ्रॉम भिंडो का रास्ता, मीनल चौहान विद द राइट आंसर, देन रेशु मिंगलानी जी आपका जवाब है बिल्कुल ठीक, जगन कुमावत, ममता लखोटिया जी रामनगर सोडाला से, शंकर जैन फ्रॉम जौहरी बाजार, देन प्रवीण चौहान जी विद द राइट आंसर, हनी भाटिया एंड विनोद दायमा फ्रॉम जोबनेर, लीलाधर सोनी जी, मोहम्मद आरिफ फ्रॉम पुरानी बस्ती, घनश्याम हीरानी जी हीरापुरा से, एंड देन वी हैव सीटू सैनी जी फ्रॉम चौमू, एंड नरेश कुमार राज फ्रॉम लालकोठी, अमित कुमार नामा नर्सिंग कॉलोनी पुरानी बस्ती से, पुष्पा दिल्लीवाल जी एंड पायल फ्रॉम सोडाला, कुसुम चित्तौड़िया, मिथिलेश चित्तौड़िया, पूनम एंड गजेंद्र चित्तौड़िया फ्रॉम आमेर, मधु सिन्हा, स्मृति सिन्हा फ्रॉम सुशांत सिटी, मधु टहलियानी जी विद द राइट आंसर, मोहसिन कमरी, सिराजुद्दीन कमरी, जैनुल आकिब, सल्लू रामदेव जी के मंदिर के पास से, एंड पंकज अरोड़ा फ्रॉम जनता स्टोर, अशोक कनौजिया जी फ्रॉम त्रिवेणी नगर, मीनू सिंह पंजाबी, प्रीति नितिन अग्रवाल फ्रॉम मालवी नगर, विनोद मोरवाल, राजू मोरवाल, महेश मोरवाल, सीताराम खेमचंद, गुलाबचंद, सुनील दीपू कोठी कोलियान से, एंड सीटू जी कहते हैं कि मौसम भी गानों के साथ ही है और स्टेज परफॉर्मेंस करी जाए बिल्कुल जी। एंड देन मधु टहलियानी जी ने भी दिया है हमें बिल्कुल सही जवाब। एंड देन वी हैव विथ द राइट आंसर, आई थिंक FB पे जो सही जवाब हैं वो मैं सारे नाम ले चुकी हूँ। एंड देन जो आप फोन लाइंस वाले हैं उनमें जो नाम छूट गए हैं, मीनू बसवाल आपने दिया बिल्कुल सही जवाब, छुट्टन बगराना से, लक्ष्य सोमानी विद द राइट आंसर, किरण भाटी फ्रॉम हातून, एंड रेशु मिंगलानी, विमला गुगलानी, पूनम पाहेती जी, सीमा ढिल्लो, अवतार किशन एंड विजय सिंह एंड रोशन तंवर, किरण राजावत, खुशबू जांगिड़, एंड देन वी हैव एकता जादौन एंड मीनाक्षी चौहान, एंड शशांक फडणवीस, नवीन बंसल, इलियास एंड रजिया फ्रॉम फूटो का खुर्रा। तो ये सभी लोग जिन्होंने दिया बिल्कुल सही सही जवाब। सो ऋतिक रोशन वाला ये गाना दिल ने दिल को पुकारा आप सभी के लिए प्ले होगा। लेकिन अगला क्लू, और जैसा हम आपको कहते हैं कि करना क्या है, देखिए लगाना है ध्यान और लगाने हैं कान। अब ये जो गाना आपको बताना है, इस गाने में स्टेज पर परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं सनी देओल। सनी देओल स्टेज पर परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं और बड़ा ही पॉपुलर नंबर है। मतलब पॉपुलर नंबर से मतलब है कि इतना पॉपुलर कि आप इसे मूवीज़ में या स्कूल्स में भी परफॉर्मेंस में बहुत जगह देखते हैं और इस गाने को सुनते ही एक बड़ी मस्ती सी छा जाती है। सो सनी देओल इस गाने पर परफॉर्म करते हुए नज़र आए स्टेज पे, एंड अगेन साइड में, स्टेज के साइड में उन्हें चीयर करती हुई नज़र आई हैं अमीषा पटेल। अमीषा पटेल परफॉर्म करती हुई नज़र नहीं आई हैं इस गाने में, परफॉर्म करते हुए नज़र आए हैं सिर्फ और सिर्फ सनी देओल, एंड साइड में अमीषा पटेल। तो आपको बताना है ये गाना, और बताने के लिए जाने जाना आपके पास हमारी फोन लाइंस 2200800, और इसके अलावा हमारा एफपी पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। और बहुत से लोग जो मुझे कहते हैं कि आपका फोन लाइन नहीं मिलती है, तो देखिए एफपी पेज इट्स अ वेरी वेरी इजी मीडियम हम तक आपके जवाब पहुंचाने के लिए। सो हमारा एफपी पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, इसके जरिए आप अपना जवाब दे सकते हैं। और एफपी पेज के जरिए ऋतिक रोशन वाली फिल्म का सही जवाब जिन्होंने दिया, उसमें नाम जिनका शामिल होता है वो सुनीता झालानी जी फ्रॉम बरकत नगर भी हैं। तो बता दीजिए मुझे सनी देओल ऑन स्टेज।

रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, वेलकम टू द शो मेलेडी क्वेस्ट। और आज मेलेडी क्वेस्ट में थीम वो वाले गाने जहां पर एक्टर या एक्ट्रेसेस स्टेज पर परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। और हमने आपसे पूछा था कि इस गाने में नजर आए हैं सनी देओल, और ये वाला गाना है गदर फिल्म से, मैं निकला गड्डी लेके। सो वेल, राइट आंसर्स की गड्डी में जो जो बैठे हैं, यानी कि जो जो हैं सवार, उनके नाम है इस प्रकार: मुकेश प्रजापत, खजाने वालों का रास्ता से, मीनू प्रजापत एंड मुकेश प्रजापत, एंड देन पवन कुमार रामचंदानी फ्रॉम बिंदायका, राधा राज पुरोहित विद द राइट आंसर, एंड देन वी हैव रोहिताश महावर, शैलेंद्र सिंह, पंकज सिंह फ्रॉम निवारू रोड, श्रुति पारेख, एंड देन मनोज कुमार वर्मा, बने सिंह फ्रॉम सिरसी रोड, संगीता कंवर जी फ्रॉम वैशाली नगर, शीतल माहेश्वरी विद द राइट आंसर, अथर्व नरूका हैज गिवन द राइट आंसर, राकेश महावर, देशराज महावर, पिंकू महावर, गत सिंहपुरा अजमेर रोड जयपुर से, एंड देन वी हैव शशि बेनीवाल जी फ्रॉम नाड़ी का फाटक, राम अवतार शर्मा जी विद द राइट आंसर, एंड योगेश बसवाल हैज गिवन द राइट आंसर, शशांक ख्याति एंड लवीशा, यस आपका जवाब है बिल्कुल ठीक, एंड देन वी हैव नरेश कुमावत फ्रॉम बगरू, योगेश बसवा, मोहम्मद शाहरुख, राम सिंह चौहान चाकसू से, आपका जवाब है बिल्कुल ठीक, शंकर जैन फ्रॉम जौहरी बाजार, रेणु गोविल, प्रियांशी वैशाली नगर से, मुकेश सरवणकर, मुकेश सोनी खिरनी फाटक गोकुलपुरा से, यस आई थिंक मैंने आपका नाम सही बोला है, एंड लीलाधर सोनी विथ राइट आंसर, पवन कुमार रामचंदानी जी बिंदायका से, और आपने फोन लाइंस के जरिए भी सही जवाब दे दिया था। देन गदर फिल्म का गाना जिन्होंने है सही पहचाना, उसमें जिनके नाम शामिल हैं बाबू लक्ष्मीकांत शर्मा फ्रॉम भिंडो का रास्ता, ममता लखोटिया जी फ्रॉम रामनगर सोडाला, एंड ब्रह्मपुरी से हमें कुछ सिस्टर्स ने फ़ोन किया है, सारी बहनों ने, शकुंतला, सीता, रुक्मणी एंड कौशल्या, और सीटू सैनी जी चौमू से दिया आपने बिल्कुल सही जवाब। सीटू जी कहते हैं कि मैं डांस करने में व्यस्त था तो जवाब देना भूल गया। एंड देन अशोक कनौजिया जी फ्रॉम त्रिवेणी नगर, मधु सिन्हा, स्मृति सिन्हा सुशांत सिटी से, अमित कुमार नामा नर्सिंग कॉलोनी पुरानी बस्ती से, मीनू सिंह पंजाबी, कुसुम चित्तौड़िया, मिथिलेश चित्तौड़िया फ्रॉम आमेर, पंकज अरोड़ा फ्रॉम जनता स्टोर, मधु टहलियानी जी विद द राइट आंसर, नरेश कुमार राज फ्रॉम लालकोठी, विनोद दायमा फ्रॉम जोबनेर, एंड महेश मोरवाल, विनोद मोरवाल, राजू मोरवाल, सीताराम मोरवाल, खेमचंद मोरवाल, गुलाबचंद, सुनील, दीपू कोठी कोलियान से विद द राइट आंसर, मोहम्मद इमदाद, मोहम्मद आरिफ पुरानी बस्ती से, हनी भाटिया विद द राइट आंसर, प्रीति नितिन अग्रवाल फ्रॉम मालवी नगर, महेश जांगिड़ जी फ्रॉम झोटवाड़ा, सिराजुद्दीन कमरी, मोहसिन कमरी, जैनुल आकिब सल्लू, आजिम रामदेव जी के मंदिर के पास से, घनश्याम हिरानी जी फ्रॉम हीरापुरा, प्रवीण चौहान जी विद द राइट आंसर, पुष्पा दिल्लीवाल फ्रॉम सोडाला, एंड देन वी हैव सुनीता झालानी जी फ्रॉम बरकत नगर, एंड यस आई थिंक FB के जो सारे सही जवाब हैं वो हम शामिल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी का नाम रह जाएगा FB पेज वाले जो हैं तो हम बिल्कुल उनको जैसे ही हमें आपके सही जवाब नज़र आएंगे और हम आपका नाम शामिल कर लेंगे। तो अभी तक तो यही लोग हैं जिनके सही जवाब हमें नज़र आए हैं फ़ोन लाइंस के जरिए, जिन्होंने जवाब दिए हैं और जिनके नाम छूट गए हैं उसमें है लक्ष्य सोमानी, सोनम, रेहाना खानम, देन जगन कुमावत, रेशु मिंगलानी, मीनल चौहान, अगस्त्य, सरदारनी, दिलराज कौल, रोशन नागपाल, एंड यस वी हैव अंकित अरोड़ा एंड अखिल अरोड़ा, मीनू बसवाल एंड विजय सिंह एंड रोशन तवर। तो आप सभी का जवाब है बिल्कुल ठीक। गदर फिल्म से ये जो गाना है ये आपके लिए प्ले होगा, और अब अगला जो क्लू है वो आपको दे दिया जाए। ये जो क्लू है, ये गाना है, ये एक ओल्डी गोल्डी सा नंबर है और बेहतरीन सा गाना है, एवरग्रीन नंबर है। ध्यान और कान लगा के सुनना है मेरे जयपुर। इस गाने में स्टेज पर परफॉर्म करती हुई नजर आई है वहीदा रहमान। वहीदा रहमान जी स्टेज पर परफॉर्म करती हुई आई हैं, और इस गाने की सबसे बड़ी खूबी वो जो स्टेज बैकग्राउंड है वो बहुत अलग अलग हैं, यानी कि बहुत अलग अलग तरह के स्टेज हैं
जिस पर परफॉर्म करती हुई नजर आई हैं वहीदा रहमान, और उन्हें चीयर करते हुए कहीं कहीं थोड़ी सी जगह पर नजर आए हैं देवानंद साहब। तो ये ओल्डी गोल्डी नंबर जहां वहीदा रहमान जी अलग अलग स्टेज पर परफॉर्म करती हुई नजर आई हैं, आपको है मुझे बताना और बताने के लिए जाने जाना। आपके पास हमारी फोन लाइन्स 2220800, इसके अलावा हमारा FB पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, इस पर जाइए और जो लेटेस्ट पोस्ट है वहां जाकर कॉमेंट सेक्शन में गाने के बोल और फिल्म का नाम दोनों हमें लिखकर भेज दीजिए।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए। अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
8: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
7: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
8: सच?
7: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
8: समझ गया।
9: कुछ खूबसूरत सुरीले पल ओनली फॉर जयपुराइट्स विद

रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, वेलकम टू द शो मेलेडी क्वेस्ट। और मेलेडी क्वेस्ट में हमने आपसे पूछा था वहीदा रहमान जी पर पिक्चराइज्ड वो गाना जहां वो स्टेज पर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही हैं, एंड द सॉन्ग इज एवर ग्रीन सॉन्ग फ्रॉम द मूवी गाइड, पिया तुसे नैना लागे रे। तो ये गाना जिन्होंने है सही सही पहचाना, उससे पहले उनके नाम जिन्होंने गदर फिल्म का गाना सही पहचाना था लेकिन उनके नाम छूट गए थे, जितेंद्र कुमावत जेपी कॉलोनी टॉक फाटक से आपने दिया हमें बिल्कुल सही जवाब, एंड मुमताज मलखान आपका जवाब भी था बिल्कुल ठीक, तो आपके नाम अब हमें नजर आए हैं। और गाइड फिल्म का गाना जिन्होंने है सही पहचाना, श्रुति पारेख ने दिया है हमें बिल्कुल सही जवाब, और रेखा कोहली जी बैनार्ड रोड से हमसे जुड़ी हैं विद द राइट आंसर, ममता लखुटिया फ्रॉम रामनगर सोडाला, शशि बेनीवाल जी नाड़ी का फाटक से, राम सिंह चौहान फ्रॉम चाकसू, एंड अर्जुन अंगद वैष्णवी राठौड़ आस्था विद द राइट आंसर, एंड बहुत सारे लोगों ने देखिए वहीदा रहमान जी वाले जो गाने बताए हैं, लेकिन हमने आपको कहा था कि वो गाना जहां पर वहीदा रहमान जी स्टेज पर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही हैं और बहुत अलग अलग स्टेज हैं, है ना, तो ये वाला जो गाना राइट आंसर है डेट इज पिया तुसे नैना लागे रे। संगीता अग्रवाल फ्रॉम गुजर की थड़ी, और संगीता जी कहती हैं कि ये मेरा पसंदीदा गाना है, इस पे मैं डांस करती रहती हूँ, सो वेल आपके लिए तो चॉइस हो गई है डांस एंड सॉन्ग दोनों की। मुमताज मलखान जी ने दिया है बिल्कुल सही जवाब, एंड विद राइट आंसर वी हैव चैतन्य दीक्षित, पवन कुमार रामचंदानी फ्रॉम बिंदायका, मुकेश प्रजापत एंड मीनू प्रजापत फ्रॉम खजाने वालों का रास्ता, नरेश कुमार राज फ्रॉम लालकोठी, कुसुम चित्तौड़िया एंड मिथिलेश चित्तौड़िया फ्रॉम आमेर, विनोद दायमा फ्रॉम जोबनेर, महेश जांगिर जी फ्रॉम झोटवाड़ा, एंड देन अमित कुमार नामा नरसिंह कॉलोनी पुरानी बस्ती से, एंड अमित जी कहते हैं कि मेरे कान तो रेडियो पिंक सिटी से लागे हैं।

हैंगिंग गार्डन भाकरोटा से, और एफबी पे आई थिंक यही है नाम जो अभी हमें नज़र आए हैं सही जवाब के साथ, और फ़ोन लाइंस वाले वो नाम जो रह गए हैं उनमें जिनके नाम शामिल होते हैं। फ़ोन लाइंस के ज़रिए हमें सही जवाब दिया है सोनम ने, रेहाना खानम ने, जगन कुमावत, रेशु मिंगलानी, अंकित अरोड़ा, एनाखिल अरोड़ा, श्यामला नायर, अनीता मेदीरत्ता, रोशन नागपाल, सरदारनी दिलराज कौर, एंड देन वी हैव मीनू पसवाल एंड मनोज सिंह। आप सबका जवाब है बिल्कुल ठीक। सो ये वाला गाना, और अब वया तो होगो देखो टेम, तो बस कुछ ही पला मैं आपनी बोली और आपना ही गीत होला।

0: तारीख मुलाकात है, चंद लम्हों का है ये सफर जिसमें रास्ते कई और मंजिल एक है। इन्हीं रास्तों पर आगे बढ़ते हुए रोज करें हमसे मुलाकात, बनाए रखें इस रिश्ते को बहुत खास। 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी।
1: आप हैं RJ प्रीति के साथ, प्रीति के साथ ओनली ऑन 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
2: ए सुन रहा हो चटकीलो राजस्थान 100.3 FM माला, काई तो खास छे और काई तो बात छे।
3: ग्यारह बजे 6 मिनट और पूरा पूरा 59 ग्यारह बजे 7 मिनट और पूरा पूरा 1, 2, 3 सेकेंड। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM शो शुरू होगो जी को नाम छे चटकीलो राजस्थान। और राजस्थान की अगर करूँ बात तो भाई रेतीली धरती, चमकीलो आसमान, अतुल्य जीवट है जीणी पहचान, दिल में उल्लास चेहरा पे मुस्कान, खुशनुमा रंगारी धरती, यू आपणो राजस्थान। और ई राजस्थान रा चटकीला अलबेला रंगारू मूथा महासा से करावा बात। तो भाई देखो आज जो कराला बात वह बात छे बड़ी खास, क्योंकि जुलाई को महीनों है ना और स्कूल खुलगा, ज़्यादातर जगह मैंने लगा छे खुलगा और न खुलिया तो काल परशु में खुल जावेला। स्कूल की जब बात आज है तो मैं सब जो स्कूल छोड़ चुकिया, आज भी अगर माँ सबसे बात करी जावे और बोले कि था का जीवन का सबसे चोखा अच्छा दिन कशा छा, तो सब बोलेला एक साथ स्कूल का दिन है ना। वो स्कूल जद जावे छे जद लागे छो कि अरे यार यूनिफॉर्म रोज ही यो ही काम, कदे कदे मतलब यहाँ लागे छो कि मैं कद बड़ा हो वाला है ना। लेकिन जद बड़ा होगा तो अब वो स्कूल घणो याद आ छे। तो स्कूल की ही आज बात कि स्कूल की वो कोई खास याद, स्कूल को वो पहलो दिन, कोई ऐसी टीचर, कोई ऐसी करी हुई मस्ती, कोई ऐसो करे हुए मजाक, कोई ऐसी सबक, कोई ऐसी पिटाई भी हो सके छे बिल्कुल, कदे कदे ऐसी कुटाई भी हो, कदे कदे वह पड़ी हुई डांट वे दोस्ता को साथ। तो स्कूल से जुड़ी यादां थे कर सको छो माँ की साथ साझा, स्कूल को नाम ले काई जो छे सबसे पहली था का दिमाग में आवे छे। तो थे कर सको छो था की बात करवा के लिए माँ के साथ था करे छे माँ की फोन लाइन 2200 800 और ई के अलावा माँ को FB पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। तो जी स्कूल खुलगा लेकिन जद थे स्कूल जावे छा और अगर अबार भी थे स्कूल जा रहे छो टाबर छो, तो स्कूल की कोई ऐसी बात जो थाने लागे छे कि हाँ यार तो मतलब हमेशा ही जब तक जीवाला नहीं या तो याद ही रह ली। तो थे कर सको छो महा की साथ और महा का जो नंबर वो तो छे 2200 800 था सगड़ा ने याद

0: पिंक सिटी 100.3 FM शो चाल रहा है चटकीलो राजस्थान, और चटकीलो राजस्थान में हमारी जान आज में कर रहे अच्छा बात स्कूल से जुड़ी खास यादा की। आप देखा अच्छा कौन है जो जुड़गो माँ की जान। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार,
0: कौन बोल रहे थे?
1: मैं शंकर जैन बोलूँ छू।
0: हाँ जी शंकर जी, बताओ कशा स्कूल में पढ़े अच्छा थे?
1: मैं पढ़े था 13 पंक्ति स्कूल।
0: अच्छा
1: तो उकंदर बहुत ही मस्ती करा जा मैं बहुत उदम करा जा चार पांच यार दोस्त। माँ का एक गुरु जी क्या नाम गुरु जी बोला जा वन में।
0: अच्छा
1: तो वो माने बोला जा अरे भाई जेठ शंकर जैन पढ़ ले नहीं तो एक दिन याद आएगी।
0: हाँ
1: क्यों उदम करते हो तो मुश्किल नहीं।
0: अच्छा तो अब याद
1: मास्टर लोग भी परेशान जा एक दिन में स्कूल से गायब हो गया था। तो माँ का भाई साहब ने पता लग गया। उसने बोला भाई आज स्कूल बन गया तो मैं झूठ बोल दी। बोले गए क्या ये हकीकत बात से बोले ठीक से काल चीजे मैं चालू कर सारे साथ चालू साहब अगर अब जाता जाता घबराते रहे तो नहीं कहा आज तो स्कूल पिटाई होली तगड़ी।

0: अब किस्मत माँ की बड़ी अच्छी में जोर मार रही थी।
1: हाँ।
0: जार पागल होता है, गुरु जी से पूछे भाई काल आए थे ये आए थे नहीं पप्पा तो ना भगवान का ही अंदर एंट्री होगी तो आए थे ऐसी बात नहीं आज भी याद आए थे तो मैंने यार बहुत मजा करें इसमें मजा करें।
1: तो शंकर जी एक बात बताओ कि अब जत्थे जद भी भगवान को नाम ले उछो तो थाने वे गुरु जी भी याद आता होला।
0: गुरु जी आज भी याद आते वो मैंने हरदम कहते रहते अरे शंकर डेढ़ पढ़ ले
1: देखो पहली का जो गुरु जी हो जा मैंने लगे वहाँ की डांट में भी वहाँ को प्यार ही छो वहाँ की फिक्र छी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो थे भी कर सको छो स्कूल से जुड़ेड़ी कोई ऐसी याद कोई ऐसी बात जो आज भी जद याद है हाँ तो बस लागे छे कि अरे स्कूल का दिन कतरा बढ़िया दिन जा है ना स्कूल की बात मतलब एक अलग ही यहाँ लागे छो बस कहीं जमानो छो स्कूल में वे करेड़ी मस्ती वे दोस्त और स्कूल का दिन वे कई बात जो है कि शंकर जी बताया गुरु जी तो ऐसी बहुत सारी छे बात जो जे कर सको छो वहाँ के साथ। हेलो
2: हाँ
1: नमस्कार।
2: हाय नमस्ते मैडम जी।
1: कौन बोल रहे थे?
2: मैं राम स्वरूप जी बोल रही हूँ।
1: कोड़ा से
2: अटे से बोल रही हूँ तो तुम उसको आगे जा रही हो तो बात रहे बड़ो जोमने के साथ लोड़ा गांव को जो।
1: अच्छा तो बताओ जी कशा स्कूल में पढ़े चार काई बात खे बुचावला
2: गांव की सरकारी स्कूल में पढ़े चार फिर टाइम पर काई करता कई बार ये आओ ना दंगी आओ गेहूं की पाली तोड़ लेता पेंट में लगा देता ना आदमी चाल दो ना बच्चों तो देखो ऊपर बात चढ़ जाती तो एक बार मैं तंगिया लिया दो चार के तटा दियो अब पटेल चटा दियो बच गया थोड़ा चाल माए अडेर पर पता लगे कौन चटा बोला राम तू चटा दियो पर गुरु जी आया हमारा दोनों टांग पकड़े और ऊंचा के दो तीन लाज पर उल्टो लटका दिया थोड़े टाइम के लिए तो
1: तो बिल्कुल जी देखो राम स्वरूप जी ने तो जो याद छे वो छे बदमाशी लेकिन बदमाशी के अलावा भी बहुत कुछ हो सके छे वे कोई ऐसा टीचर कोई ऐसी शिक्षक जो वहाँ की कोई ऐसी सीख भी हो सके छे कोई ऐसा खास दिन भी हो सके छे कोई खास दोस्त भी हो सके छे और बहुत सारी चीज़ा छे जो याद आ छे। तो स्कूल को नाम लेता ही सबसे पहली काई था ने याद आ छे स्कूल का दिन क्यों प्यारा लागे छे थे कर सको छो था की बात करवा के लिए माँ की साथ माँ की फोन लाइन 2200 800। हेलो
3: हेलो राधे राधे
1: राधे राधे जी
3: मैं मीना शर्मा बोल रही हूँ मैडम।
1: हाँ जी मीना जी बताओ
3: बताओ स्कूल की तो बात ही निराली से याद है कि बचपन में जना माँ बाप स्कूल भेजे था ना जना आज भी याद आ रहा है।
1: हेलो मीना जी के साथ तो वहाँ की संपर्क टूट गो लेकिन मैंने लागे छे कि थे वहाँ के साथ संपर्क कर सकोगे संपर्क करवा के लिए वहाँ की फ़ोन लाइन 2200 800 इसके अलावा वहाँ को FB पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM इससे जुड़ भी थे था की बात साझा वहाँ के साथ कर सको जो। हेलो
4: हेलो गुड मॉर्निंग राम राम।
1: राम राम जी कौन बोल रहे छे?
4: राम कैलाश मीणा।
1: कोड़े से बोल रहे छो?
4: मु तो जयपुर से बोल रहा हूं मारा।
1: अच्छा जयपुर से ही बोल रहा छो तो अब यह बताओ कि स्कूल की काई बात थे माँ के साथ कर बो चाओ छो।
4: वो कक्षा 7 में जो ना जो माँ गांव में स्कूल छो ये कक्षा 7 मास्टर लोग तो ज्यादा पढ़ाओ चल से कोई ना तो वो माँ गए कुंजिया रह जी किताब कुंजिया आओ जी कुंजिया ने फाड़ फाड़ पेंटा में भर ले जाओ जा जब पेपर के बीच में फिर वॉशरूम में जा और फिर वहां खाड़े जाना एक भी नंबर लचो उल्टो आने पूरो पेंट फूले रह जो तो ये कक्षा 7 या 8 की बात है फिर वो बात तो जब दूसरी जगह सर चेंज हो गए ना फिर तो लाइफ चेंज होगी।
1: अच्छा तो फिर थे पढ़वा लागा कि वशाई रहा ये बताओ पहले।
4: अरे फिर तो बढ़िया हो गया एकदम 180 डिग्री हो गया तो गांव में जाना आप
1: तो गांव में छाई लिए मतलब बेफिक्र आराम से।
4: हाँ नहीं गांव में कहे वहाँ एजुकेशन के ऊपर अपना ध्यान न दियो ना भाई मास्टर जी आया आया फड़िया तो फड़िया छुआ छोरी फिर बस जरा उजा रोशिया करे जा
1: तो वही स्कूल से जुड़े रही बहुत सारी बात जो ते कर सको जो माँ की साथ गरबा के लिए माँ की लाइना 2200-800 और उनके अलावा माँ को एफ बी पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM तो ई पे जार भी थे कर सको छो अपनी बात और बात करवा के लिए माँ की साथ जो लाइना में थे बता ही चुका था बात आज करा ला स्कूल की तो स्कूल को वो पहलो दिन या फिर स्कूल में बितायो कोई भी अशो दिन कोई अशी मस्ती कोई अशा दोस्त कोई अशा टीचर जो थाने आज भी आवे छे याद तो कर सको छो माँ की साथ बात

0: रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम शो चाल रहे चटकीलो राजस्थान और चटकीलो राजस्थान में हमारी जान आज बात हो रही है स्कूल और स्कूल से जुड़ी वे खास यादा की। तो अब देखा छा की कौन छे जो जुड़ गो मा की साथ। हेलो,
1: हाँ जी, राम राम, खमागणी हुकुम।
0: खमागणी जी, कौन बोल रहे छे?
1: पंकज लड़ा बोले थे जनता स्कूल से।
0: हाँ जी पंकज जी, बताओ स्कूल की कशी बात, कशी याद जो आज भी छे था की साथ।
1: बात है तो बड़ी थी, लेकिन एक बार मैं पहले पिक्चर ला गया करी थी 9 से 12 तो मैं पिक्चर चले गया तो हमारे बाप ने पता लाग गई और दिया सिंगल बाटा को वो भी याद ही थे सब।
0: अच्छा, कशी पिक्चर गया था?
1: कोई अंडर लगी थी यादगार करे मान प्रकाश में।
0: अच्छा तो बिल्कुल, अब देखो स्कूल छोड़ा अगर थे जाओला और पढ़ाई कौन करोला तो फिर मार तो पड़े ली, पर मार के अलावा और कुछ याद कोने की?
1: बहुत याद से कंचा खेला करा था
0: स्कूल के मायने
1: घर का सामने ग्राउंड थो मुझे चले जाओ थे आ जाओ कंचा खेला ला। अब वो यूनिफॉर्म में फिर वही बदल आ गया, फिर वही जूता। आज भी बाप को सैंडल याद आओ थे।
0: बिल्कुल तो पंकज अरोड़ा जी साझा करिया जो याद ई में खास जो छे बात वा छे मार और टाट। तो एक बहुत ही मजेदार किस्सो माँ के साथ जो साझा करिए वे छे पायल। पायल कहते कि वे जद कक्षा 12वीं में छी, 12वीं में छी तो बोले कि माँ की जो हिंदी की टीचर छी अत्तो काम दे छी, अत्तो काम दे छी कि मनया लागे जो भगवान मैं ये बोर्ड की पढ़ाई करूँ ली कि हिंदी को काम करती करती बूढ़ी हो जाऊँ ली, कब तक लिखूँ ली, और मने फिर हिंदी लिखवा में बहुत जोर आओ छो, संस्कृत में भी लिखूँ हिंदी में भी लिखूँ तो मन बहुत जोर आ चो, तो मैं कहीं करी कॉपी कौन बनाई। अब कॉपी तो नहीं बनाई, अब कहीं होगो कि

0: भाई क्लास में आई है जे बात कर रहे हैं तुम्हारी सहेली ने, मैं कह रही थी अरे मैं तो बनाई कौन है फालतू या तो काम दे जाए। अब या जो वहाँ की क्लास की मॉनिटर छी वह हमारी बात सुन ली, वह टीचर तक भी बात पहुँचा दी। अब टीचर अगला दिन आई यार मैंने आ रहे हैं खेचा कि बोले खड़ी हो पायल लिया तारी हिंदी की कॉपी लिया। अब हिंदी की कॉपी हो तो मैं ले रहा हूँ कोड़े से। तो पायल खेच है कि वो दिन मारा जीवन में जो आत्मविश्वास आयो वो कोड़े भी कौन आयो, जो कॉपी छी कौन है वो के लिए मैं यहाँ कह दी कि मैं तो कॉपी दी छी या मारी कॉपी खो दी मारी मॉनिटर को नाम ले। अब भाई मैं तो कॉपी खेई कि मारी कॉपी खोगी इन्हें दी छी, मारी जो आर एस आर है और जो 8-10 सहेलियाँ छी एक बोली हाँ हमारे सामने दी छी, दूसरी बोली अरे उमे से तो मैं काम करी छी, तो जो कॉपी बनाई कोने ऊ कॉपी के लिए कम से कम हमारी 8-10 जो सहेलियाँ छी वे सब की सब कह दी कि अरे कॉपी छी, 2-5 तो अशी भी कह दी कि वे तो हमारी ही कॉपी में से काम करी छी। और बात यह हुई कि फिर हमारी जो टीचर है वह माँ की मॉनिटर ने डांटी कि थी कॉपी खो दी या कर दी, फिर टीचर मने और उल्टी नरम पड़ गई, फिर बोलिए यहाँ कर अब तो अत्तो काम तो क्या करे ली, अब आगे को जो काम छे ना वो तू नई कॉपी में कर ले, पुरानो कोई बात को ना मैं तने नंबर दे दे उनली। बोले भाई मने लागे छे कि दोस्ती और भाईचारो जद जो माँ को छो ना शायद तो अशो है ही कोने, मतलब वह अशी कॉपी छी जो कदे बनी ही कोने और ऊँ के लिए मारी सारी बायलियाँ हाँ भर दी कि हाँ मैं भी देखिया जा मारे सामने दी छी 2-4 तो काम कर पा की भी कह दी। और पायल जी की बात पे मैंने वो बात याद आ गई कि एक दोस्त अगर अंडी उंडी ने हो जावे और अगर पिताजी फ़ोन करें तो एक दो दोस्त अशा भी हो छे कि फिर वो लड़का का पिताजी बना रही बोल देते कि हाँ मैं उको पापो बोल रही छूँ और वो अंडा ही छे है ना। तो यह बात भी हो सके छे भाई दोस्त तो देखो दोस्त ने बचावा ने कहीं भी कर सके छे। तो स्कूल से जुड़ी कोई अच्छी खास बात और याद अगर हो था कि साथ तो थे भी कर सको छो साझा माँ के साथ, माँ का नंबर 2200-800। इनके अलावा माँ को एफ बी पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार
1: राधे राधे मैडम।
0: राधे राधे जी कौन बोल रहे थे?
1: मैं महेश जागीर बोल रही थी जोटवाड़ा से।
0: हाँ जी महेश जी बताओ।
1: मैडम स्कूल में दोनों भाई पढ़े थे मैं और मारो छोटो भाई। तो एक बार मने छुट्टी की जरूरत पड़ गई तो मैं गुरु जी के गयो, मैं गुरु जी माँ का काका जी बीमार हो रहे थे मने छुट्टी जाए थे। तो बोला अच्छा कहते हाँ तो मारो छोटा भाई ने बुलवा लिया कहते था कौन बीमार हो रहे थे तो वो बोले माँ का ताऊ जी बीमार हो रहे थे। अब मास्टर ने भी ऐसी आवा लागी ये तो ताऊ जी बोल रहे थे यो काका जी बोल रहे थे तो मतलब ये झूठ बोल रहे थे। अब वो माने फिर कहते जाओ यार से तो छुट्टी से था कि धोने की जाओ बोला। चक्कर
0: तो क्योंकि एक भाई और साथ में छो जिसे महेश जी की चोरी पकड़ी गई, लेकिन फिर भी मने लागे छे कि वे गुरुजी जो छे वे थोड़ा सा मतलब बड़ा दिल का छा कि अच्छा चलो छोड़ो जानो छे बच्चा ने जावा दियो कोई बात कोने है ना, और वे था की गलती बिना डांट फटकार के माफ कर दिया। हेलो
2: हेलो
0: नमस्कार।
2: नमस्ते मैडम।
0: हाँ कौन बोल रहे
2: हैं? मैडम मैं सावरमल बोल रहा हूँ। स्कूल की बात बताता हूँ मैम। हमारे स्कूल के ना वो चिड़ावा में एक गाँव चिड़ावा एक गाँव ना उसके बराबर एक गाँव है वहाँ पे हमारी स्कूल थी। जो स्कूल थी गांव की जो स्कूल होती है अक्सर मैडम वो जोहड़ी होती है। तो हम फर्स्ट सेकंड में पढ़ते थे तो पढ़ाई के साथ साथ भैंस और गाय भी लेके जाते थे और भैंस और गाय भी देखते थे साथ में प्राइवेट करते थे। टीचर में डांटता नहीं और टीचर से छुट्टी मांगते थे सर हमें कहीं बाहर जाना 2 मिनट के दो तो हम वो हमारी गाय भैंस चेक करते कि कहाँ पे है। और टीचर फिर क्या कहता कि टीचर को दोपहर में दूध चाहिए था।
0: अच्छा।
2: तो टीचर बोलते 5-6 टीचर होते कि 1 kg दूध को ला के देगा।
0: हाँ।
2: तो सबसे पहले तो ऊपर हाथ में करता है सर मैं ला के दूंगा।
0: अच्छा।
2: वो बच्चा 1 लीटर दूध ला के देगा उसे सेकंड आपने छुट्टी।
0: अच्छा।
2: और दूसरी बात हमारी जब भी अमावस्या आती थी ना मैडम तो टीचर क्लास में पूछता था कि आज किसकी आज फिर सुरब बना है।
0: अच्छा।
2: तो दो तीन लड़के हाथ ऊपर करते सर हमारे यहाँ खीर चूरमा बनता तो हर अमावस्या के दिन हमारे गांव में जो टीचर आते थे वो खीर चूरमा खाते थे
0: अरे
2: बच्चों से मंगवा कर।
0: तो मतलब कि जो छात्र छा वे आपका शिक्षक आने पार्टी दे जा है।
2: बिल्कुल मैडम बिल्कुल।
0: तो बिल्कुल भाई, देखो स्कूल की बहुत ही अलग अलग तरह की बहुत ही अतरंगी सी यादा हो छे, है ना। स्कूल की वा याद की याद आ छे। और पहली का अगर स्कूला की बात करा तो देखो आजकल तो कहीं छे मने लागे छे आज का बच्चा ने तो शायद वो पतो भी कौन हो लो, लेकिन पहली छो कि जब स्कूल का बाहर आ छा थोड़ा बाहर चाले छा तो यो जया सर्दी को टाइम है तो अमरूद गाजर मूली ये सब मिले छा, है ना। और वे बेर जो मिले छा स्कूल के बाहर फालसा ये अच्छी चीज़ है। और मने कत्तो शौक लागे छो, सबने कत्तो पसंद हो जा और भागता दौड़ता क्योंकि पहली मन लागे छे अति अति शायद दूरियां कम हो जी, है ना। तो भागता दौड़ता बाता करता स्कूल से एक दूसरा का हाथ पकड़े आ चलो बाता करता कद घर पुगे छा मने पतो ही कौन लागे छो। आप देखा कौन छे माँ के साथ। हेलो,
3: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार,
3: नमस्कार जी।
0: कौन बोल रहे छे।
3: मैं अभिषेक बोल रहा हूँ, सांगानेर से।
0: हाँ तो अभिषेक जी बताओ स्कूल में काई करया थे,
3: एक बार का जी प्रार्थना हो रही थी स्कूल को माइनस
0: कहीं हो रहे छो।
3: प्रार्थना
0: अच्छा
3: तो घुमन का जी मारे छोटा भाई के छोड़ दे रहे हो।
0: हम
3: तो मैंने भी कुछ साहब को कोणी की देर को दांत तोड़ दियो घंटा ही।
0: हो आगे
3: फिर बाद में कि मन स्कूल को बाहर नहीं मिलो फिर उनकी बहन मार दे पड़ी फिर थोड़ी देर बाद साइड मिले यार उसको भाई ने खतरनाक पीट दिया। फिर मम्मा घर आर पे कमरो बंद कर पैक हो गो। फिर को मम्मा घर आर गाड़ा गाड़ी बैंग बैंगर जोरदार।
0: तो अच्छा स्कूल में ये एक बार ही लड़ाई करे अच्छा कि बहुत करे अच्छा।
3: नहीं मैं 2-3 बार ही करा जाना कौन करा फिर तो।
0: अच्छा तो फिर था कि कुटाई उटाई तो हुई होली चोखी।
3: नहीं, कोई नहीं, फिर अब डॉक्टर बन गया मैं तो।
0: ओ काई बात छे। तो अब हमारी बात सुनो, चलो थे डॉक्टर तो बन गया। कदे कोई बच्चा ने देखो जो अया बदमाशी कर रहे हो या कोई ने मार रहे हो लड़ रहे हो तो थे डॉक्टर की जिया समझाओ छो या वो जो बालक अभिषेक छो उन की जिया।
3: नहीं अब तो प्यार तो समझाओ जब तो।
0: चलो जी। तो वही देखो स्कूल की तो बड़ी ही मने लागे छे खट्टी मीठी सी बड़ी चोखी सी अशी यादा हो छे कि बस अया लागे छे कि स्कूल का दिन है ना वे तो शायद सबसे चोखा दिन छा वे ही पाछा आ जावे तो बस काई बात ही हो जावे। और ये बात करवा के लिए थे कर सको छो माँ के साथ साझा था का स्कूल की यादा करवा के लिए माँ की लाइना 2200-800। हेलो,
4: हाँ जी राम सिंह बोल रहे हूँ, 400 सुनू।
0: हाँ जी राम सिंह जी बताओ।
4: हाँ जब मैं दूसरी क्लास में पढ़े थे ना तो जब एक बार का स्कूल में कोई समारोह हो तो समारोह के मामले में दूसरी क्लास तक आई मान कर दो तो मैंने बुलाया था सबसे अच्छा फटवारी छोड़ो कौन से। तो मैडम बोली राम सिंह को बैठो उनको बुला लू। मैं गए स्टेज पे तो मैंने कहा 4-5 किताबें दी थी नाम में पुरस्कार और बोला कि बेकार ढंग से पढ़ा कर मैं ये सारे ढंग से पढ़ता हूँ मैं तो जब ये आप पुरस्कार दे रहे हो मेरे को तो वो दिन मैंने आज तक जान है।
0: बिल्कुल देखो स्कूल में जो सराहना मिले छे और स्कूल जो छे वो एक तरह से नींव हो छे, है ना। कोई भी विद्यार्थी कोई भी जो बच्चों हो छे उन्हें उनका बचपन में जी तरह से गढ़ियो जा छे। स्कूल में देखो बहुत सारा जया कार्यकलाप बहुत सारी जो गतिविधियां भी हो छे, है ना। थोड़ी बहुत में जया चित्रकारी भी करा छा थोड़ी बहुत में नाच गानों भी कर लिया छा और ये थोड़ो बहुत मतलब जया पीटी वीटी ये भी मतलब हर तरह को जो काम छे थोड़ो थोड़ो थोड़ो क्योंकि जब मैं बड़ा

जी तरह से गढ़ियो जा छे। स्कूल में देखो बहुत सारा जया कार्यकला, बहुत सारी जो गतिविधियां भी हो छे, है ना। थोड़ी बहुत में जया चित्रकारी भी करा छा, थोड़ी बहुत में नाच गानो भी कर लिया छा, और ये थोड़ो बहुत मतलब जया पीटी वीटी ये भी, मतलब हर तरह को जो काम छे थोड़ो थोड़ो थोड़ो, क्योंकि जब मैं बड़ा

0: एकत्रित कचरे के निस्तारण में भी सहायता मिलेगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर के वैज्ञानिक अब ब्रह्मांड से जुड़े शोध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देंगे। संस्थान के दो वैज्ञानिकों को यूरोप की वैज्ञानिक संस्था CERN CERN की एटलस परियोजना से जोड़ा गया है। ये परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक अनुसंधान पहलों में से एक है। इसके लिए मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इस शोध के माध्यम से वैज्ञानिक ब्रह्मांड की संरचना, सूक्ष्म कणों के गुणों और नए वैज्ञानिक सिद्धांतों की संभावनाओं का अध्ययन करेंगे। भरतपुर जिले के रायपुर गांव के पास आज एक सड़क दुर्घटना में 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई, जबकि 13 अन्य घायल हो गईं। ये दुर्घटना उस समय हुई जब ये महिलाएं काम के लिए जा रही थीं और उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। घायल महिलाओं को भरतपुर के RBM जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। मॉनसून इस बार सामान्य से एक सप्ताह की देरी से प्रवेश किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में इसके आगे बढ़ने की उम्मीद है। आज उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में गरज के साथ मध्यम बरसात की संभावना है। कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के आसार हैं। विभाग ने अगले पूरे हफ्ते जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर में बारिश की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था आज जम्मू से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालटल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है। ये यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: SW3 MHz पर आप सुन रहे थे आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रादेशिक समाचार। हम विविध भारती जयपुर से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारी राष्ट्रीय प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम।
2: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।

दरअसल मौसम को लेके इतने खूबसूरत गीत हैं कि अगर हम उनको थोड़ा थोड़ा भी प्ले करते चलें तो आज के कार्यक्रम का वक्त ही पूरा हो जाएगा, इसलिए कुछ गीतों को हमने छांट कर लिया है, चुनकर लिया है। अब जो गीत हमने चुना है वो तो आपको सुनवाएंगे ही, आपसे पूछेंगे फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम, लेकिन एक सवाल और है। आज की इबारत में शुरुआत में एक गीत के अंतरे की कुछ पंक्तियाँ छिपी हुई हैं, आपको वो गीत पहचानना है, फिल्म का नाम बताना है और साथ ही वो अंतरा भी बताना है कि वो अंतरा असल में क्या है, उसमें से कुछ शब्द लिए हैं अंतरे के। तो अब ये गीत और बताइए फिल्म का नाम और मुख्य कलाकारों के नाम।

बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के उन जवाबों के लिए जो उन्होंने तुरंत भेजे हैं। बताया है कि फिल्म ओपेरा हाउस का ये गाना जिसमें प्रमुख कलाकार रहे अजीत और बी सरोजा देवी। और जो दूसरा सवाल हमने पूछा था, मैं पल दो पल का शायर हूँ गीत की ये कुछ पंक्तियाँ थीं, कुछ शब्द असल में चुने थे उसके एक अंतरे से। और बताया है कि कभी कभी कभी फिल्म में अमित जी स्टेज पर गा रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि अगर वो अंतरा आपको याद आ रहा हो तो ज़रूर लिखें, अभी कोई वैसा जवाब दिख नहीं रहा है। वैसे मौसम का जब भी हम जिक्र करते हैं तो खूबसूरती का और तमाम उन चीज़ों का जो प्रकृति से जोड़ती हैं हमें, उन सब की बातें करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मौसम एक चीज़ और सिखाता है कि आज जो है वो कल नहीं रहेगा और जो कल है वो परसों नहीं रहेगा, यानी निरंतर बदलाव की ओर भी संकेत करता है मौसम। और ये भी बताता है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ें, लेकिन उससे पहले ये संदेश है। एक श्रोता ने कहा है कि आज की ये कविता में इबारत जीवन के उस सुखद दौर का उत्सव है जो आते ही चारों तरफ सकारात्मकता बिखेर देता है, लेकिन जाते जाते हमें यादों के साए में छोड़ जाता है। ये पद्य हमें याद दिलाता है कि जीवन में अच्छे दिन या खूबसूरत लम्हे हमेशा नहीं ठहरते। उनका आना जितना सुखद होता है, उनका जाना उतना ही भावुक कर देने वाला होता है। कविता में प्रकृति के मौसम को मानवीय भावनाओं, विशेषकर प्रेम और विरह से बेहद खूबसूरती से जोड़ा गया है। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम अपने साथ बहुत से परिवर्तन लेकर आता है जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देता है। जब चारों तरफ

फूलों की सुगंध और हरियाली बिखरी होती है, तब हम भी मन से इसमें घुल मिल जाते हैं। पर प्रकृति हमें समय समय पर अपने नए नए रूप से अवगत कराती रहती है और हमें ये संदेश देती है कि हर मौसम कुछ समय के लिए आता है, इसके बाद फिर परिवर्तन है और इसमें हमें अपने आप को ढालना है। हर मौसम हमें कुछ देकर जाता है, इसकी यादें हमारे मन मस्तिष्क पर छा जाती हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य केवल आंखों को नहीं आत्मा को भी स्पर्श करता है। फूलों की मुस्कान, रजनीगंधा की भीनी सुगंध और सुहाने मौसम का यह सम्मिलित स्पर्श जीवन के उन अनमोल क्षणों का स्मरण कराता है जहां सुख किसी बड़े उत्सव में नहीं बल्कि प्रकृति की सहज छटा में छिपा होता है। जब चारों ओर सृष्टि अपने सौंदर्य का संगीत बिखेरती है तब मन भी अनायास ही भावों के सुर छेड़ देता है और जीवन एक मधुर गीत सा प्रतीत होने लगता है। बहुत सुंदर बात कही। तो चलिए इसी बात पर एक सुंदर सा गीत आपको बताना है कि फिल्म का संगीत किन्होंने दिया था और प्रमुख भूमिकाएं किन्होंने निभाई थीं।

देवानंद और आशा पारेख ने जब प्यार किसी से होता है फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं। बहुत बहुत धन्यवाद जवाब के लिए। लेकिन हमने संगीतकार का नाम भी पूछा था, शंकर जयकिशन का संगीत था इस फिल्म में। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम बादलों बयारों और बौछारों का है, भीगने का है, यादों की रिमझिम बूंदों की जुगलगंदी में जुगलबंदी में कुछ गुनगुनाने का है। जिस तरह पावस के बादल धरती का मैल धोकर उसे

उजला कर देते हैं, उसी तरह हमारे मन की परतों पर ठहरा आपाधापी अशांति और बेचैनी का गुबार भी बौछारों से धुलकर उज्जवल हो सकता है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि भाई मौसम की बहुत बातें हो रही हैं और बारिश डर डर कर आ रही है, तो यकीन मानिए कि बारिश को हम बुला रहे हैं, बल्कि डर नहीं रही है बल्कि आने के लिए मजबूर होती जा रही है, और बारिश जल्द ही आ जाए हम तो यही दुआ करेंगे। एक और श्रोता ने बताया है कि वो आज शिमला में मौसम बहुत अच्छा हो गया है और मेलोडियस सॉन्ग सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के इन संदेशों के साथ ही साथ मौसम की जो बातें चलती जा रही हैं उनमें बहुत सुंदर तरीके से गीतों की इबारत पिरोई है हमारे एक श्रोता ने। लिखते हैं कि हे विविध भारती, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, सालों पुराना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, 100 साल पहले तो नहीं 66 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, तो आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाएं चलो हवा के संग प्रसारण तरंगों की तरह। क्या बात है, पिछले 3 दिनों से मौसम ने भी करवट ली है, भीगा भीगा दिनों भीगा भीगा प्यार का समय है, सुहाना सुहाना बरसात के नशे में जहाँ हैं, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, बीते हुए लम्हों की कसक याद करते हुए तड़प ये दिन रात की, कसक ये जिन बिन बात की, हे विविध भारती तुझे सुनने का भला ये रोग है कैसा, आप तो बता दे। भाई रोग तो नहीं, ये तो आपकी बातों से लगता है कि किसी मर्ज का इलाज है विविध भारती सुनना, हमने सही कहा ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम का मिजाज समय अनुसार बदलता जाता है और इसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है, बहारों का मौसम रंग बिरंगे फूल और सुगंध मन मस्तिष्क में घुल जाता है, धीरे धीरे ये बंधन दूर चला जाता है और उन लम्हों को याद करते रह जाते हैं। तो याद की बात हुई है, अब इस गीत को जरा सुनते हैं। आप हमें ये बताइए कि इस फिल्म में जो प्रमुख कलाकार हैं उनके नाम क्या थे।

जवाब मिला वासु की भूमिका कमल हासन ने निभाई थी और सपना बनी थी रति अग्निहोत्री। फिल्म एक दूजे के लिए का ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कितनी खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी हैं आनंद बख्शी साहब ने, दुनिया में प्यार की एक ही बोली। तो बताइए कि इस एक ही बोली के साथ साथ कितने सारे गीत बनते चले जाते हैं और वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज़्यादा मन को लुभाता है? बताइए हमें कि इस भाव के साथ लिखा गया वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज़्यादा लुभाता है। हमारे श्रोताओं के कुछ संदेश हैं। मन किसी गीत नगमे की तरह खिल रहा है और किसी खास इंसान, अनजाना रिश्ते की तरफ, अपने भीतर छिपे किसी एहसास की तरफ आकर्षित हो रहा है। ये मौसम की नायत भी हो सकती है और प्यार का एहसास भी। हमारे एक श्रोता ने बताया कि सुरीला सफ़र शुरू होते ही बनारस में बारिश शुरू हो गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई बारिश की, ये मौसम की पहली बारिश, बहुत बहुत मुबारक। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज तो सुरीला सफ़र में शायद विवाह की बात होगी। एक ऐसा रिश्ता अनजान होते हुए भी एक दूसरे को सब कुछ सौंप देना, प्यार की असीम खुशी के साथ जीवन जीने की इच्छा और सात जन्म तक साथ निभाने का वादा करना ही जीवन है। एक और श्रोता ने कहा है कि कहा जाता है कि बंधनों के कई रूप होते हैं, सात फेरों का बंधन, सात जन्मों का बंधन, जन्म जन्मांतर का बंधन, परंतु एक बंधन और हो भी होता है, मन से मन का। बहुत सुंदर। रेशम सा कोमल, बहते हुए नीर सा पवित्र, हवाओं में खुली हुई चंदन और फूलों की महक सा जो मन से मन की डोर को बांध कर रखता है। जब ये बंधन बनता है तो एक चुप सा मौन सा बन जाता है। यहाँ दिव्य प्रेम की अनुभूति होने लगती है जिसमें किसी अग्नि साक्षी, किसी हवन, यहाँ तक कि किसी सात वचन की भी कोई भूमिका नहीं है। यहाँ जो प्रेम डोर में बंधन होता है उसे आपस में केवल मन से मन को एक मौन ने स्वीकार किया है। न बांधने की चाहत, न छूटने का डर, क्योंकि ये है मन से मन का बंधन। बहुत सुंदर बात कही आपने। और अब अगला गीत सुन रहे हैं, सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के संगीतकार कौन हैं। और हाँ, मौसम को लेकर जो प्यार की बोली की बात है उसमें आपको सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, मन के करीब गाना कौन सा लगता है?

इकबाल कुरैशी का संगीत था इस फिल्म में लवन शिमला का। ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। और हमने जो गानों के का जिक्र किया था कि ऐसे दिल के बोल, दिल की प्यार की बोली बोलने वाले कौन से गाने आपको पसंद हैं, तो हमारे श्रोताओं ने कई गाने, बड़े सुंदर सुंदर गाने लिख भेजे हैं। मीठे बोल बोले बोले पायलिया, और पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, रफ़ी जी, सुमन जी, शगुन फिल्म का गाना, और एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आना तो आके कभी अब जाना नहीं। एक श्रोता लिख रही है कि बाहर बरसात हो रही है और रेडियो सेट पर गानों की क्या बात है। एक और श्रोता ने बताया नज़रों से कह दो प्यार में, मिलने का मौसम आ गया। एक श्रोता पूछ रहे हैं कि रुम्बा कहाँ की भाषा है, इसका क्या मतलब है जी। तो अच्छा होगा कि हमारे जो कोई दक्षिण भारतीय साथी इस समय हों फेसबुक पर वो बताएं। एक बड़ा खूबसूरत सा गाना हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है, अरे ओ शोख कलियों मुस्कुरा देना, जो वो जब आए, सुनो फूलों महक अपनी लुटा देना, वो जब आए, फिल्म जब याद किसी की आती है का ये बड़ा ही सुंदर सा गीत इन्होंने हमारे साथ साझा किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता बता रहे हैं कि फिल्म एक दूजे के लिए मैंने 1982 में पहला मैटनी शो देखा था, उस समय मैं फोर्थ ईयर कॉलेज में था। इस फिल्म ने सभी को पागल बना दिया था। और बहुत सारे संदेश और भी हैं। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम अंगड़ाई में गदराई वसुधा के रूप सौंदर्य से बौराए आशिक मिजाजी दीवानगी को और भी दहनशील बनाती इबारत है, सुमन सुगंध व्याप्त कुसुम दल के मधुरस पान कराती और प्रेम रस बिखेरती इबारत में दीवानगी की हदें पार हो जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य, फूलों की मुस्कान एवं भीनी खुशबू और मौसम का मनमोहक मिजाज आपस में मिलकर एक ऐसी जीवंत कविता रचते हैं जो तन और मन को गहराई से भिगो देती है। ये वो त्रिवेणी है जहां हर एक तत्व दूसरे का पूरक बनकर इस धरा को स्वर्ग जैसा अनुभव कराता है। सौंदर्य, सुगंध और मौसम के संगम का सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्या बात कही है, बदलते मौसम के साथ प्रकृति का मिजाज भी बदलता है। आसमान में तैरते बादलों की लुका छिपी, कभी रिमझिम फुहारें और क्षितिज पर बिखरती सूर्य की किरणें, ऐसा समा

0: मानती हैं कि प्रकृति का हर कण जीवंत हो उठता है, जो आसमान के साथ जीवन में भी सतरंगी इंद्रधनुष रच देता है। तो बताइए कि ये जो इंद्रधनुष रचता है सतरंगी आसमान में बारिश के दिनों में, उस इंद्रधनुष के साथ रंगों का प्रयोग इस गाने में तो हो ही रहा है जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, और कहाँ कहाँ पर होता है, और क्या आज भी आप वैसे ही ललक कर इंद्रधनुष देखने छत पर जाते हैं या बाहर निकलते हैं जैसे बचपन में जाया करते थे?
1: मैंने

सलील चौधरी का संगीतबद्ध किया हुआ ये सुरीला सा गाना आनंद फिल्म से मुकेश की आवाज़ में आपने सुना और बहुत सारे श्रोताओं ने बताया वो गाना जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, ये भी मुझे पसंद है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि इस मौसम का सबसे बेहतरीन सुंदर गीत जो मेरा और विविध भारती का पेटेंट परमानेंट गीत है। रिमझिम

गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन। इस गीत का फिल्म का नाम मैंने विविध भारती रखा है, वैसे इस फिल्म का नाम है मंजिल। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़ है ये तो पहचाने, इन्होंने शायद लव इन शिमला फिल्म के उस गाने की बात की है। कहा बात इसी गाने के लिए, हमारे एक और श्रोता ने बताया है कि इस गाने में इलेक्ट्रिकल हवाईयन गिटार स्वर्गीय सरदार हजारा सिंह जी द्वारा बजाया गया है। और बड़ा प्यारा गीत, दिल थाम चले हम, जब भी बारिश होती है तो पहले ये गाना होठों पर तैर जाता है, बरखा रानी ज़रा जम के बरसो। और ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का समा, ये गाना बहुत पसंद है हमारे एक और श्रोता को। मौसम आधारित गीतों में सबसे ज़्यादा पसंद है ये गाना हमारे एक और श्रोता को, मौसम मौसम ये लवली मौसम, और दूसरा लोफर का आज मौसम बड़ा बेईमान है। और हमारे कुछ श्रोताओं ने दिल थाम चले गीत के बारे में बताया है कि बहुत ही रोमांटिक गाना है। एक श्रोता बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लुभाने वाला फिल्म गीत है तीसरी कसम का, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। और ये एक और श्रोता ने कहा है कि इस गीत के बारे में केवल ये पता है कि रफ़ी साहब गा रहे हैं। तो चलिए, हमारे जिन श्रोताओं को पता है कि इस फिल्म में रफ़ी साहब की गीत के इस आवाज़ को पर्दे पर कौन अपने होठ हिला रहे हैं, तो अगर आपको पता हो तो हमें ज़रूर लिख भेजें। एक और श्रोता ने केदारनाथ फिल्म के गाने का जिक्र किया है, काफिराना सा है इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, बहुत सुंदर गाना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, ये इनका गाना बहुत इन्हें प्रिय है। तमिल भाषा का शब्द है रुम्बा, हमारे एक श्रोता ने बताया है। और एक और श्रोता कह रही हैं कि आपकी दुआ का असर हुआ है, कल बनारस में रात को एक घंटा रिमझिम बारिश हुई थी, हमारे सभी पेड़ पौधे बारिश के पानी से भीग गया था, जैसे खिल गया सब पेड़ पौधे, बनारस में मौसम सहनीय हो गया है, आपको ढेर सारा शुभेच्छा। आप नई वर्षा के बाशिंदों को दुआ भेजिए जी, ज़रूर वहाँ बारिश होगा। क्या बात है भाई, हम तो बिल्कुल भेज रहे हैं अपने उन सभी श्रोताओं के लिए, ठंडे ठंडे बादल वहाँ तक पहुँचे। और अब ये गाना आप सब के लिए, ज़रा इस गीत को सुनिए, फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए।

इंद्रधनुष को लेकर हमने जो सवाल पूछा था उसके जवाब कई देखने को मिले। इंद्रधनुष को देखना अच्छा लगता है बचपन में भी और अब भी, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और एक और श्रोता ने बताया कि मैं अमेरिका के नियाग्रा फॉल देखने गई थी, वहाँ मैंने एक ही जगह पर ही छोटे छोटे बहुत से इंद्रधनुष हर थोड़ी थोड़ी दूर पर देखे जो बहुत अजूबे से लगे। वाकई हम तो सोच रहे हैं कि क्या नज़ारा होगा वो। एक और श्रोता ने कहा है कि असल ज़िंदगी में मुंबई में इंद्रधनुष नहीं दिखता, आज का प्रोग्राम मुझे प्रोत्साहित कर रहा है कि मुंबई से बाहर जाके इंद्रधनुष देखूं। क्या बात है। एक और श्रोता ने कहा है कि इंद्रधनुष जब भी बादलों से झांकता था हम रंग गिनने लग जाते थे, शहरों में कम दिखाई देता है, मिस यू। सच में इंद्रधनुष जब भी दिखता है तो लगता है वाह वो दिन लौट आए। एक और श्रोता ने कहा है कि हम तो अभी भी इंद्रधनुष उतनी ही ललक के साथ देखते हैं, और एक बार तो दो एक साथ इंद्रधनुष निकले थे तो इच्छा भी मांग ली। हाँ, ये टोटका तो बहुत ही ज़्यादा कारगर होता था, और कितना इसको जो सबसे पक्की सहेलियाँ होती थी वो तुरंत दौड़कर बुला ले जाती थी कि चलो चलो दो इंद्रधनुष निकले हैं, जो मांगना है मांग लो। और बहुत बार मांगा जाता था कि भाई गणित का पर्चा बड़ा ख़राब होने वाला है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो वो उसमें अच्छे नंबर आ जाएँ, या कि हमें ये ड्रेस मिल जाए, कुछ इस तरह की ख्वाहिशें होती थी। आपने क्या कभी ऐसी कोई ख्वाहिश की है हमें ज़रूर बताइएगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रुम्बा ये तमिल शब्द है, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत या बहुत ज़्यादा। एक और श्रोता ने कहा है रंग तो जीवन शैली का अभिन्न अंग है, शिक्षा हो, सजावट हो, प्रकृति हो, विज्ञान हो या जीवन ही क्यों ना हो, ये सात रंग ही असली हैं, बाकी सब नकली है। बरसातों में दूर पहाड़ पर ये इंद्रधनुष मनमोहक होता है। और ये भी तो बताइए कि इन सात रंगों का, इन सात की ये गिनती जो है वो सुरों में भी इस्तेमाल होती है, सात सतरंगी सपने भी होते हैं और इंद्रधनुष तो होता ही होता है। एक श्रोता ने कहा है कि हमारी सगाई के बाद जब पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्मपत्नी से मुलाकात हुई थी तो मौका देखकर अकेले में ये गीत गाकर सुनाया था, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, ये सुनकर वो मुस्कुराई, ये प्यार आज तक कायम है और अंतिम सांस तक रहेगा। वाह बहुत सुंदर बात। एक और श्रोता कह रहे हैं वाह बहुत सुंदर, मैंने तेरे लिए सात रंग के सपने, सुरीले सपने चुने, हर अंतरे में कई भावों को बांध कर दिल की बातें करता हुआ प्रतीत होता है, मुकेश जी की आवाज़। और ये हमारे श्रोताओं ने कुछ संदेश में कहा है रजनीगंधा की बात, रजनीगंधा संग खिलता मन अक्सर किसी अनजाने से बंधन की महक से सराबोर हो जाता है, ज़िंदगी की आपाधापी में जब कोई ख़ास करीब आता है तो भावनाएं धीरे धीरे से दिल में अपनी जगह बनाने लगती हैं, शुरुआत भले ही खामोश हो लेकिन जैसे ही दिलों के तार जुड़ते हैं जीवन के सारे सुर सुरमई हो जाते हैं और बिखरे हुए जज्बात सिमट कर एक मुकम्मल ताल में बन जाते हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने। तो चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। इस गाने को सुनकर बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिका में अभिनेत्री कौन थी, और साथ ही आपको ये भी बताना है कि ये जो फूल है रजनीगंधा ये गुलदानों में बहुत लोकप्रिय होता है, या कभी हम जब किसी को बुके गिफ्ट करते हैं, आपको अपने फ्लावर वेज में कौन सा फूल सबसे सुंदर लगेगा अगर आप किसी को देना चाहें या घर में सजाना चाहें, कौन सा फूल सबसे सुंदर लगता है।

0: पिछले गीत के सवाल का जवाब नजर आया। हमारे श्रोताओं ने बताया कि प्रेम गीत फिल्म के का जो गाना हमने सुनवाया था और पूछा था कि प्रमुख कलाकार कौन से हैं, राज बब्बर और अनीता राज पर फिल्माया गया है ये गाना और इनकी लिस्ट का ये पांचवा गीत शामिल हुआ, बहुत बहुत बधाई। और एक और श्रोता ने बताया कि जबलपुर का मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है, बरखा रानी आज सुबह से ही बरस रही हैं, सुबह सुबह छत पर जाकर सूर्य नमस्कार करने की आदत है, आज जब छत पर गए तो रिमझिम फुहारों और फुहारों के साथ फूलों का झूमना, पंछी की मधुर आवाज़ दिल को अजीब सुकून दे रही थी, ये मंजर हमने वीडियो में कैद कर लिया है। आज की बारिश शायद ये कहना चाह रही है, रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, ये पल हमें याद आएंगे, मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना। अच्छा, इन्होंने कुछ और गीत भी बताए हैं, क्या मौसम है चल कहीं दूर निकल जाएं, हाँ ये भी बहुत सुंदर ही सा गीत है। एक श्रोता ने बताया कि बचपन में जब इंद्रधनुष दिख जाता था तो हम कुछ विश मांगते थे, और एक श्रोता ने कहा है कि वाह क्या सुंदर प्रश्न पूछा आपने, हम तो जब भी वर्षा ऋतु में मेघों का आगमन होता है तो मोबाइल लेकर छत पर चढ़ जाते हैं रूई जैसे सुंदर सुंदर मेघों की क्लिक्स लेने के लिए, खूब सारी क्लिक्स लेते हैं लेकिन फिर वापस भागना पड़ता है भीगने के डर से, स्वयं नहीं मोबाइल के। सच में मोबाइल बचाना बहुत ज़रूरी है इस मौसम में। एक और श्रोता कह रहे हैं, जो हमने छोटे छोटे इंद्रधनुषों वाला एक संदेश पढ़ा था उसी से संबंधित है ये संदेश हमारी एक और श्रोता का लिखा है, ये तो हमने भी देखा क्योंकि कनाडा और अमेरिका दोनों के बीच का नजारा ही है नियाग्रा फॉल्स पर, बड़ा ही प्यारा नजारा हम कभी नहीं भूल सकते, वो इतना प्यारा समा वो पल मानो हमारे दिल में सदा के लिए बस गया है। एक और श्रोता ने कहा है कि मौसम की बातें हो रही हैं तो आज सभी को गरजते बरसते बादलों का इंतज़ार है, लेकिन कुदरत भी और इंतज़ार करा रही है, इंतज़ार के इस वक्त के लिए इनको गीत याद आया है, कहाँ से आए बदरा, फिल्म चश्मे बदूर का गाना। और एक श्रोता कह रहे हैं कि भाई इंद्रधनुष प्रेमी इंद्रधनुष को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भली भांति देख सकते हैं और अपने अपने दुनिया को मुट्ठी में भरकर खुश हो सकते हैं। भाई ये कुछ मतलब ठीक है देख सकते हैं, लेकिन देखने के साथ जो उसको एक उल्लास जुड़ा रहता है वो कैसे महसूस होगा। ये हमारे एक श्रोता ने मैसेज भेजा है कि आज कालिख वक्त एहसास और यादों के खूबसूरत ताने बाने को बुनता है, ये महज एक कुछ पंक्तियां नहीं बल्कि ज़िंदगी के सुरीले सफ़र का एक जीवंत दस्तावेज हैं, इसमें एक ऐसे रूमानी मौसम का जिक्र है जो अपने साथ सतरंगी ख्वाब लेकर आया है, जहां अनजाने रिश्ते भी सदियों पुराने लगते हैं, जैसे जैसे ही रजनीगंधा की भीनी खुशबू हवाओं में घुलती है जिंदगी का हर बिखरा सुर एक मुकम्मल ताल बन जाता है, ये लम्हा भले ही हमेशा न ठहरे पर जाते जाते दिल में ताउम्र मुस्कुराने वाली एक मीठी कसक छोड़ जाता है। सच में एक और श्रोता ने कहा है कि पुष्प बहार का सुहाना मौसम, सुगंधित फूलों की महक जीवन को खुशियां प्रदान कर रही है, सृष्टि देवता खिलकर प्रसन्नता से हंस रही है, मन भावन गीत तन्मयता से गुनगुना रही हैं, बिल्कुल बादल बिजली चंदन पानी और सुमन सुगंध की तरह, धीरे धीरे यह मस्ताना मौसम एक मीठी मीठी सी चुभन और ठंडी ठंडी सी अगन हमें अर्पित कर रहा है, सुरीले सफर में आज ऐसे ही कुछ मधुर गीत। और इन्होंने कुछ गीतों का भी जिक्र किया है, और बड़ी खुशी की बात है कि शुरुआत में भेजा हुआ संदेश इसमें से कई गाने हमारी लिस्ट से मैच हो गए। एक और श्रोता ने कहा है कि कलियां और बहारों की तो बातें हैं और रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, आओ मिल जाएं हम सुमन और सुगंध की तरह, ये कुछ इन्होंने गीत लिखे हैं तो चलिए ये गीत भी शामिल हो गए। और एक और श्रोता ने कहा है कि फूल और कलियों की बातों पर इन्होंने अपने चारों तरफ उन्हें खिलते हुए महसूस किया है। अब ये कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए, इस गीत को सुनिए, बताइए फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।
1: अभी अलविदा

रात होगी लेकिन यादों के ये चिराग जलते रहेंगे। हमारे श्रोताओं ने बताया निकाह फिल्म का ये गाना आपने सुना। महेंद्र कपूर की आवाज़, हसन कमाल के बोल, रवि का संगीत, राज बब्बर और सलमा आगा की ये फिल्म। और बहुत सारे संदेश भेजे हैं उन फूलों के बारे में। हमारे एक श्रोता ने कहा है, रजनीगंधा तो सच में दिल से दिल की आवाज़ पहुंचाने का जरिया है। मानो हमारी गुरु स्वरूपा दीदी ने जब इतने प्यार से हमारे सत्संगी सखी के लिए रजनीगंधा फूलों का गुलदस्ता भेजा तो नेत्रहीन हो चुकी और डायलिसिस पर चल रही सखी फूलों को पाकर खुशी से झूम उठी और रजनीगंधा फूल तुम्हारे गीत गुनगुनाने लगी। उनकी खुशी देखकर हम सब भी खुशी से सारे दर्द भूल कर उनके साथ झूमने लगे। ये बदलाव पर व्यंग है जिसकी गिरफ्त में हम सभी प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का दंश झेल रहे हैं, हमारे एक और श्रोता ने कहा है, जो उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और कर सकते हैं। और हमारे और श्रोताओं के भी संदेश हैं, लेकिन अब कार्यक्रम का वक्त हो रहा है। एक श्रोता कह रही है कि फ्लावर वास से ज़्यादा हमको ये जो पेड़ों पर फूल अच्छे लगते हैं, पेड़ पौधों पर अच्छे लगते हैं, क्योंकि फ्लावर वाज में ये जल्दी से मुरझा जाते हैं। हाँ, सच में मुरझा जाते हैं, लेकिन यादों की खुशबू कभी कम नहीं होती और कभी नहीं मुरझाते वो फूल जो मीठी मीठी बातों के साथ हमारे मन में यादों के रूप में सुरक्षित रहते हैं। इन्हीं बातों के साथ अब दीजिए राजुल को इजाज़त। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।

नमस्कार दोस्तों, मान सम्मान आदर किसी भी व्यक्ति संस्था या वस्तु के प्रति सकारात्मक भावना या सम्मानपूर्ण व्यवहार होता है। ये किसी के अच्छे गुणों, योग्यताओं या उपलब्धियों के लिए प्रशंसा की भावना को व्यक्त करता है। हर एक मानव स्वभाव के लिए ये एक सार्वभौमिक या सर्वमान्य सच्चाई है कि हर व्यक्ति अपने लिए सम्मान और आदर की अपेक्षा रखता है। सम्मान पाने की ये लालसा किसी भी उम्र, लिंग या पद से परे होती है। सम्मान किसी स्वार्थ या मजबूरी से प्राप्त किया गया है तो ज़्यादा नहीं टिक पाता, कभी ना कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है। इसीलिए ये जान लें कि सच्चा सम्मान आपसी विश्वास और प्रेम से ही उपजता है। इस बुनियादी मानवीय मूल्य को समझने की बहुत आवश्यकता है। यदि

सम्मान कोई खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों, विचारों और व्यवहार से कमाई गई सबसे बड़ी पूंजी है। ये ऐसा अनमोल उपहार है जो हम दूसरों को दे सकते हैं और बदले में हमें वही वापस भी मिलता है। विनम्रता और आदर के बिना सच्चा सम्मान कभी पाया नहीं जा सकता। हर व्यक्ति अपनी गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहता है और ये एक शाश्वत सत्य है। सम्मान एक दो तरफा प्रक्रिया है। वो इस तरह कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों से आदर की अपेक्षा करता है तो उसे खुद भी अन्य लोगों के विचारों, भावनाओं और सीमाओं को सम्मान देना होता है। बाहरी सम्मान की प्राप्ति के लिए हमें खुद की नज़र में सम्मानित और आत्मविश्वासी होना ज़रूरी है। जो व्यक्ति खुद का मूल्य समझता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। अपने व्यक्तिगत जीवन या कार्यक्षेत्र में सम्मान पाने के लिए दूसरों को सम्मान देने की हमारी भावना बेहद ज़रूरी है।

सम्मान की चाह मानव स्वभाव का एक अंतर्निहित हिस्सा है। हम दूसरों से सम्मान पाना तो चाहते हैं, तो सबसे पहले दूसरों के विचारों, सीमाओं और भावना को सम्मान करना सीखना होगा। किसी भी व्यक्ति से सम्मान की अपेक्षा रखने से पहले आत्मसम्मान करना और अपने मूल्यों पर अडिग रहना बहुत ही जरूरी है। जो व्यक्ति खुद की कद्र करता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। अपनों से बड़ों का सम्मान करना हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्यों की मजबूत नींव है। अपने अनुभव हमें सही मार्गदर्शन देते हैं और बड़ों का आशीर्वाद हमारे जीवन में सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। बड़ों के प्रति आदर भाव रखने से सकारात्मकता बढ़ती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। भला।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फॉर डिकेड्स।
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है, हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
2: We must address the conditions conducive to the spread of terrorism.
0: अमेरिका, इजराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालटाल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
4: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जयरामजी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जयरामजी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
5: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
6: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और AI सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए सुने सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अमर फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ, शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद की धुन।

0: एक नई खुशी। JDL आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुजी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

0: ना गया।
1: असद भोपाली का लिखा और रवि का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम अपना बना के देखो। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म चार दीवारी का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, सुरों में पिरोया है सलील चौधरी ने।

0: एक रास फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के थे और धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं हनीमून फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में ये गीत आपने सुना। सम्राट चंद्रगुप्त से हसरत जयपुरी ने लिखा था और कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई थी। और अब आपको सुनवा रहे हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ गीत। लिखा है शैलेंद्र ने, सुरों में पिरोया है शंकर जयकिशन ने। ये है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते हैं ये सदाबहार नगमा।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। दीपा आपको भी मेरा नमस्कार।
1: सोनाली आपको और हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: और क्या हालचाल है?
1: बिल्कुल अच्छे। और आशा करते हैं कि हमारी सारी सखियां हमारे सभी श्रोता अपना और अपनी सेहत का और अपने परिवार का खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि बदलता मौसम है इस वक्त कुछ और एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है।
0: और झमाझम बारिश हो रही है तो बारिश का हम सभी लुत्फ उठा रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: जिन जगहों पर अभी बारिश नहीं आई है वे बारिश का इंतजार कर रहे हैं
1: और उनके लिए भी ये शुभकामना है कि

0: मिलती है जब हम अपने घर में पुराने फोटो के एल्बम लेकर बैठते हैं। कह रही मैं पहले कैसे दिखती थी, कितनी सुंदर दिखती थी, मेरे बाल कितने लंबे थे, मैं कितनी सुंदर दिख रही थी, मेरे बच्चे कितने अच्छे दिख रहे थे, या फिर हमारा बचपन कितना खूबसूरत था। ये सब हम जब पुराने फोटो एल्बम देखते हैं, पुराने फोटो एल्बम देखना अपना एक अद्भुत अनुभव होता है।
1: बिल्कुल, और एक फिल्म से चल जाती है उस दिन को, हम फिर से लगता है जैसे
0: जी रहे हैं
1: और वो वक्त उस वक्त क्या हुआ था, कुछ बातें भी याद आ जाती हैं और सभी लोग उस बातों को फिर याद कर करके खूब खुश होते हैं और आनंद का जो आपस में
0: क्षण
1: होता है वो उसकी अनुभूति, उसका अनुभव ही कुछ अलग है। सोनाली,
0: साथ ही कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम तकदीदा बेगम कांथा कढ़ाई वर्क में जिन्होंने काम किया है बहुत आगे बढ़ी है, तो उनके बारे में हम जानकारी देंगे।
1: और जो आजकल एक बात चली है कि बच्चों की शादी अपनी मर्जी से होना चाहिए या उसमें बड़ों की भी मर्जी शामिल होना चाहिए, सलाह उनकी शामिल होनी चाहिए या नहीं, ये इस बातों पे घर घर में बहुत सारी बातों पर विचार विमर्श चलते रहते हैं जहाँ पे शादी योग्य युवक या युवतियाँ हैं उनके घरों में। तो हम भी कुछ जानेंगे कि कैसा होना चाहिए, बड़ों की सहमति या बड़े दिखाएं या बच्चे ही अपनी मर्जी बता दें, क्या सही है क्या गलत है उनके लिए, इस बारे पे थोड़ी विचार और विमर्श करेंगे।
0: देखिए, जो बदलता ज़माना है ना, पुराने ज़माने में थोड़ी छोटी उम्र में शादी हो जाती थी तो उस वक्त माता पिता जो है वे उनके बारे में अच्छा ही सोचते थे, पर अब बदलते ज़माने के नज़रिए जो बच्चे हैं ना थोड़ी बड़ी उम्र में शादी करते हैं, यानी 25, 26, 27, 28 के बाद में शादी करते हैं, तो उनकी राय जान लेना उतना ही ज़रूरी है क्योंकि उन्हें एक साथ ज़िंदगी गुजारना होता है। तो इस विषय में हमारे श्रोताओं ने, हमारी सखियों ने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे हैं, तो उनके हम कमेंट शामिल करेंगे क्योंकि ये श्रोताओं का ही सेगमेंट है। मुझे कुछ कहना है, बच्चों की सहमति से हो शादी, है ना?
1: बिल्कुल।
0: और साथ ही उपयोगी टिप्स अच्छी नींद के लिए, जो आजकल हम सभी को नसीब नहीं होती है। कुछ कुछ खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें बस ऐसे बिस्तर पर लेट गए और नींद लग जाती है, पर कुछ कुछ लोगों को बहुत जद्दोजहद के बाद नींद आती है।
1: जी, तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि भाई एक स्वस्थ नींद अगर मिलेगी तो स्वस्थ तन होगा और उसके बाद आपका अगला दिन उसी तरह से स्वस्थ होगा और साथ में तभी वो सकारात्मक हो सकेगा। तो आगे आने वाले दिनों के लिए या कल के लिए आज की रात सोना बहुत ज़रूरी है, वो भी एक गुड क्वालिटी स्लीप आपको मिलना चाहिए।
0: और आप क्या करना चाहिए?
1: गीत सुनना चाहिए।
0: तो सुनते हैं गीत।
2: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: तो दीपा, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे तकदीरा बेगम के बारे में।
1: जी, बंगाल की रहने वाली हैं ये। और सोनाली, आप तो जानती हैं कि बंगाल राज्य अपनी पारंपरिक और उत्कृष्ट कांथा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नक्शी कांथा, लेप कांथा, सुजनी कांथा, बेटन कांथा, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारी शैलियां हैं। ये कला हमारे देश के प्राचीन विरासत का एक अभिन्न अंग है और बंगाल की विशेष पहचान।
0: बिल्कुल सही कहा आपने दीपा। नक्शी कांथा में पुरानी साड़ियों और कपड़ों को एक के ऊपर एक रखकर रंगीन धागों से जटिल कढ़ाई की जाती है, और इस कला में रनिंग स्टिचिंग या कंथा स्टिच का उपयोग करके सुंदर नक्शा यानी कलात्मक पैटर्न बनाया जाता है, और इसका उपयोग अक्सर रजाई, बेडशीट, पर्दे और अन्य घरेलू सामानों के लिए किया जाता है। खास तौर पर इन्हें साड़ियों पर भी उतारा जाता है।
1: बिल्कुल, और तकदीरा बेगम जो है नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार हैं। उनका जन्म 1953 में पश्चिम बंगाल के परगना जिले में का एक छोटा इलाका है, नाम है श्री कृष्णापुर, वहाँ हुआ था। उनकी माँ घर पर बंगाल की जो पारंपरिक ये जो कांथा कढ़ाई है वो किया करती थी। अपनी माँ को काम करता देख तकदीरा को इस कला के लिए, जैसे एक होता है ना कि घर में एक कोई बड़ा आपका कर रहा है तो आपका भी प्यार उस कला की तरफ हो जाता है, तो स्वाभाविक सा हो गया कि तकदीरा का भी जो आकर्षण है इस कांथा कढ़ाई की ओर गया।
0: यानी ये कितनी अच्छी बात है ना कि जब हम कोई अच्छा काम बच्चों के इर्द गिर्द करते हैं तो बच्चों को भी उसमें अपने आप रुचि उत्पन्न हो
1: जाती है। जी,
0: और तकदीरा बेगम नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार है, तो उनका जन्म तो आपने बता ही दिया कि 1953 में हुआ था, और बचपन में तकदीरा अक्सर स्कूल के बाद अपनी माँ के साथ कंथा कढ़ाई करती, और जिसमें वे रंगीन धागों से पारंपरिक डिज़ाइन बनाती। 12 या 13 साल की उम्र तक कांथा कढ़ाई की रचनात्मक दुनिया में उन्होंने प्रवेश कर लिया। देखिए, 12-13 साल की उम्र कितनी छोटी उम्र होती है ना।

0: बिल्कुल, मतलब उस वक्त तो समझ ही नहीं आता है, लेकिन ये कढ़ाई किया करती थी। और तकदीरा बेगम के पिता मूल रूप से श्री कृष्णपुर के निवासी ही थे, लेकिन बाद में वो जय कृष्णपुर चले गए थे। उन्होंने औस ग्राम के गर्ल्स स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई की थी। सिलाई और कढ़ाई में उनकी रुचि बहुत थी। 5वीं कक्षा से ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। अपनी माँ की काथा कढ़ाई से प्रेरित होकर वे पारंपरिक शैक्षणिक विषयों से परे, यानी उनको शायद पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता होगा, अब जा करके वो सीधे सुई धागे की ये जटिल कला की ओर उनका आकर्षण बढ़ने लगा।
1: पिछले 30 वर्षों से तकदीरा ने अपना जीवन काथा कढ़ाई की कला को निपुणता प्रदान करने में समर्पित कर दिया है। बचपन के शौक के रूप में शुरू हुआ ये काम धीरे धीरे उनका जुनून और पेशा बन गया। स्कूल के दिनों में उन्होंने जो सिलाई कौशल हासिल किया था, उसी शिल्प ने उन्हें उनके आजीवन सफर की नींव रख दिया। यानी कितनी अच्छी बात है कि जो काम उन्होंने शौकिया तौर पर शुरू किया, उस शौक ने ही उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया उन्हें। जी,
0: और पिछले कई सालों से आप महिलाओं को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत उनकी मदद कर रही हैं। उनका मानना है कि पारंपरिक कलाओं के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता हम महिलाएं पा सकती हैं, अपना जीवन भी बदल सकती हैं, और साथ ही सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी हम मदद कर सकते हैं।
1: और उनका ये मानना था कि मैं कभी खाली नहीं बैठ सकती थी, मुझे काम करना हरदम पसंद था, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने मुझे पद्मश्री पुरस्कार के काबिल समझा और वर्ष 2024 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
0: और कई सारे उनके इंटरव्यूज हुए, तो उसमें से एक साक्षात्कार में उन्होंने ये भी किया, ये भी बताया था कि मेरी माँ ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो अपनी इस कारीगरी से, इससे बने जो भी उत्पाद थे उससे पैसे कमा पाएंगी। उस समय हमारे परिवार में इसकी इजाज़त भी नहीं थी, ये वो इस तरह से बताती हैं, लेकिन वह कढ़ाई में माहिर थी और उन्होंने मुझे कई दुर्लभ और जटिल डिज़ाइन सिखाए। मैं इस कढ़ाई को एक बड़े मुकाम तक ले जाना चाहती थी, ये मेरा सपना हुआ करता था।
1: और उनका ये मानना था दीपा कि भले ही कई लड़कियां काम करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्सुक भी रहती हैं, लेकिन उनके घर से उनके पति उन्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। पर उनका ये कहना था कि उनके पति यानी तकदीरा बेगम के पति ने उन्हें भरपूर समर्थन किया और अपने दोस्तों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे अपनी पत्नियों को काम करने दें और उन्हें आत्मनिर्भरता बनने दें, आत्मनिर्भर होने दें।
0: बिल्कुल, अपनी लगन से तकदीरा बेगम देश की अनगिनत महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और कौशल से पारंपरिक कला न केवल जीवित रह सकती है, बल्कि पीढ़ियों को सशक्त भी बना सकती है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की उनकी 3 दशकों से अधिक की यात्रा चुनौतियों से तो बहुत भरी रही सोनाली, फिर भी इनके जो परिणाम हैं बहुत उल्लेखनीय निकले। इतनी सफलता उन्होंने हासिल की है और साथ में अपने सिर्फ खुद सफल नहीं हो रही हैं, खुद आत्मनिर्भर नहीं हुई, उन्होंने अपने साथ कई सारी महिलाओं को ये सफल राह दिखाई है।
1: यानी देखिए ना, उनकी एक कला के कारण कितनी सारी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी हैं, उन्हें उनकी आमदनी हो रही है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कोई भी कला है जो खुशियाँ तो देती है, पर ये खुशी उन्होंने अपने खुद तक सीमित नहीं रखी है, बल्कि उनके कारण कितने सारे घरों में रोशनी आ रही है।
0: बिल्कुल, और ये जो आर्ट है काथा कढ़ाई, ये भी संरक्षित है आज भी, और ये तो इसमें साड़ियों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये इस प्रकार की कढ़ाई।
1: तो श्रोताओं ने भी इस बारे में बहुत सारे कमेंट्स लिखे, हम वो बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी क्या करें,
0: गीत सुनेंगे।
1: तो एक गाना सुनते हैं,
0: चलिए।
2: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो

0: फरमाना।
1: कुछ ऐसा ही होता है ना, जब हम पुरानी एल्बम या पुराना कोई अपनी कोई पुरानी तस्वीर हमारे हाथ लग जाती है घर सफाई के समय, तो लगता है कि वही फिर से वही बात कुछ फरमा दे, वही चीज हो जाए हमारा। हम कई बार ऐसे हंसी मजाक में बोलते हैं वैसा ही हो जाए, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस से उतने छोटे हो जाएं जैसे उस वक्त थे जो हम तस्वीर में देख रहे होते हैं।
2: यानी उस वक्त मैंने थोड़ा कम लाड़ दुलार किया, अब वो ऐसे होते तो मैं और प्यार करती। उस वक्त मैं इतनी उलझनों में थी, इतने कामों में व्यस्त थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से खिला नहीं पाई, अच्छी तरह से उनका बचपन नहीं देख पाई, तो फिर से वो छोटे हो जाए तो मैं फिर से उन्हें खिला लूँ, है ना।
1: और एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि उस दिन उसने बहुत ज्यादा बदमाशी की थी, तो उसे एक तो थप्पड़ उसे दे ही देना था, तो बाद में वो जिद करता ही नहीं।
2: वैसे दीपा, पुराने एल्बम हमारे जीवन की वो अनमोल धरोहर होते हैं ना, जिनमें केवल तस्वीरें नहीं बल्कि भावनाएं, रिश्ते और बीते समय की खुशबू संजोई रहती है।
1: बिल्कुल। और सोनाली, जब हम किसी पुराने एल्बम को हाथ में लेकर उनके पन्ने पलटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय हमें पीछे ले के जा रहा है और हम अपने ही पुराने दिनों को दोबारा मिल रहे हैं।
2: वैसे दीपा, एल्बम का जो हर पन्ना होता है ना, उसकी एक अलग कहानी होती है। और

0: ही बचपन की शरारतें दिखाई देती हैं, तो कहीं माता पिता का स्नेह भरा चेहरा दिखाई देता है, कहीं परिवार के साथ बिताए त्योहारों के पल, कहीं दोस्तों के साथ हंसी मजाक की यादें, तो कहीं स्कूल के पिकनिक के फोटोज होते हैं। तो जो
1: हाँ
0: फोटोज,
1: बिल्कुल,
0: ये अनगिनत यादें होती है ना,
1: बहुत
0: और
1: सारी
0: कुछ
1: जी,
0: तस्वीरें तो ऐसी होती नहीं जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाती है, और कुछ आंखों को नम कर देती है।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने कि कभी कभी एकदम ऐसा लगता है हाय वो दिन कहाँ गए, वो दिन फिर से हमारे लौट आए। और पुराने समय की तस्वीरों में एक अलग ही अपनापन होता है, तस्वीरें कम खींचा करते थे उस वक्त, इसलिए हर फोटो खास होती है, और परिवार के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर फोटो खिंचवाते थे। ये वो जमाना था, है ना, वो इंतज़ार, वो उत्साह, और फिर एल्बम में तस्वीरें सजाने की खुशी। आज के हजारों मोबाइल फोटो से एक अलग ही अनुभव देती है। हमारे मोबाइल में भले ही ढेर सारे फोटो हो, हजारों में होते हैं,
0: जी
1: लेकिन जब हम एल्बम उठा करके बैठते हैं तो घर के भी जो सारे सदस्य होते हैं ना, कि वो कहते हैं अरे क्या देख रहे हो, हमें भी देखना है। और फिर उस पर वापस एक डिस्कशन, एक विचार विमर्श शुरू हो
0: और फिर
1: जाता है, और
0: उस
1: फिर वो बातें
0: वक्त,
1: पता नहीं कहाँ तक चली
0: और
1: जाती
0: उस वक्त अगर कोई घटना घटी होती तो उसे भी हम याद करके बहुत हंसते
1: है।
0: हैं, है
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
0: ना, कि ऐसे हुआ था, ये हुआ था, है ना। एक हमारे सखी ने लिखा है, सच कहा, पहले के फोटो देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। सच में पहले के फोटो और उनसे जुड़ी बातें जब याद आती है तो पल मानो उस समय में हमें वापस पहुंचा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमने पुराने फोटोज निकाले जिसमें हमारी बेटी बिल्कुल उनकी बेटी की तरह लगी। हमने तुरंत उसकी फोटो खींची और उसके साथ ही उसकी बेटी की भी अभी की फोटो डालकर बेटी को भेजा, तो इतनी खुश हो गई, सही में हम कितने सेम लग रहे थे, यानी कितनी
1: बिल्कुल।
0: सुंदर यादें, है ना।
1: और एक संदेश और कहता है सोनाली कि एल्बम हमें एहसास कराते हैं कि समय कभी ठहरता नहीं। जिन चेहरों पर कभी युवावस्था की चमक थी, आज उन पर अनुभव की रेखाएं हैं। कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन तस्वीरों में उनकी मुस्कान आज भी उतनी ही ताज़ा है। एल्बम के हर पन्ने से रिश्तों की गर्माहट, घर की खुशबू और बीते दिनों की मीठी जो एहसास है वो महसूस होते हैं। सच तो यह है कि पुराने फोटो के एल्बम केवल कागज़ पर छपी तस्वीरें नहीं, बल्कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है।
0: एक साथी लिख कहते हैं कि सच में पुराने फोटोज देखकर तो दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे भी जिस दिन मन नहीं लगता उस दिन मैं भी अपने अपने बेटे के पुराने एल्बम निकाल कर देखती हूँ। क्योंकि मुझे शुरू से फोटोग्राफी का शौक रहा है तो मेरे पास अपनी या अपने बेटे के हर क्षण की फोटो है। जब मोबाइल नहीं था तब मेरे पर्स में हमेशा एक कैमरा रहता था, जहाँ जो अच्छा लगता था मैं फोटो ले लेती थी। यहाँ तक कि स्कूल में भी, वहाँ भी बच्चों की फोटो लेती थी, जिसकी वजह से मैं अपने स्कूल में सेल्फी मैम के नाम से जानी जाती हूँ। कितनी सुंदर बात।
1: बहुत सुंदर। और एक संदेश कहता है कि एल्बम के देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है। उस समय में पीछे जाने जैसा होता है, पुरानी यादें, चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। खुशी केवल तस्वीरों को देखने तक सीमित नहीं, बल्कि यह बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हे, बचपन, शादी, छुट्टियां, त्यौहार, सब यादें ताज़ा हो जाती हैं।
0: एक साथी कहते हैं कि भाई मेरी तो 10th बोर्ड जो है ना फॉर्म में लगाने वाली पासपोर्ट साइज फोटो है, उसे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो तब बिल्कुल लड़की जैसा दिखता था। अभी मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकता, वरना मैं आपको वो फोटो जरूर दिखाता।
1: जी, कभी मौका लगेगा तो जरूर हम भी देखना चाहेंगे। और अब क्या करना चाहेंगे,
0: अब गाना सुनेंगे।
1: चलिए।

0: रिमझिम रिमझिम सावन की बरसात हो रही है, यानी सावन तो नहीं आया अभी, पर बरसात ऐसी है कि मानो सावन आ गया है
1: एहसास तो वही करा रहा
0: और
1: है
0: वो जो है ना
1: ना।
0: सुखद अनुभूति है ना, वो एल्बम देखने जैसी ही है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि पुराने एल्बम के पन्ने पलटते ही यादों का कारवा चल पड़ता है, बचपन, परिवार, दोस्त और जीवन के अनमोल पल फिर से आंखों के सामने ताज़ा हो जाते हैं। और हर तस्वीर की एक कहानी होती है, जो अब दुनिया में नहीं है उनकी यादें संजोए रहते हैं। शादी ब्याह की शरारतें, नाच गाना चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। सचमुच पुराने एल्बम को देखना बीते हुए खूबसूरत पलों को एक बार जीने जैसा सुखद अनुभव मिलता है। और अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।
1: चलिए।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली, और हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं। तो एक हमारी सखी ने लिखा है कि एल्बम देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है, उस समय में पीछे जाने जैसा है जहाँ पुरानी यादें, चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। ये खुशी केवल तस्वीरों तक देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हों, बचपन, शादी, छुट्टियों और त्योहारों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसू भी लाते हैं। मैं तो बेटे के बचपन का फोटो पोते को दिखाती हूँ, और कभी कभी दोनों का फोटो लगाकर मोबाइल स्टेटस सोशल मीडिया पर लगाती हूँ। पोता फोटो को देखकर खूब खुश हो जाता है और पूछता है, दादी पापा भी मेरी तरह छोटा था। कितना मासूमियत भरा सवाल
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से जब हम अपने यादों तक वापस उस गलियारों में जब हम गुजरते हैं तो मन प्रसन्न होता है, कहीं सकारात्मक एक धारा भी प्रवाह हो जाती है हमारे अंदर, और एक खुशी की जो लहर अंदर दौड़ पड़ती है, तो सब तरफ हर तरफ हमें अच्छा अच्छा और खुश खुश जैसा माहौल लगने लगता है। और एक माहौल और चल रहा है आजकल कि भाई शादी ब्याह जो है इतना जो नाजुक मसला होने लग गया है, इस पर सहमति तो परिवार की होती ही थी, पहले तो हुआ करती थी, अब बच्चों का सहमत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।
0: यानी पहले बताया जाता था कि सब अच्छा है, और बच्चे जो होते थे उन्हें भी पूरा विश्वास होता था कि हमारे माता पिता कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, वो हमारा अच्छा ही चाहेंगे, और सब कुछ सोच के घर परिवार देख के पूरा उनके दादा नाना नानी सारे लोग बैठ के पूरा इन्हें पूरा परिवार ही कहते हैं कि कुनबा ही इकट्ठा हो जाया करता था, और फिर इस तरह से शादियां तय होती थी। पर अब समाज जो है बदल रहा है, अब बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी भी इच्छाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किस तरह से, यानी हर किसी की अपेक्षा अलग होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा होने वाला पति ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझे, मेरी भावनाओं की कद्र करे, मैंने जो पढ़ाई की है उसे मुझे आगे बढ़ने का मौका दे, उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे। वहीं पर लड़कों को भी अपेक्षाएं होती है कि जो लड़कियां हैं बराबरी से काम में हाथ बटाए और फिर खूब आगे बढ़ने में एक दूसरे का ये मिले,
1: मदद मिले,
0: सहयोग मिले,
1: कि हाँ एक की वजह से दूसरा आगे बढ़े और जो दूसरा है उसकी वजह से, मतलब पति पत्नी दोनों ही ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे का सहयोग भी काम में भी करें, घर में भी करें,
0: घर में भी हाथ बटाएं।
1: हाँ,
0: पुराने जमाने में ऐसा होता था कि लड़के घर में काम नहीं करते थे,
1: लेकिन अब ये है कि आप अपने जो कार्य क्षेत्र है, ऑफिस है या व्यापार है, जब घर वापस आते हैं तो दोनों मिलकर अब घर रसोई सब कुछ देखते हैं, अपना काम देखते हैं, यहाँ तक कि काम बांट भी दिया जाता है, और इसे कोई गलत या बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर वो शहर में नहीं है, अपने माता पिता से दूर हैं, तो किस तरह से अपने सब चीज़ों का संयोजन बनाएंगे, बैलेंस कैसे बनाएंगे अपने लाइफ में, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसी तरह से देखो बहुत सारे संदेश इस बात को लेकर आए हैं और बहुत अलग अलग विचार सामने आए हैं, तो ये पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं। पुराने ज़माने में माता पिता जो तय करें उनके साथ शादी हो जाया करती थी, उन दिनों लड़का लड़की एक दूसरे को देखे बिना छोटी उम्र में ही उनकी सगाई भी हो जाया करती थी। आज की तरह सगाई के बाद एक दूसरे से मुलाकातें भी नहीं हो सकती थी, उस वक्त साथ घूमने का तो सवाल ही नहीं होता था। आज लेकिन माहौल बहुत बदल गया है, लड़के के लिए 21 साल, लड़की के लिए 18 साल वैधानिक आयु होनी अनिवार्य हो चुकी है। माता पिता की मर्जी के बिना लड़का लड़की एक दूसरे की पसंद के अनुसार शादी कर सकते हैं। अब माता पिता का तो रोल सिर्फ आशीर्वाद देना ही रह गया है।
0: एक सखी ने लिखा है, विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों और दो जीवनों का मिलन होता है। माता पिता का अनुभव भी अमूल्य होता है, लेकिन बच्चों की इच्छा, उनकी भावनाएं और उनकी सहमति भी महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनके लिए योग्य जीवन साथी खोजने में सहायता करें, लेकिन अंतिम निर्णय बच्चों की इच्छा का सम्मान करते हुए लें। समय बदल रहा है, बच्चों की सहमति से होने वाला विवाह न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि परिवार में प्रेम, सम्मान और खुशियों को भी स्थायी बनाता है।
1: बिल्कुल। वहीं एक और संदेश ये कहता है कि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसलिए इसमें बच्चों की सहमति और इच्छा का सम्मान आवश्यक है। माता पिता का अनुभव और मार्गदर्शन अमूल्य होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को जीवन भर उस रिश्ते को निभाना है उसकी राय सबसे अधिक मायने रखती है। आपसी समझ, विश्वास, सहमति पर आधारित विवाह अधिक सुखद और सफल होता है। जब परिवार और बच्चों के विचारों का सम्मान करते हुए निर्णय लिया जाता है तो रिश्तों में अपनापन, सम्मान और विश्वास भी बढ़ता है।
0: एक सखी ने लिखा है कि बच्चों की सहमति से शादी, आजकल शादी का रिवाज बदल गया है, बच्चे अपने ही पसंद की शादी करना पसंद करते हैं, माता पिता को बस घर परिवार जिसको पसंद किया है उसको देखना होता है, बस माता पिता की मोहर लग जाती है, अगर माता पिता खुद से बच्चों के लिए जीवन साथी का चयन करते हैं तब भी यही स्थिति होती है, जब तक बच्चे आपस में एक दूसरे को समझ ना ले तब तक बात आगे नहीं बढ़ती, और जब तक बच्चों की सहमति नहीं होती तब तक माता पिता को रुकना होता है। पहले के समय माता पिता खुद ही पसंद करते थे तब बच्चों की सहमति की जरूरत नहीं होती थी, पर आजकल इन बातों का ध्यान रखा जाता है।
1: एक संदेश कहता है कि आजकल जो माहौल हो रहा है और युवा पीढ़ी हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद शादी ब्याह के पवित्र रिश्ते में कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए ज़रूरी है कि शादी के लायक बच्चों की सहमति लेना बहुत ज़रूरी है, और सोने पे सुहागा वाली शादी का निर्णय होता है जब घर के बड़ों के माता पिता के तजुर्बों का भी सम्मान होता है, यानी कि सबकी सहमति सर्वश्रेष्ठ होती है।
0: और आप क्या करेंगे?
1: अब हमारी सहमति तो ये है कि आप गीत सुनाएंगे तो हम बिल्कुल खुश भी हो जाएंगे।
0: चलिए सुनते हैं गीत।

0: बात चल रही है कि शादी हो सहमति से, यानी घर परिवार की तो सहमति हो ही, आजकल बच्चों का सहमत होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमेशा से ही सबका सहमत होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब जबकि एकल परिवार होने लगे हैं और बच्चे कई बार शादी के बाद तुरंत ही दूसरे शहर जहाँ पे कि वो काम कर रहे हैं वहां चले जाते हैं, ऐसे में अब उनके पास वो शादी ब्याह वाला अनुभव तो होता नहीं है, कैसे जीवन जिया जाना चाहिए वो अनुभव तो होता नहीं है। पहले घर में बड़े साथ में हुआ करते थे, तो कहीं पे पास में बातों में कहीं थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो संभाल लिया करते थे, अब वो दोनों अकेले रहते हैं, ऐसे में अगर कोई एक गर्म मिजाज हो और एक कोई ठंडा हो तो बात कभी बन जाती है लेकिन कभी कभी बिगड़ भी जाती है।
1: इसलिए दोनों को शादी से पहले थोड़ी बातचीत करके एक दूसरे के स्वभाव को जान ले कि किस तरह से इन्हें कैसे पसंद है, उन्हें कैसे पसंद है, किस तरह से इन्हें जीवन साथी की जो अपेक्षाएं हैं वे फोन पर बात करके उन्हें पता चल जाता है कि लड़की क्या चाहती है कि कैसा हो उसका पति और लड़का भी क्या चाहता है कि कैसा हो। तो ये अगर बातें अगर थोड़ी सी सुलझ जाए ना तो जिंदगी बहुत अच्छी सुंदर हो सकती है। एक हमारी सखी ने लिखा है कि आज के आधुनिक जमाने में युवाओं की आपसी सहमति को शादी का सबसे प्रमुख और अनिवार्य आधार माना जाता है। कानून और सामाजिक बदलाव के अनुसार जब दो वयस्क आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनकी सहमति सर्वोपरि होती है। भारतीय कानून के अनुसार बालिग हो जाने पर युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। यदि दोनों वयस्क अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो उनकी सहमति ही कानूनी रूप से मान्य है। हमारे समाज में विवाह दो व्यक्तियों के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन माना जाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि बच्चों को शादी का फैसला अपनी सहमति से ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि माता पिता के अनुभव और आशीर्वाद से रिश्ता अधिक मजबूत और सुरक्षित बनता है। माता पिता उसे परिवार से भी देख पा रख कर इस तरह शादी का सहमति दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, पर दबाव नहीं बच्चों पर। असहमति वाले दबाव वाले शादियों का नतीजा अच्छा नहीं दिख रहा। माता पिता अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं पर कभी कभी अपने इंसानी फितरत के चलते अपनी ईगो के चलते कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं और बच्चों पर डालते हैं, जिसका परिणाम किसी एक जो है नहीं दो परिवारों कई परिवारों को भुगतना पड़ सकता है। यानी इस मामले में बहुत सोच समझ कर हमें निर्णय लेना चाहिए
0: जी। अच्छा एक और संदेश आया है सोनाली, ये कहती है कि मेरी एक सखी है उनकी बेटी की अभी हाल ही में शादी हुई है और उस शादी में हम सब ने बहुत आनंद लिया था, सब ने बहुत भरपूर आशीर्वाद युगल जोड़े को दिया था, लेकिन अब ये शादी में कहीं कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं क्योंकि बेटी जो है वो डॉक्टर हैं और अब जहाँ वो ससुराल में गई हैं तो वहाँ ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो क्लिनिक छोड़कर घर का काम करें। घर शादी और इस रिश्ते को निभाने के लिए वो बच्ची वैसा कर भी रही है, लेकिन फिर भी समझदारी ज़्यादा बड़ों में होनी चाहिए ऐसा हमारी सखी को लगता है। वो कहती है कि बच्चों पर भरोसा ही इस रिश्ते को आगे ले जाया जा सकता था। अब जब कारण सुन रहे हैं कि ससुराल वाले खुशी नहीं है, वो डॉक्टर है, घर में काम भी कर रही है, सब कुछ अपना जो करियर है उसको साइड में रखे हुए है, लेकिन मन में उन लोगों के फिर भी असंतोष रहता है, तो ऐसे में उन्हें ये लग रहा है कि थोड़ा सा हमें जान पड़ताल थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा और समझ लेना चाहिए था, उसके बाद ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए था।
1: ये तो बात ऐसी होती है ना दीपा जी कि ये सब बातें कहने की है पर ऐसा होता है कि अभी हमने पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने में हमने इतने वर्ष गवाए हैं, इतने सारे वर्ष हमने अपनी ज़िंदगी की उस पढ़ाई के लिए समर्पित किए हैं और उस पढ़ाई से ही हमारा घर चलने वाला है ना, पैसा मिलने वाला है, तो फिर क्यों ना करें नौकरी। नौकरी करना बहुत अच्छी बात है और कभी कभी ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद यानी 40-45 के बाद में अगर घर के मुखिया इस दुनिया को छोड़ के चले गए यानी जीवन साथी नहीं रहे, तो उस वक्त जो महिला आती है ना उसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है कि मेरे पास पढ़ाई है पर अनुभव नहीं है, क्योंकि बिना अनुभव के उस उम्र में कोई नौकरी नहीं देता है।
0: बिल्कुल, और आज के ज़माने में जहाँ इतनी तेज भागती दौड़ती जिंदगी चल रही है और हर जगह कंपटीशन इतना है, दोनों का काम करना बहुत जरूरी आवश्यक हो गया है। आपकी छोटी मोटी खुशियां, आपकी छोटी मोटी इच्छाएं भी, हम महिलाएं जो होती हैं, सारी महिलाओं के बारे में बात हो रही है कि हम आत्मनिर्भर होते हैं अपने पढ़ाई अपने शिक्षा की वजह से, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो चाहे वो एक लड़की ले सकती
1: अपनी इच्छा पूरी कर सकती,
0: अपनी इच्छा पूरी कर सकती, न सिर्फ अपनी वो परिवार की भी इच्छा पूरी कर लेती
1: है
0: और वो खुशी वो आनंद सिर्फ उस बच्ची को या उस महिला को नहीं होता,
1: पूरे
0: उस
1: परिवार
0: को होता है।
1: तो इसमें क्या होता है, दोनों खुश रहते हैं कि वो बाहर गई काम के लिए, तो पति ने भी थोड़ा सा घर के काम में हाथ बटाया, उन्होंने भी बाहर से गए अच्छे से पैसे कमा कर भी आ गए, पूरा घर खुशहाल रहेगा। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी सी एक दूसरे की तरफ समझेंगे हम, एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो ये रिश्ता और भी खूबसूरत होगा।
0: बिल्कुल।
1: और अब गाना सुन ले,
0: तो सफर और खूबसूरत हो जाएगा।
1: सुनते हैं।

0: आसमान तो झूम रहा है अभी, है ना?
1: आसमान भी झूम रहा है और गीत सुन के मन भी प्रसन्न हो रहा है।
0: मन प्रसन्न हो रहा है पर नींद तो नहीं आ रही दीपा।
1: अभी कैसे आ सकती है? अभी तो हमारी सखियां साथ में हैं भाई।
0: और पर नींद ऐसी है ना कि जब नहीं आना चाहिए तब आती है और जब आना चाहिए तब नहीं आती। बहुत बार ऐसा होता
1: तो है,
0: है ना? हाँ। पर नींद का ना सीधा सीधा संबंध हमारी मानसिक अवस्था पर भी होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात के समय सोशल मीडिया पे किसी से बहस हो गई या किसी से फोन पर बहस हो गई तो हमारी पूरी रात खराब हो जाती है।
1: उसके
0: तो
1: बारे में
0: सोचते रहते हैं कि अरे ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, मैंने तो ये कभी नहीं चाहता हूँ, फिर ये क्यों बोल दिया, इस तरह से होता है बहुत बार।
1: इसीलिए सोनाली, एक मानसिक स्वास्थ्य और हमारे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी और गहरी नींद बहुत आवश्यक है। और फिर अगर आप रात को चैन की नींद ना सोएंगे तो अगला दिन आपके जो है आपके काम में उसका असर दिखेगा, आप जो भोजन बना रही हैं उसमें भी असर दिखेगा, या फिर आप चिड़चिड़े होंगे या आप बिना किसी कारण के घर में नाराजगी आपकी दिखाई देगी।
0: और ऐसा है ना, जो चेहरा होता है ना वो हमारा हमारे स्वास्थ्य का दर्पण होता है कि हमारी नींद नहीं हुई तो हम सामने वाला बराबर पहचान लेगा कि आपकी आंखों में सूजन दिखाई दे रही है, आप ठीक से नींद नहीं ली है, आप हमेशा की तरह फ्रेश नहीं दिख रही है, आप थोड़ी चिड़चिड़ी नजर आ रही है, तो शायद आपकी नींद नहीं हुई है। और पूरा गुस्सा फिर वो बच्चों पर निकल सकता है, पतिदेव पर निकल सकता है, पतिदेव का गुस्सा पत्नियों पर निकल सकता है।
1: ऐसा अक्सर हो ही जाता
0: है ना,
1: जब बहुत काम में प्रेशर में होते हैं हम, काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है या कुछ ऐसा घर में कोई त्योहार या शादी ब्याह का माहौल भी आता है ना, बहुत सारे काम होते हैं घर में और हम बिना छोटी सी बात पे ही, बात छोटी सी होती है और एकदम से हम नाराज हो जाते हैं या बोल पड़ते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि रात को, रोज रात को देर तक काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, इस तरह के कभी 2-3 दिन तक भी अगर इस तरह की रूटीन हो जाती है तो देखिए आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव दिखने लग जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि अच्छी नींद किसी दवा से नहीं बल्कि अच्छी दिनचर्या और शांत मन से आती है। ध्यान साधना, नियमित समय पर सोना, संतुलित भोजन, हल्का व्यायाम और तनाव कम रखने की आदतें नींद को गहरी और सुकून भरी बताती है। वहीं बहुत सारे साथियों ने कहा है कि स्क्रीन जो है, ये हमारा मोबाइल फोन है, इसको सोने से 1-2 घंटे पहले दूर रख दीजिए।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से जो निकलने वाली ब्लू लाइट है वो हमारे दिमाग में मेलाटोनिन जो वो हार्मोन जो कि नींद लाने वाला होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है, तो इसका स्तर कम हो जाता है और उसी की वजह से नींद आने में दिक्कत होने लगती है और हमारा दिमाग एकदम अलर्ट रहता है, एकदम सतर्क हो जाता है। तब तक वो जो सोने की अवस्था आनी चाहिए वो पूरी अच्छे से आ नहीं पाती।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि नींद पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी नींद से जागकर सुबह मजाक में सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से ये गाकर सुनाता हूँ, सारी सारी रात तेरी याद सताए, नींद ना आए मुझे चैन ना आए। और धर्म पत्नी तुरंत कहती है, अजी छोड़िए, आप तो घोड़े बेचकर सोए थे, कोई उठाकर ले जाता, आपको मालूम नहीं पड़ता। दोनों इस बात पर हंस लेते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि दोनों इस बात पर हंसते हैं।

0: क्योंकि नहीं तो क्या होता ना, एक उम्र के बाद में लोग हंसना मुस्कुराना खिलखिलाना ही भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल। और अगर आपकी ये हंसी बनी रहे और नींद अच्छे से आए, ये भी जरूरी है कि उसके लिए आप अपने खान पान की आदतों का भी ध्यान रखें, जैसे कि कैफीन से बचना बहुत जरूरी है दोपहर के बाद या शाम को, देर शाम को। कभी घर हम देर से आते हैं तो कहते हैं ना थोड़ी सी पहले चाय पी लेते हैं, वो चाय तो आप पी सकते हैं, कॉफी चाय जो भी आपको पसंद है वो पी सकते हैं, लेकिन उसका असर शरीर में कई घंटों तक रहता है। और बहुत जरूरी है कि हम हल्का डिनर खाएं रात के समय। रात का खाना बहुत भारी नहीं होना चाहिए, बहुत मसालेदार नहीं होना चाहिए, और उससे ज्यादा जरूरी सोने और खाने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए।
0: एक साथ ही लिखा है, अच्छी नींद के लिए मेडिटेशन करो, रात को जल्दी और हल्का खाना खाओ और मोबाइल दूर रखो, कमरे में अंधेरा हो, शांति हो, ठंडक हो, बेड आरामदायक हो तो नींद बढ़िया आती है। और जब गर्मियों का मौसम है ना, जैसे बहुत चिलचिलाती गर्मी थी तब है ना, एक नहा ले सोने से पहले, नहा के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, और जब हम जिस चादर पे सोते हैं बिस्तर में, वो चादर एकदम सूती नरम मुलायम चादर हो, ऐसे डार्क कलर के पर्दे हो तो नींद जल्दी से आ जाती है।
1: और आपने जो बात करी ना कि चादर नरम मुलायम हो, इसी तरह से आपका बिस्तर भी जो गादी होती है वो और तकिया आरामदायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कहीं पे अगर रुई की है तो वो कहीं कहीं उसकी गठाने पड़ जाती हैं, उस तरह की नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल इस तरह हो कि वो शरीर को पूरी तरह से
0: आराम
1: सपोर्ट दे और आराम दे।
0: और अब गाना सुन ले।
1: चलिए

0: हमारी एक सखी ये कहती हैं कि एक और ज़रूरी बात है कि सोने का एक समय बना लेना चाहिए। तो मैं भी समय पर अपने सारे काम निपटा लेती हूँ और बिस्तर पर आ जाती हूँ, उसके बाद कोई टीवी नहीं, कोई फ़ोन नहीं, शांत होकर के आंखें बंद कर लेती हूँ। वो ये सलाह दे रही हैं कि आप भी इस नियम को 21 दिन करके देखिए और फिर देखिए कितनी अच्छी बढ़िया नींद आपको भी आएगी।
1: तो श्रोताओं के आज इतने सारे हमने सुंदर सुंदर कमेंट्स पढ़े, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद। आज सखियों के साथ, श्रोताओं के साथ बहुत आनंद आया और अब इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो दोस्तों, मौसम ले रहा है अंगड़ाइयां, पूरी हो रही है बरसात में भीगने की ख्वाहिश। विविध भारती के चाहने वालों की तमन्ना भी पूरी होगी, क्योंकि हम लेकर के आ गए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। मैं हूं जयंत पात्रिकर और ये है आज का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ सर, गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से।
0: बोलिए पवन कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे सर, आप लोगों के विविध भारती कार्यक्रम के नियमित श्रोता हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगता है सर आप लोगों का जो कार्यक्रम है, आप लोगों का सुमधुर आवाज है, और इसी आवाज से हम दिल लगाए रहते हैं सर।
0: तो पूरा दिन भर आप सुनते हैं विविध भारती?
1: बिल्कुल सर, क्या समय समय में सुनता हूँ सर, मोबाइल के द्वारा काम में भी जाता हूँ, मिस्त्री लाइन के काम करता हूँ मैं।
0: मिस्त्री लाइन के मतलब?
1: तो मकान मिस्त्री का सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी सर, मकान मिस्त्री का ठेकेदारी का काम करता हूँ, और रेडियो तो सर कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ सर मैं।
0: जो अपना काम करते हुए आप मोबाइल ऐप पे जो है विविध भारती सुनते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए पवन कुमार जी क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: आज एक बहुत ही सुंदर आपके केंद्र से एक गीत सुनना चाहूंगा सर, मोहम्मद रफी जी की आवाज में, भरोसा फिल्म का गीत सर, ये झुकी झुकी नैना ये लट बल खाती तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा वाला गीत।
0: ये किसके लिए गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: इसमें सर मेरा खास एक परम मित्र परम दोस्त है पन्नालाल सेन जी, वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ सर अपना फरमाइश अपने भाई पन्नालाल सेन तक।
0: कहाँ रहते हैं पन्नालाल जी?
1: बाग बहरा भदरसी रहता है सर, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, अपने गंडई से कम 200 किलोमीटर आगे है सर उसका घर, और हमारा परम मित्र है सर वो।
0: अच्छा, इनका भी ये गाना पसंदीदा है?
1: बिल्कुल सर, उसी के अनुरूप तो मैं फरमाइश कर रहा हूँ सर आज।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए पवन कुमार जी। ये रहा आपकी पसंद का भरोसा फिल्म का गीत।
2: ये झुके झुके नैना ये लट बल खाती तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना होते।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ मैं राजस्थान जोधपुर से महबूब खान बोल रहा हूँ।
0: बोलिए महबूब खान साहब, कैसे हैं?
1: आज आपकी दुआ है कि सर बैंक स्पॉन्सरशिप से बोल रहे हो आप?
0: जी जी जी,
1: आपकी आवाज़ सुनता हूँ आपका, तो बहुत पुराना सोचा हूँ मैं, तो 50 साल से रेडियो स्टेशन सुन रहा हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कौन कौन से प्रोग्राम सुनते रहे हैं पिछले 50 सालों में?
1: हाँ मैं सुनता हूँ ज्यादा, और आपकी फरमाइश, आलो फरमाइश
0: जी जी,
1: और काफी प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: और आपके पसंद के गाने कौन से होते हैं? पुराने गाने ज्यादा पसंद करते हैं आप?
1: पुराने गाने शौकीन हूँ सर, मैं बहुत पुराने गाने के शौकीन हूँ सर। मैं मेरे दोस्तों के नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ बिल्कुल,
1: ताज मोहम्मद जी, बरकत खां और अकबर खां, और दिनेश भाई, कृष्ण राम जी, दारू भाई मेघवाल, हमारे दोस्त रेडियो श्रोता है, नियमित श्रोता है ये।
0: जी जी जी जी, तो महबूब भाई इन सारे दोस्तों को भी वही गाना पसंद है जो आप आज बताने वाले हैं?
1: हाँ जी हाँ जी, हमारे बहुत दिल के करीब है ये गाना।
0: कौन सा गाना?
1: ये तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो,
0: खानदान फिल्म लगे। अच्छा जी
1: जी सर, नूतन सुनिधि फरमाया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए महबूब खान साहब। ये रहा आपके और आपके दोस्तों की पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते बंधुवर।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गुलम मंडी छत्रपति संभाजीनगर से जगन्नाथ बसे बंधु बोल रहा हूँ साहेब जी।
0: बोलिए बंधु साहब, कैसे हैं?
1: बस पात्रीकर जी, बस देखो हम यहाँ है और आप मुंबई के स्थित जगह पर है।
0: जी
1: हम गुलम मंडी से बात कर रहे हैं, आप मुंबई से बात कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद आपके से वार्तालाप हो रहा है।
0: बस ये जी एक बात बताइए, आपके संभाजी नगर में अभी मौसम कैसा है? बारिश वारिश हो रही कि नहीं?
1: बहुत सुहाना है और वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है।
0: क्या बात है।
1: कुछ गर्मी से राहत महसूस हो रही है। मौसम ठंडा ठंडा है, हरियाला सावन छाया है, झाड़ तो ऐसे हल रहे कि मानो कि एसी की और पंखे की आवश्यकता ही नहीं है।
0: जी बिल्कुल, तो मुझे लगता है आज का आपका जो फरमाइशी गाना होगा वो भी ऐसा ही होगा
1: अरे
0: जो
1: साहब, वो तो
0: मौसम की
1: गाना
0: बात
1: ऐसा
0: करे।
1: है, मैं बता रहा हूँ मौसम के हिसाब से है। ऐसा गीत मैं सुनना चाह रहा हूँ, 1943 में एक फिल्म बनी थी तानसेन, इसमें स्वयं कुंदनलाल सहगल साहब और
0: हाँ
1: खुर्शीद ये कलाकार भी थे और गायक भी।
0: सहगल
1: अब तो
0: साहब,
1: बहुत कठिन है ऐसा कार्यक्रम होना, तो साहब फिल्म इतनी चली थी है और इसके अंदर के गीत है खुर्शीद जी ने गाया है और केएल सहगल साहब ने गाया है और दृश्य इतना सुंदर है बंधु जी, मैं क्या बताऊं। ये फिल्म जितने बार भी देखे होंगे आपने या ना देखे होंगे तो देखना जरूर।
0: जी
1: क्या सुंदर अभिनय है कुंदन लाल सहगल साहब का और खुर्शीद का, स्वयं अभिनेत्री
0: जरूर
1: जिनके रोल
0: जरूर।
1: है, घटा घन घोर घोर मोर मचाए शोर,
0: मोरे
1: मोरे
0: सज्जन
1: सजन
0: आ
1: आ
0: जा।
1: जाना। क्या गीत है, जितने बार सुनो ऐसा लगता आग बंद करो और बैठ जाओ तो सब नयन रम्य दृश्य हम बैठ के निसर्ग की सृष्टि में देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो ये गीत सुनना हम पसंद करेंगे साहेब जी। और इसके जो है संगीतकार खेमचंद प्रकाश और
0: जी
1: गीतकार दीनानाथ मधोक।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनवा रहे हैं तानसेन फिल्म से ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जयंत जी।
0: नमस्कार
1: जी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं?
1: बस मैं भी आपकी दुआ से ठीक हूँ और यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि विविध भारती की टीम जहाँ रहे खुश रहे सलामत रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: और हमारे लिए ऐसे ही प्रोग्राम सजा कर लाते रहिए जैसे आप सजा कर लाते हो।
0: जी जी जी जी आपका नाम तो बताइए।
1: जी, मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल।
0: और साहिल कैसे हैं?
1: बस बढ़िया हूँ सर। श्रीनगर का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, आजकल टूरिस्टों का भी रश लगा हुआ है और अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है।
0: जी जी जी और बताइए, विविध भारती से कब से है आपका जुड़ाव?
1: विविध भारती से जुड़ाव है 2005 से सर।
0: अच्छा जी, 21
1: जी
0: साल हो
1: सर।
0: गए।
1: जी बिल्कुल
0: तो उससे पहले क्या सुनते थे?
1: जी, जब से होश संभाला है सर विविध भारती सुना है तब से।
0: अच्छा। सबसे ज्यादा आप क्या सुनते हैं, सिर्फ फिल्म के गाने या इसके अलावा भी कुछ?
1: मैं सबसे ज्यादा प्रोग्राम सुनता हूँ जो 4 बजे आता है पिटारा,
0: ओके।
1: उसमें हर दिन एक नया प्रोग्राम होता है सर।
0: हाँ
1: कभी सेलुलॉइड के सितारे, कभी डॉक्टर होता है, कभी कभार आप किसी सेलिब्रिटीज को लाते हो तो उनकी जो जिंदगी में उन्होंने किया होता है तो उनके बारे में हमें पता चलता है सर।
0: जी। और फिर हफ्ते में एक दिन हेलो फरमाइश भी आता है जिसके लिए
1: जी
0: आपने
1: बिल्कुल
0: कॉल
1: सर,
0: किया है।
1: बिल्कुल
0: बताइए क्या सुनना
1: बिल्कुल
0: चाहते हैं?
1: बिल्कुल। और आपने एक प्रोग्राम फिर से चालू किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मन चाहे गीत।
0: तो आपने खत
1: जी
0: भेजे
1: सर।
0: कि नहीं पंचायत गीत के लिए?
1: जी सर, मैंने खत भेजा है सर।
0: चलिए बताइए, आज के लिए कौन सा गीत आपने
1: जी,
0: सेलेक्ट
1: फिल्म
0: किया?
1: का नाम है डोली, आशा जी की आवाज में। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर, मुझे दो दो चार नजर आए आए,
0: ओहो,
1: मेहताब दर मेहताब।
0: बढ़िया गाना है। आपको सुनवा रहे हैं डोली फिल्म का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: बोलिए राकेश जी।
1: मेरी बात में कॉल लग गया, मेरा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपके सभी प्रोग्राम को सुनता हूँ और आज जितने भी मेरी बात के प्रोग्राम आते हैं हेलो फरमाइश तो सुनते हैं और मन चाहे गीत भी आपने शुरू किया वो भी अच्छा लगता है। सभी प्रोग्राम जो है हम मेरी बात के सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा जान करके। और राकेश जी ये बताइए शिमला में क्या करते हैं आप?
1: शिमला में तो अभी हम तो घर पे रहते हैं और सेब की जो है बागवानी वो
0: अच्छा,
1: करते हैं
0: अच्छा।
1: और अभी हमारे जो सेब के जो बाग है छोटे छोटे हैं, छोटे तो क्या है अभी तो सैंपल आ गए हैं, छोटे छोटे फूल आना शुरू हो गए हैं सेब के और अब जो है जुलाई तक जो है हमारे सेब जो है पूरे भारत में तोड़ने के लिए आ जाएंगे।
0: अच्छा अच्छा साल में एक बार आते हैं पेड़ों
1: सेब
0: को
1: तो
0: फूल?
1: साल में एक बार आते हैं और कहना चाहता हूँ कि जो आप तक जो सेब मिलते हैं और स्टोरेज की वजह से जो है मिल जाते हैं तो तब जाके ये पूरे भारत में पहुंच जाते हैं, कई सेब जो होते हैं जो स्टोरेज की हो जाते हैं।
0: अच्छा, आपके बाग

0: के सेब जो है वो कहाँ कहाँ तक जाते हैं?
1: हमारे सेब जो है हमारे स्थानीय मंडी में भी जाते हैं, अगर स्थानीय मंडी में ज्यादा होते तो फिर विदेश भी भेज देते हैं, और बम्बई में भी इसकी जो है डिमांड ज्यादा रहती है, महाराष्ट्र और बम्बई में।
0: अच्छा अच्छा, तो हम जो अब सेब खा रहे हैं उसमें हो सकता है कोई एक सेब आपके बाग से भी आया हुआ होगा?
1: बिल्कुल, क्योंकि सेब तो पहचान कैसी होती है, क्योंकि सेब तो कश्मीर से भी आते हैं और हिमाचल से भी आते हैं, लेकिन ये है कि कश्मीर से लेट आते हैं, हमारे हिमाचल की जो सेब होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं।
0: जल्दी आ जाते हैं।
1: मैं कहना चाहता हूँ कि शिमला जो है एक पर्यटक केंद्र भी है, और हमारा कोटखाई क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं छोटे से एक गांव में रहता हूँ, मेरे गांव का नाम है गुंडा और तहसील कोटखाई, और बहुत अच्छा मतलब क्षेत्र है, मैं 400 लोग हमारे गांव में रहते हैं।
0: अच्छा जी, बताइए आज के प्रोग्राम के लिए आपने कौन सा गीत चुना है?
1: आज मुझे मोहब्बत मूवी का गाना सुना है, और आईना बता कैसे, ये गाना सुनना है।
0: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए, और आपको सुनवा रहे हैं मोहब्बत फिल्म का आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
1: जी सर, मैं सारी कराची से बात कर रही हूँ, बिजौरा से। सर,
0: बिजौरा, ये गांव कहाँ पर है आपका?
1: सागर के पास में पड़ता है, सागर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
0: और सागर मध्य प्रदेश में सारिका राजपूत क्या करती हैं?
1: सर अभी तो कुछ नहीं करती, बस हाउसवाइफ हूँ, बच्चों को संभालती हूँ।
0: बहुत बड़ा काम है ये भी, और इसके साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए आप रेडियो सुनती है ना?
1: जी सर, विविध भारती सुबह सुबह चालू होती है तो 11 बजे रात में बंद होती है।
0: अच्छा, और इसमें से सुबह से लेकर रात तक कौन सा प्रोग्राम आपको ज्यादा पसंद है?
1: सर मुझे छाया गीत ज्यादा अच्छा लगता है, और आज के मेहमान, पत्रकार सब सुनती हूँ मैं, हालू फरमाइश भी सुनती हूँ।
0: जी, चलो, बहुत अच्छा लगा जान के आप इतना पसंद से, इतने चाव से सुनती हैं विविध भारती। बताइए, आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: सर मुझे आज की तू का गाना सुनना है, मैं चाहूँ ना तुझे।
0: ये रहा आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो, फरमाइश।
1: क्या लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है? लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है, कैसे करूं शिकायत हर सांस को तेरी चाहत है।
0: ओ हो, क्या बात। नाम बताइए।
1: सर मैं उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत बात कर रहा हूँ।
0: अमरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बताइए, क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: मैं गीत सुनूंगा, फिल्म का नाम रहेगा साजन, और इसमें जो गीत मैंने चुना है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: अच्छा जी, ये गाना आपने क्यों चुना, कोई खास बात है?
1: जी बिल्कुल, खास बात है सर, ये गीत मुझे अच्छा लगता है और इसके वर्ड ऐसे हैं, अगर एक एक वर्ड को हम समझते हैं तो काफी अच्छा, दिल को सुकून देता चला जाता है।
0: चलिए तो फिर आपको सुनवाते हैं साजन फिल्म का गाना। अमरदीप जी।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार, मैं पप्पू
0: नमस्कार
1: ठाकुर
0: जी,
1: कटिहार थाना जिला गोपालगंज बिहार से बोल रहा हूँ। भैया
0: बोलिए पप्पू जी, कैसे हैं?
1: जी अपना बताइए।
0: हम तो बहुत अच्छे हैं, बस श्रोताओं के बारे में जानना चाहते हैं। अलग अलग जगह से आप लोग
1: जी
0: फोन करते हैं, तो आपके
1: जी जी
0: इलाके में मौसम कैसा है? बारिश पड़ रही है?
1: जी जी सर, आज कितने दिनों के बाद से आज बारिश हुई है सुबह में। और मैं शहरी इलाका नहीं है, गांव का इलाका है हमारा, एक छोटा सा जिला है।
0: जी, पप्पू जी वहाँ गांव में आप क्या काम करते हैं बताइए।
1: गांव में सर मैं तो अभी बाहर गांव में काम करता था, अभी घर पे आया, 1 साल हो गया हमको। मैं दुबई, कतर और कांगो, एक अफ्रीका जगह है ना, वहाँ पे
0: जी
1: मैं काम किया है,
0: जी जी
1: मैकेनिक का काम मैं करता हूँ सर।
0: अच्छा, तो फिर अब पिछले साल भर से
1: जी
0: आप घर में हैं, तो यहीं अपना
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: नया काम धंधा शुरू करने का इरादा है?
1: जी हमारा एक सैलून का शॉप है, हमारे पिताजी चलाते हैं, तो कभी काल हम चले जाते हैं वहाँ पे। मेरा एक सपना था सर कि मैं कभी वेद भारती में मेरा कॉल लग जाए, हेलो फरमाइश में, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ट्राई करता था।
0: क्या बात है, आज सपना पूरा हो गया आपका।
1: मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि 2005-06 से जब रेडियो पे मैं सुनता था, हमारे बड़े पापा के पास एक फिलिप्स का रेडियो हुआ करता था छोटा वाला, उसको हम शॉर्ट वेव पे उसको सुना करते थे। उस समय से मैं वेद भारती को बहुत चाहता हूँ सर, बहुत चाहता हूँ, अभी भी सुनता हूँ, अभी मोबाइल पे सुनता हूँ मैं।
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप डाउनलोड किया आपने,
1: जी, न्यूज एन आजर वाला
0: बहुत बढ़िया है।
1: कोई भी ऐसा फरमाइश नहीं गया हो जो मैं नहीं सुना हूँ, और ऐसा नहीं होता तो रिकॉर्डेड में मैं सुन लेता हूँ उसको। फिल्म
0: बताइए पप्पू जी, आज के लिए आपने कौन सा गाना चुना है?
1: का नाम है पत्थर के सनम, मनोज कुमार सर पे फरमाया गया है, वो गाना है पत्थर के सनम तुझे मैंने मोहब्बत का खुदा जाना, रफी साहब की आवाज में है।
0: चलिए, तो आपके जो कॉल लगने की खुशी हो रही है आपको, उसके और दुगना कर देते हैं।
1: बहुत
0: तो सुनिए अपनी
1: आई
0: पसंद का गाना
1: तुम्हारी
0: पत्थर के सनम फिल्म से।

0: हेलो फरमाइश।
1: कैसे हैं आप सर?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं और अपना नाम बताइए पहले, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं फहीम बोल रहा हूँ श्रीनगर कश्मीर से।
0: फहीम भाई बोलिए।
1: जी सर, आज आपसे पूरे 2 महीने के बाद बात हो रही है। हम
0: जी जी जी
1: इंतजार में रहते हैं कि कब हमारे 2 महीने कंप्लीट हो जाएं और हम आपसे बात करें और विविध भारती के चैनल VBS पे अपने पसंद के नगमे सुनें।
0: जी जी बाकी पूरे देश
1: जी
0: में
1: सर,
0: तो गर्मी का मौसम ख़त्म हो के अब बारिश शुरू होने वाली है, बहुत लेट
1: जी
0: हालांकि आई है, मगर श्रीनगर में कैसा है मौसम?
1: श्रीनगर में इन दिनों थोड़ी सी गर्मी है। यहाँ पे 40 दिनों का एक समय होता है, 30 जून से लेकर जो है फुल मंथ जुलाई तक रहता है। इन 40 दिनों को हम कश्मीरी में बहरात बोलते हैं।
0: अच्छा,
1: बहरात के समय यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है और वैसे ही यहाँ पे 21 दिसंबर से लेकर फुल मंथ जनवरी तक 40 दिनों का एक और समय होता है, उसको हम कश्मीरी में चिलाई कलान बोलते हैं।
0: अच्छा
1: गर्मियों के 40 दिन बहरात और सर्दियों के 40 दिन चिलाई कलान। ये 40 दिन 40 दिन जो है हमारे यहाँ पे बहुत स्पेशल होते हैं गर्मियों के हिसाब से और सर्दियों के हिसाब से। तो अभी हम ऐसे समय में चल रहे हैं जो पे अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं बहरात में चल रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों के बाद बच्चों की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में छुट्टी रहेंगी।
0: अच्छा तो ये बहरात में क्या कुछ खास कुछ रवायत होती है, कुछ त्योहार होते
1: बारात
0: हैं?
1: के समय में जी जी त्योहार भी होते हैं बहुत सारे। बारात के समय में यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, बच्चों को सब छुट्टियाँ मिलती है, तो हम कश्मीरी लोग भी जैसे आपके वहाँ पे आते हैं घूमने, हम भी यहाँ पे
0: जी
1: घूमने निकलते हैं बच्चों के साथ। तो बारात के समय हमें जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा ठंडी रहती है, मौसम ठंडा ही रहता है। तो अभी हम गर्मियों को इंजॉय कर रहे हैं बारात के समय फैमिली के साथ,
0: फिर
1: फ्रेंड्स
0: भी
1: के साथ।
0: आपकी नज़र से
1: हाँ
0: वो
1: जी
0: गर्मियां हैं, मगर फिर भी एवरेज टेम्परेचर तो वहाँ 20 से कम ही रहता होगा।
1: हाँ जी हाँ जी, नॉर्मली 25-30 तक हो जाता है और जिस दिन 30 होता है उसी शाम बारिश भी आती है। ये हमारे यहाँ पे स्पेशल एक बात है, जिस
0: ओ
1: दिन
0: अच्छा,
1: 30 होता है तो उसी शाम हल्की सी बारिश भी आती है, अगले
0: जी
1: दिन फिर से वही नॉर्मल 25-27 तक जाता है।
0: जी मुल्क के दूसरे इलाकों के लोग घूमने जाते हैं श्रीनगर, मगर श्रीनगर के रहने
1: हाँ जी
0: वाले
1: हाँ जी,
0: कहाँ जाते हैं घूमने, आप कहाँ आते हैं पूरे देश में?
1: हमारे यहाँ पे स्पेशली कुछ जगहें हैं कश्मीर में ही है, दूध पथरी नाम की जगह है, वहाँ पे हम जाते हैं, सोनमर्ग भी जाते हैं, पहलगाम भी जाते हैं,
0: नहीं
1: गुलमर्ग भी जाते हैं।
0: नहीं वो तो है आपके यहाँ, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जब घूमने निकलते हैं तो आपकी ख्वाहिश क्या होती है कि देश के किस इलाके में जाए, क्या देखें?
1: हम ज्यादातर पसंद करते हैं एक तो बेंगलोर जाना और दूसरा जो है ना हमारा थोड़ा मुंबई भी जाते हैं और केरला भी जाते हैं यहाँ के लोग और कोलकाता भी जाते हैं। देश के बहुत सारे, सबका टेस्ट अलग अलग है,
0: जी जी जी
1: बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं, जब आउट ऑफ स्टेट जाते हैं तो इन्हीं जगहों पे जाना पसंद करते हैं। गोवा भी जाते हैं यहाँ से काम
0: चलो,
1: के सिलसिले में भी और घूमने के सिलसिले में भी।
0: वाह वाह, बड़ा अच्छा लगा जान करके। और आपने टेस्ट
1: हाँ जी
0: सबका अलग होता है कहा, तो ऐसे ही म्यूज़िक का टेस्ट सबका अलग होता है ना, तो
1: हाँ
0: अगर
1: जी
0: फिल्म म्यूज़िक की बात की जाए, फिल्म संगीत की बात की जाए, तो आपका टेस्ट कैसा है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैं दोनों नगमे पसंद करता हूँ, पुराने भी सुनते हैं नए भी सुनते हैं, लेकिन अभी का जो ये हमारा अभी ट्रिप चल रहा है कि हम भी घूमने निकले हैं
0: जी,
1: तो मुझे एक वीर ज़ारा का नगमा बार बार याद आ रहा है, ये हम आ गए हैं कहाँ, लता मंगेशकर और उदित नारायण जी की आवाज़ में। ये बहुत ही प्यारा नगमा है, तो मैं यही हम अपने विविध भारती के चैनल पे सुनना चाहेंगे और साथ में जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं जो अभी घूमने निकले हैं वो कश्मीर के नज़ारे

0: हेलो, फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नामदेव।
0: मनोज नामदेव जी कैसे हैं?
1: बस सर बढ़िया है, जब आपका आशीर्वाद है भगवान कृपा से मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं और ऊपर वाले का भगवान का आशीर्वाद है, उसी की दुआ से सब कुछ चल रहा है ना।

0: हेलो, फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नामदेव।
0: मनोज नामदेव जी कैसे हैं?
1: बस सर बढ़िया हैं, जब आपका आशीर्वाद है भगवान कृपा से मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं और ऊपर वाले का भगवान का आशीर्वाद है, उसी की दुआ से सब कुछ चल रहा है ना।

0: दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है, उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारा फोन नंबर नोट करें। हमारा नंबर है 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240024662। फोन नंबर एक बार फिर नोट करें, 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240024662। चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया जयंत पात्रिकर के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामी, आग की त्रासदी है कि वो हमें झुलसा देती है। हाँ, आग का क्या है, पल दो पल में लगती है और बुझते बुझते एक जमाना बीत जाता है। हम ता उम्र किसी आग में जलते रहते हैं, नफरत की आग या फिर प्रेम की अगन। धुआं धुआं सा लग रहा है इन दिनों, धुआं धुआं सा लग रहा है इन दिनों, लगता है किसी का इश्क जल रहा है इन दिनों।

ये आग सिर्फ धुआं ही छोड़ती है। धुआं दर्द बयां करता है और राख कहानियां छोड़ जाती है।

हमारा प्यार जैसे जंगल की आग था, और कहते हैं अगर इश्क की आग दिल में लगी हो तो सुकून कभी मिलता नहीं है। अब आग को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। चूल्हे में लगी आग खाना पकाती है और पेट की आग को शांत करती है, लेकिन यही आग जब रिश्तों में लग जाए तो घर जलकर खाक हो जाते हैं। यानी आग का अपना एक गुण है, आग ठंड में राहत देती है और यही आग गर्मी में झुलसा देती है। ये सीने की आग है साहेब, यहां पानी का क्या काम, ये सीने की आग है साहेब, यहां पानी का क्या काम, किया हमने महज इश्क ही तो था कमबख्त, किस्मत ही निकली बेईमान।

इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आग, जी हाँ आग, कुछ नहीं बोलती। वो अपने को समेट कर चुपचाप माचिस की डिबिया में पड़ी होती है, पर कभी कभी ना राख उड़ती है ना उठता है धुआं। कुछ रिश्ते बस चुपचाप जला करते हैं। हालांकि खुद को अगर हमने परिश्रम की भट्टी में झोंक दिया तो हीरा बनकर बाहर निकलते हैं, यानी ये आग आपको जलाकर खाक भी कर सकती है और यही आग कांच को हीरा भी बना देती है।

0: खरीदार नहीं हो सकता।
1: ये आग की बात है, तूने ये बात सुनाई है, ये जिंदगी की वही सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी। कहते हैं आंच केवल आग में ही नहीं पाई जाती, कभी एकांत में स्वयं के भीतर के तापमान को जांच कर देखना। भीतर का मौसम भभक रहा होता है कई बार, और मन उस आंच में सिकता रहता है धीरे धीरे धीरे धीरे। इन दिनों मौसम जैसे धुआं धुआं सा है, हर तरफ एक आग और फुगा सा है।

आग को साधते हुए कई बार आग से खेल जाते हैं हम, और यही है वो आग, सना है जिसका ताप जीवन की खुशबू से, हाँ लक्षित नहीं होता है जीवन के ठंडे और धूसर राख भरे अवसाद के नीचे। हमारे भीतर भी एक आग बची होती है और इसी आग में प्यार और नफरत सिकते रहते हैं। इसी आग में जलते हैं सपने, ख्वाबों का जंगल भी इन्हीं लपटों से झुलस जाता है, और जंगल में फैली ये आग जल्दी बुझती भी तो नहीं।

0: क्या है।
1: और अब छाया गीत समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी को दे इजाजत। नमस्कार।
2: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
4: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
5: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी का प्रोग्राम चार दिल्ली से आए।
4: संगीतकार रवि,
5: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना के, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
6: आप खाए थाली में, हमने कूदे प्याली में।
4: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए तराने नए पुराने।

0: आइए सुने तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तराने नए पुराने।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपकी हम सफर है। विविध भारती पर हर शाम 4 बजे सजता है पिटारा। सोमवार को सेहतनामा, मंगलवार को सेल्यूलॉइड के सितारे, और गुरुवार को होता है हेलो फरमाइश। बुधवार को आज के मेहमान, शुक्रवार को गीतों भरी कहानी, शनिवार बॉम्बे टॉकीज।
1: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: और रविवार
2: उजाले उनकी यादों की।
0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपकी हम सफर है। सुनते रहिए विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने ये स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी राम जी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित

0: ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे।
1: और कहते क्या थे, करते थे, और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा।
2: अब सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने विविध भारती से।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

कोई बात है एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात

0: चलती का नाम गाड़ी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में आपने सुना। अमर सुल्तानपुरी के बोल थे और संगीत था सचिन देव वर्मन का। इसी के साथ आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम खत्म होता है।
1: तराने नए पुराने।

0: मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बीबीजी रामजी योजना पर अगले 5 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जयपुर में 2 दिन के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का समापन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एआई को सुशासन की अनिवार्य जरूरत बताया। राज्य में मॉनसून के प्रवेश के साथ कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश। अगले 24 घंटों में अनेक जिलों में भारी बरसात की संभावना। और प्रदेश में जुलाई महीने को एंटी डेंगू माह के रूप में मनाया जाएगा। विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित होंगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी का आज से राष्ट्रव्यापी शुभारंभ हुआ। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुक्कावरिपल्ली गांव से इसकी शुरुआत की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि योजना के तहत पहले ही साल में 1,51,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं अगले 5 सालों में 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे गांवों में रोजगार बढ़ने के साथ ही वहां की तस्वीर बदलेगी।
1: 5 साल में विकसित भारत जी राम जी योजना में 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा होंगे। मतलब 5 साल में हर पंचायत को 2 करोड़ रुपया से ज्यादा मिलेंगे। और ये पैसा ठीक से गांव में खर्च हो गया तो मजदूरों को रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन गांव की तस्वीर भी बदल जाएगी और वहां की जनता की तकदीर भी बदल जाएगी।
0: केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि अब किसी भी राज्य में मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी। मजदूरों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा मिलेगा। उन्होंने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक खर्च 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ब्यावर जिले के मसूदा कृषि उपज मंडी से राष्ट्रीय कार्यक्रम से वीसी के माध्यम से जुड़े। इस दौरान उन्होंने वीबीजी रामजी योजना के राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की समृद्धि और विकास के लिए ये योजना लाई गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका और आपदाओं से निपटने संबंधी ठोस कार्य करवाए जा सकेंगे।
2: इस योजना में एक डिजिटल बहु स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसमें निश्चित समय सीमा और जिला लोकपालों की व्यवस्था भी की गई है। वेतन का भुगतान हर हफ्ते करना अनिवार्य होगा। 2 हफ्ते से अधिक देरी होने पर उसका मुआवजा भी आपको मिलेगा। प्रशासनिक व्यय की सीमा को बढ़ा करके 6% से 9% किया है, ताकि जमीनी स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी, तकनीकी विशेषज्ञ, प्रशिक्षण, निगरानी क्षमता उनकी रख सके। इस कानून में एक टिकाऊ और जवाबदेह वित्तीय मॉडल का प्रावधान है, जिससे हम विकास उन्मुखी कर सकें और उस गांव को हम विकास से जोड़ सकें।
0: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लगभग 424 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने देवमाली में 2 करोड़ रुपए की लागत से दर्शनार्थियों के लिए आश्रय स्थल बनाने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वीबीजी रामजी योजना के तहत 2 लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण किया। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कोई विकल्प नहीं बल्कि सुशासन की अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने एआई का बुद्धिमता से उपयोग करने की जरूरत पर जोर दिया। श्री सिंह जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए प्रशासनिक सोच में बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र के अनुरूप सरकार नागरिक केंद्रित, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन को बढ़ावा दे रही है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुशासन में बाधक बन रहे करीब 2000 नियमों को समाप्त किया है, जिसमें दस्तावेजों के अनिवार्य सत्यापन सहित कई अन्य फैसले शामिल हैं। समारोह में श्री सिंह ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों का वितरण किया। इस साल 7 श्रेणियों में कुल 17 ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इनमें 10 स्वर्ण और 6 रजत पुरस्कार शामिल हैं। डिजिटलीकरण के माध्यम से जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को गहरा और व्यापक बनाने के लिए दिए गए

0: पुरस्कारों में ग्राम पंचायत श्रेणी भी शामिल है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि सम्मेलन में सभी राज्यों की भागीदारी रही, सभी ने अपने अनुभव साझा किए।
1: ये 11वीं इस तरह की राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी आज जयपुर नगर में की गई है और एक बड़ी संतोषजनक बात यह है कि देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें इसमें भागीदारी नहीं रही, कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं। प्रत्येक प्रदेश के अधिकारियों ने अपने अपने अनुभव जो वहां की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं यहां साझी की, एक दूसरे के साथ विचारों का भी आदान प्रदान हुआ और एक दूसरे के अनुभवों का भी। और इस श्रृंखला को और इस क्रम को हम निरंतर आगे बढ़ाते हुए मोदी जी के द्वारा लाए गए जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं वो ना केवल गवर्नेंस तक सीमित है बल्कि उनका बहुत अधिक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी रहा है, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में भी।
0: सहकार सप्ताह के तहत आज जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार, तकनीकी दक्षता और उत्कृष्ट कार्यों के लिए सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक सबके लिए सब एक के लिए के सिद्धांत पर आधारित जन कल्याण की सशक्त विचारधारा है। उन्होंने कहा कि एकता, विश्वास और सामूहिक प्रयासों से हर चुनौती का सामना करते हुए समावेशी और सतत विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज प्रदेश के पूर्वी हिस्सों से प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग के अनुसार सामान्य से 7 दिन की देरी से आया मानसून वर्तमान में टोंक, जयपुर और अलवर में सक्रिय है। भरतपुर के बयाना में आज तेज बरसात हुई, वहीं शहर के अलावा कई क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई। प्रतापगढ़ में 4 इंच से ज्यादा बारिश के समाचार हैं। चित्तौड़गढ़ में भी मूसलाधार बारिश हुई। दौसा में तेज बरसात से कई इलाकों में पानी भर गया। अलवर शहर और आसपास के इलाकों में भी हुई। राजधानी जयपुर में सुबह से ही बादलों की आवाजाही रही। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मानसून के आगामी 2-3 दिनों में राज्य के कुछ और भागों में आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। उन्होंने बताया कि आज उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं अति भारी बारिश का पूर्वानुमान है।
2: आज मानसून तय समय से 1 सप्ताह की देरी से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में प्रवेश किया है। इसी के साथ पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में कुछ भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश की रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा एक और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया फिलहाल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तट के ऊपर बना हुआ है। साथ ही मानसून ट्रफ लाइन भी फिलहाल सक्रिय है। ऐसे में आगामी 3-4 दिनों में राजस्थान में मानसून सक्रिय रहने और राज्य के कई भागों में मानसून के प्रवेश करने तथा आगे बढ़ने के लिए प्रबल संभावना बनी हुई है। इस दौरान उदयपुर, कोटा संभाग में कहीं भारी बारिश की संभावना है। बाकी राज्य के ज्यादातर इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ कहीं पर तेज थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की भी प्रबल संभावना बनी रही।
0: राज्य में जुलाई महीने को एंटी डेंगू माह के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान चिकित्सा विभाग की ओर से डेंगू की रोकथाम, मच्छर नियंत्रण और जन जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि मानसून के दौरान एडीज मच्छरों के प्रजनन की संभावना बढ़ जाती है। मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म करना और आमजन की सक्रिय भागीदारी ही डेंगू से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान विभिन्न विभागों का सहयोग लेते हुए समुदाय स्तर पर कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
3: डेंगू नियंत्रण के लिए जन भागीदारी, जांच करें, सफाई करें और ढकें। जुलाई 2026 में जो डेंगू के लिए माह मना रहे हैं इसके अंदर चिकित्सा विभाग के अलावा शहरी, ग्रामीण, पंचायती राज, पानी की आपूर्ति, शिक्षा, परिवहन, नगर पालिका, स्थायी निकाय, गैर सरकारी संगठनों की साझेदारी से स्थानीय और धार्मिक गुरुओं के साथ समन्वय बैठक का आयोजन करेंगे। मच्छरों के प्रजनन को रोकने और तथा 3 दिन के समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी लोगों

0: को जागरूक किया जाएगा।
1: केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने का प्रयास कर रही है। श्री यादव आज नई दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। श्री यादव ने बताया कि सरकार पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के साथ साथ विकास सुनिश्चित करने पर काम कर रही है। ये सम्मेलन देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में तेजी लाने और वैश्विक इलेक्ट्रिक व्हीकल विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए आयोजित किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव किया है। आरएएस भर्ती प्रारंभिक परीक्षा अब 29 नवंबर के स्थान पर 6 दिसंबर को आयोजित की जाएगी, जबकि मुख्य परीक्षा अगले साल 1 और 2 मई को आयोजित होगी। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्राध्यापक विशेष शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 8 दिसंबर को होगी। ये परीक्षा पहले 6 दिसंबर को होनी थी। इसके अलावा सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 27 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वीवीजी रामजी योजना पर अगले 5 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जयपुर में 2 दिन के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का समापन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एआई को सुशासन की अनिवार्य जरूरत बताया। राज्य में मॉनसून के प्रवेश के साथ कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश। अगले 24 घंटों में अनेक जिलों में भारी बरसात की संभावना। और प्रदेश में जुलाई महीने को एंटी डेंगू माह के रूप में मनाया जाएगा। विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से फलौदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख प्रतापाराम ने तैयार किया है। फलौदी जिले में इन दिनों जल संरक्षण की महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। जन सहयोग से रेत में दबे गुलाब सागर, पणिहारी और सेलड़ी तालाबों के एकीकरण का काम किया जा रहा है। इससे इन जल स्रोतों को पुनर्जीवित कर एक बड़े जलाशय का स्वरूप दिया जाएगा। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बीते दिनों कामों का निरीक्षण किया और इससे जुड़े लोगों का उत्साहवर्धन किया। जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक में पेयजल और स्वच्छता योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल कनेक्शन, पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता और जल स्रोतों के संरक्षण पर चर्चा हुई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी काम समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन सक्रिय है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। जिला कलेक्टर ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में आवश्यक सुधार करने, चेतावनी बोर्ड लगाने तथा आवारा पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश दिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और अन्य एजेंसियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा प्रबंधन, अवैध गतिविधियों की रोकथाम और आवश्यक निगरानी व्यवस्था पर चर्चा की गई। अधिकारियों को सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश दिए गए। जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में लंबित आवेदनों के निस्तारण और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर चर्चा हुई। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रशासनिक अनुभव साझा किए गए। अधिकारियों को जनसेवा, पारदर्शिता और संवेदनशील प्रशासन के महत्व से अवगत कराया गया। जिला कलेक्टर ने बापीणी उपखंड के इशरू गांव में बीते दिनों रात्रि चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, बिजली और मुआवजे से संबंधित समस्याएं उनके सामने रखी, जिनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए जिले में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। फलौदी विधायक पब्बा राम विश्नोई और जिला कलेक्टर ने शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मानसून को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक में जल भराव वाले क्षेत्रों की पहचान, नियंत्रण कक्षों की स्थापना और आपातकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। जिला स्तर पर 24 घंटे संचालित नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के 86,000 से अधिक किसानों को 23वीं किस्त की राशि का लाभ मिला है। किसानों के बैंक खातों में ये राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी भी दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर फलौदी दुर्ग में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और आमजन ने योगाभ्यास किया। जिले भर में आयोजित कार्यक्रमों में 1,21,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत जिले के पात्र आवेदकों के चयन के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। योजना के तहत 583 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया है। इनमें से 519 वरिष्ठ नागरिक रेल मार्ग से और 64 हवाई मार्ग से धार्मिक यात्रा करेंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। चिकित्सा विभाग के अनुसार जिले में 1,53,000 से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके लिए जिले भर में सैकड़ों पोलियो बूथ स्थापित किए गए और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई। फलौदी शहर में भामाशाहों के सहयोग से नए यातायात पुलिस थाने का निर्माण किया गया है। इसका बीते दिनों उद्घाटन हुआ। पुलिस विभाग ने इस पहल को जन सहयोग का अच्छा उदाहरण बताया। इसके साथ ही फलौदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो VBG राम जी माथे आवता 5 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्च कराया जावेला। जयपुर में 2 दिन रो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन पूरो भयो। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह AI ने सुशासन री जरूरत बताया। राज्य में चौमासारी बिरखा स्वरूफी, आवता 24 घंटा में कई ठोड़ा भारी बारिश रा आसार। और प्रदेश में ओ महीनो एंटी डेंगू माह रा तौर मनायो जावेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG राम जी रातेत आज आखा देश में काम शुरू फेंक्यो। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आंध्र प्रदेश रा मुक्कावरी पल्ली गांव इनरी शुरुआत कीनी। इस मौके श्री चौहान कहो कहीं रातेत पहली साल में 1,51,000 करोड़ रुपया रो प्रावधान करीचियो है, जबकि आवता 5 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्च कराया जावेला, जिणो गाँव में नौकरी धंधा रा मौका बधवा सागे वठेरी तस्वीर बदलेला।
3: 5 साल में विकसित भारत जी राम जी योजना में 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा होंगे, मतलब 5 साल में हर पंचायत को 2 करोड़ रुपया से ज्यादा मिलेंगे। और ये पैसा ठीक से गांव में खर्च हो गया तो मजदूरों को रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन गांव की तस्वीर भी बदल जाएगी और वहां की जनता की तकदीर भी बदल जाएगी।
0: केंद्रीय मंत्री ऐलान की नोक देश राकिणी राज्य माए मजूरी 300 रुपया रोजिना कम नहीं फैला। वे बतायो कि VBG राम जी ने असरदार तरीकाओं लागू करण सारू प्रशासनिक खर्च 6.9% करतीयो चियो है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ब्यावर जिला री मसूदा कृषि उपज मंडियों वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए इन कार्यक्रम में जुड़िया। इन दौरान वे VBG राम जी रा राज्य स्तर रा कार्यक्रम में कहो कि गांव री बरकत और विकास सारू VBG राम जी लाइचियो है। श्री शर्मा कहो कि इन जरिए पानी बचावण गांवई हलका में बुनियादी ढांचा विकास आजीविका और आपदारों सामो करण जुड़िया काम कराया जावेला।
4: इस योजना में एक डिजिटल बहु स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली की

0: व्यवस्था की गई है, इसमें निश्चित समय सीमा और जिला लोकपालों की व्यवस्था भी की गई है। वेतन का भुगतान हर हफ्ते करना अनिवार्य होगा, 2 हफ्ते से अधिक देरी होने पर उसका मुआवजा भी आपको मिलेगा। प्रशासनिक व्यय की सीमा को बढ़ा करके 6% से 9% किया है, ताकि जमीनी स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी, तकनीकी विशेषज्ञ, प्रशिक्षण, निगरानी क्षमता उनकी रख सके। इस कानून में एक टिकाऊ और जवाबदेह वित्तीय मॉडल का प्रावधान है, जिससे हम विकास उन्मुखी कर सकें और उस गाँव को हम विकास से जोड़ सकें।
1: मुख्यमंत्री ई मौके करीब 424 करोड़ रुपया रा विकास रा कामारी शुरुआती कीनी व देवमाली माए 2 करोड़ रुपया रा खर्चों जात्रुआ सारू आराम घर बनावन रो ऐलानी कीनो। कार्यक्रम माए श्री शर्मा VBG रामजी रा तेत 2 जना ने ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड दीना। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कहो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुशासन री जरूरत बन क्यों है। वह आज जयपुर में राखी जिया 2 दिन रा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन रा समापन समारोह में बोल रहा है। जितेंद्र सिंह AI ने बुद्धिमानियों काम लेवन री जरूरत माथे जोर दिनो। ई मौके केंद्रीय मंत्री कहो कि विकसित भारत 2047 रो सपनो सांचो करण सारो प्रशासनिक सोच माए बदलाव जरूरी है। वह कहो कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस रा मंत्र रा हिसाबो सरकार जनता माथे खास ध्यान देवन वाला साफ कोई सागे और जवाबदेह प्रशासन ने बधावो दे रही है। डॉक्टर सिंह कहो कि केंद्र सरकार सुशासन माए अड़चन पैदा कर रहा करीब 2000 नियम खत्म करती ना है, जहां माए कागजात रा जरूरी सत्यापन समेत कई फैसला शामिल है। जलसा माए श्री सिंह 7 श्रेणियां माए 17 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार तीना, आमाए 10 स्वर्ण और 6 रजत पुरस्कार ही शामिल है। डिजिटल तरीकाओं जमीनी लेवल माथे सेवा पोगावन ने और बेहतर बनावन सारू दिया जाए इनाम माए ग्राम पंचायत श्रेणी शामिल है। कार्यक्रम पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका श्री सिंह कहो कि AI मौजूदा दौर माए जिंदगी री जरूरत बन गयो है।
2: ये 11वीं इस तरह की राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी आज जयपुर नगर में की गई है और एक बड़ी संतोषजनक बात यह है कि देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें इसमें भागीदारी नहीं रही, कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं। प्रत्येक प्रदेश के अधिकारियों ने अपने अपने अनुभव जो वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं यहाँ साझी की, एक दूसरे के साथ विचारों का भी आदान प्रदान हुआ और एक दूसरे के अनुभवों का भी। और इस श्रृंखला को और इस क्रम को हम निरंतर आगे बढ़ाते हुए मोदी जी के द्वारा लाए गए जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं वो ना केवल गवर्नेंस तक सीमित है बल्कि उनका बहुत अधिक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी रहा है, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में भी।
1: सहकार सप्ताह राते आज जयपुर माए राज्य स्तर रो मान जलसो राखी चियो। जलसा माए गांवाई हलका माए नवाचार, तकनीकी दक्षता और बेहतरी सारू काम करण बाबत सहकारी संस्थावां रा अहलकारां और कर्मचारियां रो मान करी चियो। जलसा माए सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक्क कहो कि सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि सबके लिए एक सब एक के लिए रा सिद्धांत माथे आधारित जनता रा भलारी मजबूत सोच है। वह कहो कि एका भरोसा और भेड़ी कोशिशाओं हर चुनौती रो सामोक करता था का समावेशी और लगातार विकास रो लक्ष्य हासिल करो जा सके है। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्य रा उगनी हल्का माए चौमासारी बिरखा शुरू फेंकी है। मौसम विभाग रे मुजब 7 दिन मोड़ा पाछे टोंक जयपुर और अलवर माए चौमासारी बिरखा वेवन लगी है। भरतपुर जिला रा बयाना माए जोरदार में बरसियो। प्रतापगढ़ माए 4 इंच उम्बत्ती बिरखा रा समाचार है। चित्तौड़गढ़ माए तेज बरसात हुई। दौसा माए भी तेज बरसात कई हल्का माए पानी भरकियो। अलवर शहर और आरएसआर हल्का माए चोखो में बरसियो। राजधानी जयपुर माए बादला मंडिया रहा। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आवता 2-3 दिन माए प्रदेश रा कुछ और हल्का माए चौमासारी बिरखा सरूफे वन रा आसार है। वे बतायो कि आज उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग माए कठे कठे बादला री गाज सागे बिरखा वेवन री संभावना है, जबकि कोटा संभाग रा जिला माए कठे कठे घनी जोरदार बिरखा वेवन रा आसार है।

0: आज मानसून तय समय से एक सप्ताह की देरी से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में प्रवेश किया है। इसी के साथ पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में कुछ भागों में मध्यम से कहीं भारी बारिश की रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा एक और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया फिलहाल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक के ऊपर बना हुआ है, साथ ही मानसून ट्रफ लाइन भी फिलहाल सक्रिय है। ऐसे में आगामी 3-4 दिनों में राजस्थान में मानसून सक्रिय रहने और राज्य के कई भागों में मानसून के प्रवेश करने तथा आगे बढ़ने के लिए प्रबल संभावना बनी हुई है। इस दौरान उदयपुर कोटा संभाग में कहीं भारी बारिश की संभावना है, बाकी राज्य के ज्यादातर इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ कहीं पर तेज थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की भी प्रबल संभावना बनी रही।
1: राज्य में ओ महीनो एंटी डेंगू महारा तौर मनायो चावेला। इन दौरान डेंगू री रोकथाम, मच्छरा माथे काबू करण, हर जनता माए जाग जगावन सारो चिकित्सा विभाग री ओरों जांच करें, सफाई करें और ढकें मुद्दा माथे खास अभियान चलायो चावेला। जयपुर रा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत बतायो कि चौमासा माए मच्छर पैदा होवन री संभावना बध जावे है। डेंगू रो असरदार टीको या खास इलाज नी वेवणु मच्छर पैदा वेवण रे ठोड़ा खत्म करण और जनता री भागीदारी बचाव रो सबो असरदार तरीको है। चिकित्सा विभाग जनताओं अभियान माए मदद करण और घर कमठाणा और आरस आरे साफ सफाई राखण री अपील कीनी है।
2: डेंगू नियंत्रण के लिए जन भागीदारी, जांच करें, सफाई करें और ढके। जुलाई 2026 में जो डेंगू के लिए माह मना रहे हैं, इसके अंदर चिकित्सा विभाग के अलावा शहरी, ग्रामीण, पंचायती राज, पानी की आपूर्ति, शिक्षा, परिवहन, नगर पालिका, स्थायी निकाय, गैर सरकारी संगठनों की साझेदारी से स्थानीय और धार्मिक गुरुओं के साथ समन्वय बैठक का आयोजन करेंगे। मच्छरों के प्रजनन को रोकने और तथा 3 दिन के समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा।
1: राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC भर्ती परीक्षा हमारा कार्यक्रम माए थोड़ो बदलाव कीनो है। RAS भर्ती प्रारंभिक परीक्षा अब 29 नवंबर री बजाय 6 दिसंबर न भेला, जदके RAS मेंस आवता साल 1 और 2 मई न राखी जावेला। माध्यमिक शिक्षा विभाग री प्राध्यापक विशेष शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 8 दिसंबर न भेला। इनके अलावा सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 27 दिसंबर न ली जावेला। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE साल 2026 री 12वीं कक्षा री सप्लीमेंट्री परीक्षा सारू अर्जियां लेवणो शुरू कर दीनो है। बोर्ड रे मुजब रेगुलर और प्राइवेट उम्मीदवारां सारू अर्जियां दाखिल करण और फीस जमा करावण रो काम 30 जून नु शुरू फेंक्यो है। संबद्ध स्कूलां ने 8 जुलाई ताई परीक्षा संगम पोर्टल रे जरिए अर्जियां बोर्ड माए जमा करावणी भेला। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज बतायो कि मुख्य परीक्षा माए सप्लीमेंट्री आवण वाला या किणी एक विषय माए अंक सुधार सारू विद्यार्थी आ परीक्षा दे सकेला। सप्लीमेंट्री परीक्षा 28 जुलाई हुएला। आखिर माए खास समाचार एकर फेरू सुन ले राओ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो VBG रामजी माथे आवता 5 साल माए 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करया जावेला। जयपुर माए 2 दिन रो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन पूरो फियो। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह AI ने सुशासन री जरूरत बताया। राज्य माए चौमासा री बिरखा सरूफी। आवता 24 घंटा माए कई ठोणा भारी बारिश रा आसार। और प्रदेश माए ओ महीनो एंटी डेंगू महारा तौर मनायो चावेला। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। हाँ, आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो चावेला। नमस्कार।
3: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: विहार, मुझ विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडर पास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड की नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी GDA द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत सचिन देव बर्मन का था, फिल्म का नाम था तेरे घर के सामने। और अब लता मंगेशकर की आवाज गूंज रही है

0: मेरी हमदम मेरे दोस्त फिल्म का ये गाना भी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी की बोल थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। शाम के 7:15:15 जय माला,
1: क्या कहा,
0: यूनुस खान के संग।

0: आज का आपके लिए कार्यक्रम खत्म होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: आज के फनकार कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों आज के फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद।

0: लखन।
1: दोस्तों, लखन नाम तो फिल्म राम लखन में अभिनेता अनिल कपूर का नाम था, लेकिन इस गाने की मकबूलियत ने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को सुनने वालों के दिलों में इस तरह बसा दिया जैसे सीप में मोती और किसी अंगूठी में कोई शानदार नगीना।

0: जुलाई 1954 को गुमा वेस्ट बंगाल में जन्मे मोहम्मद अजीज का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। शुरुआती कुछ फिल्मी गाने उन्होंने मुन्ना अजीज के नाम से भी गाए, बाद में उनकी पहचान बनी बतौर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज के नाम से। मोहम्मद अजीज जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के बड़े प्रशंसक थे।
1: न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा

0: मोहम्मद अजीज को अपने जीवन में फिल्मी गायन का पहला मौका मिला बंगाली फिल्म ज्योति से। दोस्तों, आपको यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि बंगाली फिल्मों में मोहम्मद अजीज के तमाम गाए गीत बेहद मशहूर हुए। उसके बाद 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में भी उन्होंने पार्श्व गायन का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत जगत में उनकी पहचान बनी मर्द फिल्म के इस गाने से।
1: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला।

0: क्यों भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।
1: अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मर्द का ये सुपरहिट गीत गाकर मोहम्मद अजीज रातों रात पार्श्व गायन की ऊंची पायदान पर जा पहुंचे। इस फिल्म का संगीत दिया अनु मलिक ने और लोगों ने पहले तो ये समझा कि ये गाना शब्बीर कुमार ने गाया, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला मोहम्मद अजीज की आवाज है और बाद में इस आवाज ने धूम मचा दी।
2: एक अंधेरा लाख सितारे।

मोहम्मद अजीज का बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से भी जो गहरा नाता रहा है उसका जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। हिंदी फिल्म जगत की नामी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी मोहम्मद अजीज का जुड़ाव दोस्तों लंबी अवधि तक बना रहा।

मोहम्मद अजीज ने अपने गायन जीवन में अपनी समकालीन दिग्गज गायिकाओं के साथ गीत गाए। लता जी के साथ उनका गाया ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं, जो सिंदूर फिल्म का है।

दोस्तों, मोहम्मद अजीज ने, जैसे कि हम बता चुके हैं, अपनी समकालीन हिट सुपरहिट गायिकाओं के साथ भी गाने गाए हैं, तो उसमें अलका याग्निक का जिक्र ना हो तो प्रोग्राम थोड़ा अधूरा सा लगेगा। आइए सुनवाते हैं आपको बंजारन फिल्म का ये गाना।

और ये गीत है साधना सरगम और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। आप भी याद रखेंगे क्योंकि फिल्म का नाम है याद रखेगी दुनिया।

दोस्तों यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी होगा कि मोहम्मद अजीज ने हिंदी फिल्म जगत के तमाम बड़े सितारों के लिए पार्श्व गायन किया है, जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और गोविंदा के साथ साथ और भी कई कलाकार हैं। ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद अजीज का गाया फिल्म नगीना का ये गीत बेहद मकबूल रहा है।

बहुमुखी गायन प्रतिभा के मालिक मोहम्मद अजीज ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगभग 20,000 गीत गाए हैं। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, नौशाद, ओपी नैयर, राजेश रोशन, राम लक्ष्मण और रविंद्र जैन से लेकर उषा खन्ना, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, आनंद राज आनंद और आदेश श्रीवास्तव तक तमाम संगीतकारों के निर्देशन में मोहम्मद अजीज ने गीत गाकर सभी को लुभाया है, बहलाया है। अनुराधा पौड़वाल के साथ मोहम्मद अजीज का गाया ये गीत आज भी 90 के दशक के फिल्म संगीत की यादों को ताज़ा कर देता है।

मोहम्मद अजीज ने हमारे देश के अलावा विदेशों में भी जाकर मंच पर अपने कई प्राइवेट कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उड़िया और बांग्ला भाषाओं में कई फिल्मी गाने उन्होंने अनुराधा पौडवाल के साथ भी गाए और तमाम कई फीमेल सिंगर के साथ भी उनके गाए गीत मकबूल हुए हैं। और जहां तक भजन का सवाल है तो आपको हम ये बता दें कि उड़िया भाषा में उनके कई भजन मशहूर रहे हैं और कई अवसरों पर गाए जाते हैं।

27 नवंबर 2018 को अचानक हुए हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की वजह से मोहम्मद अजीज हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों कहते हैं ना, जिस्मानी तौर पर भले ही कलाकार हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी विधा के बल पर वो अपने चाहने वालों के दिलों में बसा करते हैं। इसी तरह पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज भी अपनी आवाज के जरिए हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के मन में जीवित रहेंगे।

0: छोड़ के।
1: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छायागीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। तेरी यादों की डोर से बंधा मेरा मन न जाने कितने सपने बुनता रहता है। कभी तेरी एक मुस्कान इन धागों को और मजबूत कर देती है, तो कभी तेरा इंतजार इन्हें और भी अनमोल बना देता है। नजर तो नहीं आते ये प्यार के धागे, मगर हर धड़कन में इनकी छुअन महसूस होती है। शायद इसी बंधन का नाम मोहब्बत है, जो दूरियों में भी साथ निभाती है।

मैंने आज दिल से तुझे अपना माना है, तेरी हर सांस को ही अपना जाना है। तू भी मेरी धड़कनों का हिस्सा बन जा, मेरे हर ख्वाब का सच्चा किस्सा बन जा। ना मैं तुझसे दूर जाऊं, ना तू मुझसे कभी, ये साथ हमारा टूटे न चाहे आए कैसी भी घड़ी। हम दोनों का ये रिश्ता बस यूं ही रहे, हर जन्म में तेरा हाथ मेरे हाथ में रहे।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। तुझे देखकर मन में एक अजीब सा अपनापन उतर आता है, जैसे तेरी हर खामोशी भी मुझसे कुछ कह जाती हो। तू सावन है तो मैं किसी सूखी नदी सी हूँ, तेरे आने से ही जैसे मैं पूरी हो जाती हूँ। तेरी हंसी में मुझे अपना बचपन दिखता है, तेरी आंखों में मेरा हर सपना सजता है। और सच कहूँ तो तुझे देखते ही लगता है कि मैं तुझे युगों युगों से जानती हूँ।

मैं उस बात से अनजान हूँ जिसने मेरी रातों की नींद चुपके से ले ली। अब हर रात लंबी लगती है, जैसे समय भी मुझसे रूठ गया हो। दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, पर वजह कोई नहीं बता पाता। खामोशी भी अब कुछ कहती सी लगती है, पर मैं समझ नहीं पाती। बस इतना एहसास है कि कुछ तो है जो मुझे अंदर ही अंदर जगा रहा है, और मैं अब उस नए एहसास को और करीब से जानना चाहती हूँ।

दो नैन है उसके, पर उनमें मेरी ही एक कहानी बसी है। कुछ उसके होठों ने कभी कहा नहीं, पर मैं उसे हर बार आंखों में पढ़ लेती हूँ। कुछ बातें वो छुपा लेता है और कुछ मैं भी मुस्कुराकर अनसुना कर देती हूँ। लिखा हुआ नहीं है, फिर भी हर एहसास मुझे साफ साफ समझ आता है, जैसे कोई अधूरी किताब हो जिसे हम दोनों मिलकर जी रहे हों, और मैं हर बार उसके नैनों में खुद को उसकी मोहब्बत बनकर देख लेती हूँ।

0: आज के छाया गीत कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको

0: जाए रात।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन
2: कौन लाया, कौन लाया?

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा समाप्त होती है। कल सवेरे 5:55 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।